आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि तदनुसार 30 जून 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: सौंदर्य शाश्वत चेतना का स्रोत है, चित्त की इच्छा ही इसका मुख्य हेतु है। सुंदर और असुंदर की धारणा प्राण तत्व के अनुसार होती है। सौंदर्य उच्च कोटि के आनंद और सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। सुंदर बोध हमें निस्वार्थ आनंद देता है। अनंत का शांत रूप में प्रकट होना ही सौंदर्य है। भगवान अत्यंत मंगल है, सत्य है, सुंदरता की खान है। सौंदर्य का संबंध आत्मा की उदात्त वृत्ति से है। हमारी सांस्कृतिक चेतना जितनी उदात्त होती है, सौंदर्य चेतना उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है। सौंदर्य में रोचकता उसका प्राण है। सौंदर्य की तृप्ति से ही जीवन का विकास, हृदय में उदात्त वेदना का संचार, प्राणों में स्फूर्ति का संचार और कल्पना के लिए नवीन प्रकाश का सृजन और शांति का संचार होता है। बुद्धि को नई चेतना मिलती है, कल्पना को सजीवता मिलती है। आनंददायक गुण है सौंदर्य। सौंदर्य से जो रस उत्पन्न होता है वही आनंद है। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारे हृदय में उसकी अनुभूति होती है, उससे आनंद मिलता है। सत्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वो प्रसन्नता और शिवानुभूति का साधन है। सत्य वो है जिसमें हमें विश्वास हो, और विश्वास वही होता है जहां अनुभव का विरोध न हो। सौंदर्य आनंद का ही दूसरा नाम है। जो सुंदर वस्तु है उसका गुण है, उसका धर्म है सौंदर्य। हीरे के गुण की परख के लिए जौहरी की आंख चाहिए, रिझाने वाले रूप के लिए रिझाने वाली आंखें चाहिए। उपनिषदों में सत्य और शिव की सुंदर अभिव्यक्ति है। सौंदर्य मनोज्ञ रहता है, प्राण ही अंगों का रस है। रस को राग कहा गया है, प्रीति और वेग का पर्याय कहा गया है। सृष्टि में चारों ओर दिख रहा है एक चिर सौंदर्य, एक चिरंतन सत्य का आभास हमें चतुर्दिक हो रहा है। सौंदर्य सात्विक,

0: एक चिर सौंदर्य, एक चिरंतन सत्य का आभास हमें चतुर्दिक हो रहा है। सौंदर्य सात्विक, निर्दोष और प्रकाश की तरह है। वेदों में सौंदर्य को स्वास्थ्य कहा गया है। सौंदर्य देखकर सभी की दृष्टि बार बार उधर ही जाती है। यह एक जादू है, जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती है वो उधर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए ये सार्वभौम है। पाप और सौंदर्य दोनों का आपसी मेल नहीं होता। सुंदर आकृति से असुंदर कार्य उत्पन्न नहीं होते। तन का सौंदर्य तो देश और काल की सीमा में ही सीमित है, लेकिन जो सद्गुण है उनका सौंदर्य चारों ओर फैलता है। ये फूल की खुशबू की तरह है, जो किसी देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहता, फैलता है और एक समान पूजनीय होता है। जो हम सौंदर्य की उपासना की बात करते हैं, तो हम सद्गुणों के सौंदर्य को देखें, उसे महसूस करें, उसे तलाशें, उसे उभरने का मौका दें। और सद्गुणों का सौंदर्य वहीं रह सकता है जहां प्रकृति से साहचर्य है, जहां ईश्वर की अनुभूति है। आइए इन विचारों को हम फलीभूत होने दें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। जानकारी दे रहे हैं शंकर कुमार चौधरी।
2: आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जा। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हमरा लोकन गाय के व्यावसायिक रूप से पोस कर चिक्कन आमदनी कर सके छी। ओ अपन आर्थिक स्थिति के सुधारि सके छी। गाय के जो नीक जकां पोस कर ओकरा उचित सेवा क कर हमरा लोकन रोजगार के अपनाबै छी त लाभे लाभ अछि। व्यावसायिक रूपे जो गाय के पोसै छी त लाभ से हमरा लोकन के रोजगार तो भेटते अछि, संगे अन्यान कतेको प्रकारक सेहो लाभ होइत अछि। सरकार द्वारा अहि गप के ध्यान में राखि कऽ प्रधानमंत्री डेयरी उद्यमता विकास योजना चलाओल जा रहल अछि, जाहि से हमरा लोकन के लाभ उठेबाक चाही। अइ योजना से लाभ उठेबाक लेल मिनी डेयरी के स्थापना के लेल सेहो ऋण देल जाइत अछि, जे कम से कम 3 गाय ओ ओकर बच्चा से शुरू कयल जाइत अछि। तो मिनी डेयरी एकर संगे जो डेयरी के और विकास करो चाहै छी तो गाय के संख्या सेहो बढ़ाओल जा सकैत अछि, जे निर्धारित अछि। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, डेयरी खोलबाक वास्ते सबसे पहिने ओहि लेल उचित स्थान के व्यवस्था करबाक चाही। ओकर वास्ते पूंजी के व्यवस्था करय पड़ैत अछि। अइ वास्ते दक्षता होयबाक चाही, संगे नीक श्रमिक लगाओल जा सकैत अछि। एहि सबके पूरा करबाक लेल केंद्र सरकार द्वारा डेयरी उद्यमता विकास योजना चलाओल जा रहल अछि। एहि योजना अंतर्गत मुख्य रूप से 3 काज के आगू बढ़ेबाक लेल ऋण देल जाइत अछि, ओ प्रश्रय देल जाइत अछि, जाहिमे अछि पहिल डेयरी फार्मक स्थापना, दोसर अबैत अछि उद्देश्य बेरोजगारी के हटायब, ओ तेसर डेयरी के उत्पाद के बढ़ायब, जाहिसँ किसान भाई लोकनिक आय में वृद्धि भ सकनि। डेयरी उद्यमता विकास योजना अंतर्गत संकर नस्ल के गाय के किनबाक लेल पूंजी के व्यवस्था कयल जाइत अछि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि।

0: उद्यमता विकास योजना के लाभ उठेबाक लेल सरकार द्वारा किछु पात्रता निर्धारित कयल गेल अछि, जकरा पूरा कयला पर चयनित किसान लोकनि के ओकर लाभ भेटैत छनि। जेना हिनका लोकनि के स्थानीय निवासी होयबाक चाही, आवेदक के पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक में खाता होयबाक चाहियनि। एकर संगे अन्य दस्तावेज जे सरकार द्वारा मांगल जाइत अछि ओकरा प्रस्तुत करय पड़ैत अछि। एहि योजना अंतर्गत लाभ उठेबाक वास्ते ऑनलाइन पंजीयन कराबय पड़ैत अछि, जाहि लेल विभागक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कऽ सकैत छी, तखन लाभ उठा सकैत छी। ई बड़ नीक योजना अछि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि, एकर लाभ सब किसान भाई बहिन लोकनि के उठेबाक चाहियनि, ओ जागरूक रहबाक चाही, तखने लाभ सेहो लऽ सकब। एहि योजना अंतर्गत डेयरी फार्म के स्थापना अथवा अन्य काज में पूंजी के व्यवस्था ऋण के माध्यम से कयल जाइत अछि, जाहि में अनुदान देबाक सेहो प्रावधान अछि आ देल गेल ऋण के किस्त में सधाबऽ पड़ैत अछि। तऽ एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति

0: तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।

0: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे जटिल चर्म रोगों और उसके होम्योपैथ निदान के विषय में। डॉक्टर जयशिव मिश्रा जी, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत, नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: जटिल चर्म रोग की जब हम चर्चा करते हैं तो ये रोग है क्या, ये बताइए।
1: जी, असल में पहले तो रोग के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। असल में होता क्या है कि हम लोग जिस रोगों के बारे में जानते हैं सामान्यतया, उसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सिम्टम को, दो चार सिम्टम को एक साथ रख के कुछ नाम दे देते हैं, उसको नोमेनक्लेचर ऑफ डिजीज बोलते हैं हम लोग।
0: जी,
1: वास्तव में ऐसा है नहीं। होता क्या है कि जब आपके बॉडी के सिस्टम को जब किसी मॉर्बिड इन्फ्लुएंस की वजह से जब डीअरेंजमेंट होने लगता है तो मॉर्बिड सेंसेशन आने लगता है आपके बॉडी में,
0: मतलब चीजें अव्यवस्थित हो जाती है।
1: जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि वो डीअरेंज होने लगता है तो आपको गलत गलत सिम्टम आने लगता है। बेसिक स्टार्ट वहीं से हो जाता है, फिर से उसका जो आप अभी डिजीज की चर्चा कर रहे हैं वो सब तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है।
0: अच्छा,
1: वो दिखने लगता है बाद में, लेकिन प्रॉब्लम पहले से शुरू हो जाता है।
0: यानी एक्जिमा, सोरायसिस या फिर मस्सा या सफेद दाग, ये सारी चर्चा जो हम
1: इंड प्रोडक्ट पे आता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: लेकिन धीरे धीरे आप उसको इग्नोर करें या इलाज भी करते हैं तो प्रॉपर वे में अगर ना हुआ तो ये सब इंड प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है।
0: होम्योपैथ लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम एक्जिमा की बात करें तो फिर क्या देखते हैं आप एक्जिमा में?
1: अब एक्जिमा का भी बहुत सारा टाइप है। हम लोगों को ये देखना होता है कि वो एग्जैक्ट किस टाइप पे है और कहाँ जाके ये ठीक होने वाला है, क्यूरेबल आएगा या फिर बहुत देरी से ठीक होगा। आप अगर किसी को प्रॉपर वे में दवा दे रहे हैं और वो भी फॉलो कर रहा है और दवा सही है तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल।
0: यानी अगर चिकित्सा एक बार होम्योपैथ में शुरू कर दी गई है तो उसे बीच पे छोड़ना अच्छा नहीं है।
1: नहीं है, नहीं
0: है ना।
1: जी,
0: ये एक्जिमा या सोरायसिस ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज की श्रेणी में रखी जाती है ये बीमारियां। इसमें कहा जाता है कि कई बार जो है लक्षण समाप्त हो जाते हैं, सब चीज अच्छा होने लगता है, फिर से दोबारा से।
1: अब दो प्रॉब्लम है, अगर आपने गलत मेडिसिन का सिलेक्शन किया
0: जी,
1: और तो क्या होता है कि वो एक्जिमा ठीक ना हुआ या सोरायसिस ठीक ना हुआ, वो दब गया है।
0: कैसे मानेंगे कि ये एक्जिमा है और ये सोरायसिस?
1: बिल्कुल, एक्जिमा दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपको एक्जिमा देखना है तो कई प्रकार का होता है जिसमें तीन चार प्रोमिनेंट जो जनरली लोग समझते हैं
0: जी।
1: जैसे उसमें कहीं इरप्शन हो जाना, फिर से उसमें क्रस्ट

0: पैदा हो जाना, फिर क्रस्टी वहां से एलिवेट परत पर दर परत पैदा हो जाता है और वो एलिवेट उहार टाइप का बनने लगता है और वो खुजलाता भी है, नोच देने पे वो लहरता भी है थोड़ा सा, तो ये एक्जिमा की श्रेणी में है। अब सोरियासिस है कि पूरा बॉडी एक समान जलन के साथ एक इरप्शन आना शुरू होता है, शुरू शुरू में वो ठीक भी हो जाता है,
1: अच्छा,
0: लेकिन धीरे धीरे धीरे वो भी फैलने लगता है, क्रस्ट उसमें भी आता है, लाल होता है, वो दर्द भी करता है और दर्द ना भी कर सकता है, इचिंग भी कर सकता है, इचिंग ना भी कर सकता है, इसीलिए हम आपको बताएं
1: खुजलाहट ऐसी होती है डॉक्टर साहब कि पूरी परत चमड़े की उधर
0: बिल्कुल ब्लड आ जाता है उसमें से खुजलाने में,
1: नारियल की भूसी के समान जो है हमने छिलका
0: बिल्कुल। शुरुआती दौर में क्या होता है कि नारियल की भूसी के समान वो आता है, अगर प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो वो भी क्रस्टी हो जाता है बाद में।
1: तो इस तरह के मरीज जो एक्जिमा, सोरायसिस या फिर मस्सा या सफ़ेद दाग, इस तरह के जो मरीज होते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: देखिए, सफ़ेद दाग और मस्सा दोनों दो चीज़ हैं। सफ़ेद दाग जो है वो स्किन का डिस्कलरेशन की वजह से होता है, वो मेलानिन का फॉर्मेशन आपके स्किन में होता है, और जब मेलानिन का फॉर्मेशन किसी वजह से कम हो जाए, ये साइकोटिक लेवल का प्रॉब्लम है, तो वो तब उसमें ये प्रॉब्लम होता है, दोनों साइकोटिक लेवल का प्रॉब्लम है।
1: अच्छा,
0: अब अगर किसी को मस्सा होता है तो उसका भी टाइप अलग अलग है, किसी को स्मूथ होता है, किसी को कैलीफ्लावर लाइक होता है, आप दवा देते हैं तो किसी किसी का साफ भी हो जाता है जल्दी से, लेकिन सबका मस्सा ठीक हो सकता है अगर एक्वायर्ड है, मतलब बाद में आया हो तब, अगर किसी को कंजेनाइटल है तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते जल्दी से।
1: तो जो लोग इस तरह के चर्म रोग से पीड़ित हैं उनके खान पान रहन सहन के बारे में क्या कहेंगे?
0: जी, इसमें से दो चीजें ध्यान उनको रखनी चाहिए, जैसे अगर किसी को सामान्य चर्म रोग है तो जैसे अंडा है और जैसे वेजिटेबल में वो बैगन है, इससे थोड़ा सा खुजलाहट बढ़ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग वो मना करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए सामान्यतया।
1: मांस मछली,
0: मछली में अगर किसी को सोरायसिस है तो मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
1: तो कुल मिलाकर बात इतनी कि अगर किसी को भी जटिल चर्म रोग है और होम्योपैथ की चिकित्सा वो ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो निदान वहाँ संभव है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन पूरे धैर्य के साथ दवाएं ले, परहेज से रहे। डॉक्टर जयशिव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देश का। आप सुनिए भजन, स्वर है L. नितेश का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं भरत कुमार के स्वर में।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज़ॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल के स्वर में।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। मुख्य स्वर है उत्तरा केलकर का।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं, उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का समय होगा 9:10 पर। 10 बजे आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 10:30 पर आप सुनेंगे बज का कार्यक्रम अंगना।

उप शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा 11:30 से। 12 बजे आप सुनते हैं फिल्म संगीत। 12:30 पर आप सुनेंगे हेलो जिंदगी कार्यक्रम। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे 1:10 पर। 1:15 पर समय होगा फिल्म संगीत का। रोजगार सूचना का समय होगा 2:10 पर। 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। बजका लोकगीत आप सुनेंगे 2:03। सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला संध्या 5:00। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं 6:10 पर। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है संध्या 6:30 पर। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 5:00। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुना करते हैं 8:15 से। विविधा सर्वभाषा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से। इंग्लिश टॉक का समय होगा 9:45 से।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक फनकार का समय होगा रात 10 बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 10 बजकर 30 मिनट से।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार, क्रमशः संस्कृत में, फिर हिंदी में।

0: प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमाणस्य 75 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ

0: दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 30 जून है। आज जिन जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में अब हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत और हमारे संग प्रतिभा हूँ कमर। नमस्कार।
2: नमस्कार रंजीत जी, साथ ही समस्त श्रोताओं को प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार।
1: और जना की श्रोता लोकन के बुझल छन की कार्यक्रमक शुरुआत हम अपन करै छी सुविचार सँ, तो सबसे पहले आजुक सुविचार
2: नीति श्लोक है। कहते हैं, नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो वह्नि, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। अर्थात अत्यधिक कामना के समान कोई व्याधि नहीं है, और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान जलाने वाला कोई आग नहीं है, और सच्चे ज्ञान आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है।
1: निश्चित तौर पर देखियो ना, संस्कृत बड़ा सुंदर श्लोक चले, संतोषम परम सुखम।
2: जी,
1: तो जखन अहाँ के अंदर संतोष के उत्पत्ति भऽ जाइए, तो अहाँ के सुख के सागर में गोता लगाबै छी, कतौ सुख के लेल भटकऽ नहि पड़ै। और दोसर बात छै जे अपन कर्तव्यहीनता में जे छै से कतौ संलिप्तता अपन नहि रही। हमर जे कर्तव्य अछि ओहि कर्तव्य के निश्चित तौर पर अपना ढंग से निभाबी, इएह जीवनक सीख होइत छै। और एक डेग और आगा बढ़ाबै छी हम लोकन आजुक नमस्कार मिथिला कंक में, और जानकारी साझा करता प्रतिभा जे आजुक दिन की खास महत्व रखते छे हमरा राष्ट्र में, हमरा समाज में, तब जानकारी साझा कर रहल छथि प्रतिभा।
2: 30 जून 1868 को क्रिस्टोफर स्लेस ने टाइपराइटर के लिए पेटेंट अधिकार हासिल किया था। वहीं 30 जून 1855 की बात करें तो बंगाल के भोगनाडीह, जो कि अब झारखंड में है, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में सशस्त्र संथाल विद्रोह अर्थात संथाल हूल की शुरुआत हुई थी। इसे हूल क्रांति दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। 30 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए बाउंड्री कमीशन यानी सीमा

0: आयोग के सदस्यों की घोषणा की गई थी। डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया की भूमिका को सराहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया दिवस आज ही के दिन अर्थात 30 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी।
1: तो इछल आजुक दिनक इतिहास जे श्रोता लोकनि हम लोगन जानकारी साझा कयलहुँ और प्रतिभा जनक की श्रोता लोकनि के बुझल छी कार्यक्रम में हम लोगन बहुत रास चीज समेट कऽ लाबै छी और बातचीत से हमारा कन श्रोता लोकनि से करै
0: छी। बातचीत करेंगे, डिजिटल दुनिया की बात हमने की है तो बातचीत करेंगे कि सोशल मीडिया का क्या है विशेष महत्व हमारे जीवन में, उसकी खूबियां क्या है और उससे जो उसके जो गलत प्रयोग से दुष्परिणाम क्या होता है। साथ ही हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी बात करेंगे और सुनवाएंगे आपको फिल्म संगीत। लेकिन अभी
1: इससे पहले हमारा कुछ बातचीत करी और जना के यहाँ कहलूँ जे आय विश्व सोशल मीडिया दिवस थी।
0: बिल्कुल,
1: मीडिया शब्द से सुनकर लोग दू गो करी के बीच में मध्यस्थता करते हुए
0: यानी कि जनता और जानकारी के बीच में,
1: जनता और सरकार
0: हाँ और बीच में जानकारी साझा करना हाँ
1: अई बीच में जे मध्यस्थता करे छे तिनका हम लोग मीडिया के शब्द से हुनका अलंकृत करै छे। लेकिन सवाल उठे जे मीडिया के बाद एकटा सोशल मीडिया से जुड़ गेल छे यानी सामाजिक मीडिया। अब एहिठमन लोग एकरा दू गो मायने में देख सकै छथिन। हमरा लोकनि आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो से बाजि रहल छी तो हमर शब्द के लोग अन्यथा नै लेत। अपना हिसाब से मीडिया में कंटेंट राइटर बन गेनाय, अपना हिसाब से कोनो वक्तव्य के राखि देनाय, एक पक्ष के बिना सुनने दोसर पक्ष के बिना सुनने न्यूज के आदान प्रदान कऽ देनाय, ई एहि में कतौ ने कतौ मीडिया के भूमिका संदिग्ध अवस्था में देखै छी। आइ यहाँ देखते हेबे जे मीडिया के विभिन्न सारा प्लेटफॉर्म छै लेकिन अखनो अगर समाचार के विश्वसनीयता के बात अबै छै प्रतिभा तो सबसे विश्वसनीयता अखनो जे ब्रांड एम्बेसडर जकरा अहाँ कहियो ओ अखनो आकाशवाणी छै।
0: बिल्कुल,
1: हालांकि सरकारी मीडिया छै, सरकार के अंग छै, लोग के सेहो एकटा कहवा भऽ जाइ छै जे ओ तो सरकारी मीडिया छै सरकार के पक्ष में न बजतै। लेकिन एकटा बात श्रोता लोकनि अहाँ के कही जे मीडिया कखनो पक्ष और विपक्ष के भेद नहीं करे छै।
0: बिल्कुल,
1: ओ जे सामने के चीज समाज में घटित भऽ रहल छै ओकरे
0: सामने वही रखता है आके। बिल्कुल,
1: ओ चित्रण करै छै। संसाधन बढ़ले, जनसंख्या बढ़ले, धरातल पर तो विश्वविद्यालय स्कूल खूब खुलले और खूब चलै छै लेकिन जहिया से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और कोनो कोनो यूनिवर्सिटी सब जे खुजले सोशल मीडिया जके
0: लोकल हां एकटा प्लेटफार्म प्राइवेट प्राइवेट सोशल मीडिया की हां
1: अहां ओमे देखैत हेबै जे ओई न्यूज के विश्वसनीयता और समाचार में एकटा चीज और देखल जाय छले प्रतिभा। हमरा कह में कतौ कोनो अथी एहतियात नहीं बरतो चाहै छी हम। आइयो अहां रेडियो दूरदर्शन एकर जे समाचार वाचक या समाचार वाचिका होइ छथिन हुनकर अहाँ पढ़वा के गति उच्चारण आदि में और सोशल मीडिया के जे उच्चारण आदि आदि जे चीज छै तेकरा अगर अहाँ कंपेयर करबै तो अंतर अहाँ के स्वयं चलि जायत।
0: बिल्कुल, उच्चारण की ही बात नहीं है, शुद्धता की बात होती है और सच्चाई की बात होती है। देखिए हम आकाशवाणी केंद्र में बैठे होते हैं जब कभी तो हमारी पूरी तरह से यह कोशिश हम लोगों की रहती है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा संवाद न चला जाए, कोई ऐसी समाचार हम प्रस्तुत न कर दें जो कहीं से भी किसी भी तरह से संदेहास्पद हो। हाँ बिल्कुल,
1: कारण आकाशवाणी सबसे पुरान संचार माध्यम छे, आजादी के पूर्व से ही माध्यम छे और आजादी के पूर्व से समाचार के माध्यम से चारू दिशा के न्यूज के कलेक्ट कर अहाँ तक पहुँचाबत रहा है। आ पहले कहूँ जो संसाधन बढ़ गई है, आप तो अहाँ देखते हेबे जे एकटा मोबाइल और एकटा बैग गाड़ी पर लिखल प्रेस अहाँ के भरि दिन लोग बौबाइत भेट जत।
0: बिल्कुल,
1: और अगर अहाँ हुनकर समाचार के क्वालिटी देखबन जो कि न्यूज बनेलखिन है तो अहाँ के अंतर साफ नजर में आबि जाए। हम किनको विरोध नहीं करे छे, हमरा सब किनको विरोधाभास नहीं है, लेकिन मीडिया शब्द के जे प्राथमिकता छे ओकर जे प्रासंगिकता
0: गणना जो है वो बरकरार रहनी चाहिए।
1: ओई पर जखन सवाल उठे छे तखन कतो ने कतो से चुकेंगे कर्मी छथिन हुनका आत्मा में चोट लागे छन और ओई चोट से जखन हुनका दिक्कत होय छन तो शब्द बनिको बाहर निकले छे। फिलहाल अखन हमरा लोकन मैथिली गीत के आनंद ले छी, ओकर बाद फेर श्रोता लोकन से बातचीत करब और श्रोता लोकन सुनै छी मैथिली गीत।

अभी हम लोग सुन रहे थे अरविंद कुमार झा को, इन्हें धन्यवाद देते हैं और जानते हैं अब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं रंजीत कुमार झा। आइए सुनते हैं रंजीत जी से हालचाल।

धन्यवाद प्रतिभा, नमस्कार। बिहार सरकार के स्कूल में शिक्षक के तबादला के राह के बाधा अब दूर भ गए। शिक्षा विभाग 5.88 लाख शिक्षक के रेगुलाइजेशन के प्रक्रिया के पूरा कर लेलक है। एकरा तहत 76,000 विद्यालय में शिक्षक के पद और हुनकर उपलब्धता के पहचान कैल गेल है और शिक्षक के तबादला के ई आधार बनाओल जाए। विभाग जुलाई में बड़का पैमाना पर स्कूल के शिक्षक के तबादला के योजना बनेने छल। छात्र के संख्या के मुताबिक शिक्षक के अनुपात रेशनलाइजेशन नहीं होबा के कारण शिक्षक के पद और हुनकर उपलब्धता के समस्या खड़ा होइ छल। एकरा अब दूर कर लेल गेल है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र के त्रिभाषा नीति से बड़ पैघ राहत दिलक है। बोर्ड स्पष्ट कैलक है कि अई छात्र के पहले की तरह 2 भाषा पढ़ पड़ते हैं और तेसर भाषा लेब के जरूरत नहीं हेतें। बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCEP 2020 के अनुरूप त्रिभाषा नीति से जुड़ल दिशा निर्देश के जारी करे साफ कहलक है कि तीनों भाषा के पढ़ वाला के शुरुआत 26-27 के सत्र से 9वीं कक्षा के छात्र के आरम्भ कैल जाए। बोर्ड के अनुसार 2026-27 में कक्षा में प्रवेश लेब वाला विद्यार्थी के 3 भाषा पढ़ पड़ते हैं। अई में कम से कम 2 भारतीय भाषा पढ़नाई अनिवार्य कैल गेल है। यदि छात्र कोनो 2 विदेशी भाषा पढ़ता तो हुनका लेल भारतीय भाषा अतिरिक्त रूप में रखनाई अनिवार्य कह देल गेलन है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार हिंदी और मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध कवि लेखक बाबा नागा अर्जुन के जयंती पर उनका नमन करत हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कलन है। ओ जन कवि बतावत कहलन कि नागा अर्जुन अपन रचना के जरिए गरीब किसान और मजदूर के संघर्ष के आवाज बुलंद कलन। ओ प्रमुख कृति बदले के घिरे और देखे युगधारा, पत्रहीन नग्न गाछ, मैथिली और हजार हजार बाहों वाला शामिल है। हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार से हो सम्मानित कैल गेल छल हैं। लोकहित के परियोजना के लेल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ओर से जमीन अधिग्रहण के काज जारी है। राज्य में चल रहल महत्वपूर्ण योजना के लेल करीब 45,748 एकड़ भूमि के अधिग्रहण कैल जाए। लगभग 30,000 करोड़ के लागत से भूमि के अधिग्रहण कैल जाए। विभाग के अनुसार उद्योग विभाग के लेल NHNHI, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, एक्सप्रेसवे, रेलवे, पथ निर्माण विभाग और विभिन्न योजना के लेल भूमि के अधिग्रहण कैल जाए। अई प्रकार SSB, जल संसाधन विभाग, विभिन्न हवाई अड्डा में, मधुबनी और कटिहार में व्यवहार न्यायालय के लेल सेहो भूमि अधिग्रहण कैल जाए। दरभंगा शहरी क्षेत्र में रवि के राति और सोम के दोपहर में मानसून के पहले बारिश से लोग के भीषण गर्मी का राहत तो भेटलन। हालांकि बारिश से शहर के कतेको सड़क पर जल जमाव भ गेल। ऐसे आम जनता के आवागमन में परेशानी भेलन। अई भेर बारिश से पिछला कते दिनों से भीषण गर्मी पर लोग के उमस से राहत तो भेटल, लेकिन लगभग मुख्य सड़क से लोकर संपर्क सड़क तक बारिश के पानी में डूब गेल और ऐसे नगर निगम के व्यवस्था के पोल सेहो खुज गेल। झमाझम बारिश से सोमवार को DMCH परिसर जलमग्न भ गेल। इमरजेंसी चौराहा और न्यू सर्जरी ब्लॉक में जाय वाला रास्ता में सेहो जलमग्न रहल। ओते कर्पूरी चौक से DMCH भौका नाका नंबर 6 जाय वाला सड़क और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पोर्टिको में सेहो बारिश के पानी भर गेल। पूर्णा सेंट्रल OPD, मेडिसिन वार्ड, ICU, NET आदि जगह पर जमल गंदा पानी होब से लोग के तो आवाजाही के दिक्कत भैये रहल है, संगे मरीज के सेहो बहुत दिक्कत भ रहल छन। सेंट्रल OPD में पानी खराब होकर मरीज और सोजल पर्ची कटाब के मजबूर छथि। कतौ न कतौ ई बारिश दरभंगा के नगर निगम व्यवस्था और स्थानीय व्यवस्था पर प्रश्न ठाड़ कऽ रहल अछि। 3 साल के टेन्योर समाप्त होबा से DMCH के विभिन्न विभाग में कार्यरत 30 सीनियर रेजिडेंट के विरमित कैल जाए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्रा अ चिकित्सक के सूची सोमवार का जारी कर दलन। जिला DMCH में विरमित भेला के बाद उनका स्वास्थ्य विभाग में योगदान करवा के निर्देश दिल गए हैं। अखन धरि 30 सीनियर रेजिडेंट के विरमित कैल गेल है। DMCH में चिकित्सक के कमी सेहो भ गेल है। अधीक्षक के और सो आदेश के अनुसार शिशु रोग विभाग से सबसे बेसी 7 सीनियर रेजिडेंट के स्वास्थ्य विभाग में योगदान करवा के लेल विरमित कैल गेल है। ई हाल चाल अखन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी। मनीगाछी में विकसित ग्राम विकसित भारत के लक्ष्य के प्राप्त करवा के उद्देश्य से मनरेगा

0: कार्यालय में सोमवार को प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कैल गेल। पीओ आनंद प्रकाश के अध्यक्षता में कैल गेल प्रशिक्षण के उपस्थिति में मुखिया मनरेगा योजना कार्य के चयन और चार गोथेमेटिक श्रेणी के अंतर्गत केवल जाके सलाह पर सेहो मोहर लाग गेल। बिनीपुर शहर के सफाई के लोग नगर परिषद प्रशासन कतेक संवेदनशील है, ई अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर के सामने जाकर कचरा के ढेर बता रहा है जे बारिश भेला के बाद पानी में बह लागल है। वार्ड 25 में स्थित अस्पताल और ओकर सामने बल्हा जाय वाला सड़क पर प्रदूषित पानी और कचरा के अंबार लागल है। कचरा सड़क पर पहुंचकर प्रदूषण फैला रहा है जखन के अगल बगल में लोग इलाज करावल आवे छथि और अस्पताल परिसर में ई गंदगी पसरल देख कर आम जनता क्रोधित छथि। बेनीपुर में जनकवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री नागा अर्जुन के 116वीं जयंती मनाबक के तैयारी के सोमवार का तरुणी गांव में अंतिम रूप दे दिल गेल। तरुणी पुस्तकालय स्थित बाबा नागा अर्जुन के प्रतिमा स्थल पर पंडाल कुर्सी आदि के सजावट सेहो कैल गेल। एकरा अलावा उमेश नागा अर्जुन संस्कृत कॉलेज तरुणी परिसर में स्कूली बच्चा के प्रतियोगिता में सफल छात्र के पुरस्कृत करवा के कार्यक्रम में भाग लेवे वाला अतिथि के स्वागत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच और पंडाल सेहो बनाओल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी गणित विभाग के ओर से सोमवार का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर विज्ञान संकाय के दिन और रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के महत्व और विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजन कैल गेल। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 एम्स के नवका सत्र के शुभारंभ सोम दिन भ गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर से उपस्थित छला। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी हरीश सहनी MLC सर्वेश कुमार और विद्यालय के प्राचार्य ऋषि रमन सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सेहो मौजूद छला है। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज DCE के स्टेलराइज सेंटर ऑन 3D प्रिंटिंग एंड एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC कोलकाता के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय ऑनलाइन विशेष विज्ञान एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मटेरियल्स डिजाइन और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के समापन भेल। ई वेबिनार 27 और 29 जून का आयोजित कैल गेल छल जाहि में इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान के विद्यार्थी और शिक्षक के उत्साहपूर्वक अपन अपन सहभागिता निभौलन है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता केरल के मुन्नार में आयोजित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन के दौर पर भाग लेले। इस दौरान जल संरक्षण भूजल संवर्धन सिंचाई व्यवस्था और जल संसाधन के प्रभावी और सतत प्रबंधन से जुड़ल विभिन्न विषय पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण के अवलोकन सेहो कैल गेल और विशेषज्ञ के संगे विचार विमर्श कैल गेल। डॉक्टर गुप्ता बतौलन कि जल जीवन और जल संरक्षण भविष्य के सुरक्षा के प्रहरी बनाओल जाए। वो कहलन कि अध्ययन के दौरान जल संसाधन और बेहतर उपयोग किसान के पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराब से वर्षा के संचय दल पर विशेष जोर देवक बात कहल गेल। ओतहि भूगर्भ वैज्ञानिक बतौलन कि धरती के नीचा से बेसी पानी के उपयोग क लेवा के कारण धरती अपना मुख्य केंद्र से लगभग 23 से 25 फीट के अंतर पर पहुँच गए। अहि के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होते। नमस्कार।
1: हालचाल के बाद आप सभी का स्वागत है अपने कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रंजीत कुमार झा। देखिए रंजीत जी, मौसम संबंधी जानकारी हम अपने श्रोताओं तक साझा करते हैं। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 30 जून तक के जो मौसम पूर्वानुमान है 26 से 30 जून तक के, तो उसके विषय में बताएं। पूर्वानुमान अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर 27 से 29 जून के दौरान मेघ गर्जन एवं तेज झोंकेदार हवाएं चली थी और इसके प्रभाव से कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा भी हुई है। इस दौरान औसतन अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि सीवान गोपालगंज बेगूसराय पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं सुबह की सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर में सापेक्षिक

0: वृश्चिक, आर्द्रता 30 से 35% रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है।
1: जो हमारा यातायात संबंधी जानकारी के बारे में बात करें तो सड़क में बताबे चलिए, सड़क मार्ग में जो वन वे सिस्टम लागू है आइयो लागू है, तो ओहिमे कतौ कोनो फेरबदल नहि कयल गेल है। जो जिला प्रशासन के द्वारा फेरबदल कोनो वी आई मूवमेंट के कारण कयल जाए तो ओकर जानकारी अपने लोकन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा देल जाए। रेलवे बोर्ड के द्वारा जे गाड़ी के जे आगमन के समय अछि और जाहि गाड़ी के जे प्रस्थान करबाक समय निर्धारित अछि रेलवे बोर्ड के द्वारा ओहिमे कतौ कोनो परिवर्तन नहि कयल गेल है। हालांकि मौसम खराब अछि तो मौसम का असर जब परत भ सके 2-4 मिनट के लेट सेट संभवतः भ सके मौसम के कारण। जो हवाई अड्डा अथॉरिटी के बात करी तो मौसम खराब से सब गोटे बुझ रहा है और मौसम विभाग बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जानकारी अपने लोगन के प्राप्त भ रहा है अगला 3 घंटा में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के कुछ जिलों में भारी गर्जन के साथ वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। तो वही के कारण कुछ से विमान के संचालन में लेट संभव भ सके। हालांकि हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से कोनो परिवर्तन नहीं कयल गेल है। और एक बात और कह सकता लोग जो आई तीनों साधन छे सफर करवा के अपना सबके क्षेत्र में अपने लोगन के जो कोनो साधन से सफर करवा के योजना बनल हुए तो ओहिठमन का इंक्वायरी नंबर दिल गेल छे एक बार इंक्वायरी नंबर पर फोन कऽ के पता करी ओकर बाद अपन अपन घर से यात्रा करी। और प्रतिभा आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हमारा लोकन के आप घड़ी के किछ और इशारा कर रहे थे श्रोता लोकन के इंतजार से होते आ सबसे पहले हमारा लोकन
0: मनोरंजन की तरफ चलते हैं।
1: फिल्म संगीत के आनंद ले छी ओकर बाद फिर श्रोता लोकन से हमारा लोकन बातचीत करब और श्रोता लोकन अखन सुनै छी सुंदर सनी फिल्म संगीत।

0: बहुत ही प्यारा संगीत अभी हम लोग सुन रहे थे। आशा है कि सभी को पसंद आई होगी रंजीत जी। और देखिए ना, हम लोग बात कर रहे थे कि 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाते हैं हम लोग, जिसकी शुरुआत 2010 में की गई थी, जिसका सबसे पहला उद्देश्य था कि दुनिया को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट करना। आज इसी का परिणाम है कि हम सभी घर बैठे पूरे देश और दुनिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो इसके उद्देश्य की बात करें तो लोगों को यह बताना है कि सोशल मीडिया ने संचार, व्यापार और समाज के को किस प्रकार से बदल दिया है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यह शिक्षा और ज्ञान साझा करने का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। इसका उदाहरण हम पिछले दिनों देख चुके हैं कोरोना काल में, कि घर बैठे हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए थे, या हम सभी जो कार्यालय में कार्यरत हैं वो घर बैठे भी अपने कार्य को कर पाए थे। सोशल मीडिया कई मायने में सहायक और सहयोगी तो हो सकता है, जैसे छोटे व्यवसायियों के लिए या उद्यमियों को अपने उत्पादों का जो प्रचार प्रसार है उसे करने का मौका मिलता है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से नए नए व्यवसाय का आइडिया भी मिलता है। इसके माध्यम से सामाजिक जागरूकता और लोकहित अभियानों का जो है व्यापक पहुंच इसमें मिल सकती है। इसके माध्यम से किसानों को या हम सभी को, देखिए ना, हम सभी मौसम की जानकारी दे पाते हैं कि अभी अगले 3 घंटे में बारिश होने वाली है या कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, तो ये सब कुछ हम सभी जान पाते हैं इसके माध्यम से। बस एक क्लिक करते हैं तो कोई सरकारी योजना है अथवा पढ़ाई से संबंधित कोई जानकारी है तो हमें मिल जाती है। सब कुछ बहुत ही आसान सा हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही घर बैठे अपने लोगों से देश विदेश से हम जुड़ सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रील से कमाई कर रहे होते हैं, अपनी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सब अनेक फायदे हैं सोशल मीडिया के, परंतु हम सभी ये जानते हैं कि जहाँ पे जिस चीज़ का जितना हम लोग उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, जिससे जितनी हम लोगों की सुविधा है उसमें खतरा भी उतना ही है। बिजली से देखिए ना, जैसे हम सभी सुबह से उठते हैं और रात तक, देर रात तक जो जिसको काम करना है या फिर जो भी कोई, या फिर सोते हैं, एसी, कूलर या टीवी या फ्रिज या जो भी बिजली के जो उपकरण हैं वो सभी उसी से, लेकिन लापरवाही यदि बढ़ती जाए तो सेकंड में वो हमारा जान भी ले सकता है। इस तरह से
1: सर्वत्र बढ़ जाए।
0: जी बिल्कुल। तो सोशल मीडिया की बात किए हैं तो इसके फायदे तो हमने बहुत सारे आपको गिनवा दिए हैं कि क्या फायदे हैं, लेकिन इसका जो दुरुपयोग होता है, जो कि आजकल अधिक दुरुपयोग ही हो रहा है, तो इससे बहुत कुछ इसका जो हम सभी को दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। फेक न्यूज में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं।
1: फेक न्यूज, साइबर ठगी,
0: बिल्कुल।
1: ओकरा बाद

0: के छै से एक दोसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर छै से बयानबाजी, एक दोसर के धमकी, ओकरा बाद छै से अहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से कोनो ककरो छै से निजी वीडियो वायरल करबा के धमकी, एहि तरहक जे नकारात्मक पहलू अइ, एहि तरहक जे नकारात्मक सोच अइ, से कतौ ने कतौ सोशल मीडिया पर प्रश्न सेहो ठाढ़ करै छै। कारण जे दुनू कोनो चीज के दुनू पक्ष होइ छै, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। अहाँ बड़ा सुन्दर बात करने छलहुँ जे उपयोग और उपभोग, तो सोशल मीडिया के हमरा लोकन के उपयोग करबाक चाही, उपभोग नहीं करबाक चाही,
1: बिल्कुल दुरुपयोग से बचना चाहिए,
0: दुरुपयोग से बचक चाही। लेकिन आजुक तिथि में भौ की रहल छै समाज में, ओ समाज सब देख रहल छै, भले ही बाजे नहीं छै लेकिन देख रहल छै सब। अहाँ के आगा बढ़वा के लिए अहाँ बड़ा सुंदर काज कहलहुँ जो कोरोना काल में जखन सब गतिविधि ठप्प भौ गेल रहे कोरोना वायरस के कारण, तखन ई सोशल मीडिया एक दोसर से जुड़वा के बहुत रास संसाधन उपलब्ध करेलके। छात्र छात्रा के ओकरा ई नहीं अखर एलै जे हमर स्कूल बंदे या हमर महाविद्यालय बंदे या हमर विद्यालय बंदे, ओकरा अनेक कार्य करबाक लेल अपना ओहिठाम एकटा शिक्षक के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्यूट सेहो कयल गेल रहे। तो कतौ ने कतौ अहाँ के सकारात्मक और नकारात्मक जे पहलू छै ओहि में विभेद करऽ पड़त, ओहि में अंतर बुझऽ पड़त जे एहि में अंतर की छै, और ओहि अंतर के जखन अहाँ विवेक जेबै, जखन अहाँ खराब और नीक, नीक और खराब के अंतर में अंतर बुझ जेबै, और खराब कार्य के तरफ से मुँह मोड़ कर नीक कार्य के करब जखन अहाँ अपन ऊर्जा के सकारात्मक सोच के संगे खर्च करबै, तखन जे छै से ओकर सकारात्मक रूप परिणाम सामने आबै छै।
1: बिल्कुल, देखिए ना, बहुत सारे लोग रील देखने लगते हैं, एक मिनट देखते हैं, दो मिनट देख लेते हैं और घंटों निकल जाता है, तो समय की बर्बादी है। तो हम सभी को खुद ही इसमें
0: व्यंग्यात्मक बात कहब जे हमरा ई नहीं समझ में आबै है कि नेट फ्री छै कि लोग फ्री छै।
1: हाँ,
0: देखो दुनिया में बड़ी चीज छे, अहाँ के मोबाइल वह चीज दिखाबैया, वह कंटेंट
1: जो आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल
0: अहाँ देखो चाहे।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: देखो ले दुनिया में बड़ी चीज छे, अहाँ रील्स मीम्स वगैरह किया के देखबे, एहन चीज देखियो जैसे अहाँ के बुद्धि में, अहाँ के सूचन शक्ति में, सामाजिक संवर्धन में काज आवे, वही चीज के तरफ अहाँ का ध्यान आकर्षित किया कि नहीं।
1: सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज करना है हम सभी को, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि सिर्फ रील नहीं देखना है, ज्ञान, हेल्प और मोटिवेशन जो है, इस तरह के जो विचार है वो देखना। बिल्कुल, सकारात्मकता, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अहाँ देखे थे भाई जो हो कोनो खबर छे नहीं और खबर के फैला दिलक, ओकरा बाद छन्ने भर में सारा दुनिया को खबर बात बुझ जाए, बाद में पता चले तो झूठ छे। लेकिन अ झूठ के असर समाज पर तत्काल की प्रभाव पड़े, एक विश्लेषण हमारा लोग नहीं करे। जै दिन विश्लेषण केना शुरू कर देवे, तै दिन भ्रामक खबर से अपने हमारा लोग के दूरी
1: निश्चित तौर पर। और इस तरह के जो हम सभी जो फॉरवर्ड करना, ये तुरंत होता है कि हमारे पास कोई समाचार आया, हम तुरंत उसे साझा कर देते हैं। तो साझा करने से पहले हम सभी को बहुत ही परख करके, सोच समझ करके उसे साझा करनी होती है, तभी हम झूठ फरेब से बच पाते हैं। देखिए ना, ऐसा होता है कि हम सभी कितना, मतलब दो घंटा चार घंटा तो एक दिन में बर्बाद करते हैं फोन पे, तो ऐसा होना चाहिए कि उसे छोड़कर सिर्फ रील नहीं देखना चाहिए, सिर्फ फोन पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ करके अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए कम से कम एक दिन भी सप्ताह में कि किताब पढ़ें, खेत में घूमने जाएं, कहीं मंदिर जाते हैं, दोस्त जो असली दुनिया के दोस्त मित्र होते हैं उनसे बातचीत करें, उनके लिए तो हमारे पास समय नहीं होता है। और सोशल मीडिया में हमारे 1000 दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में, रियल लाइफ से निकलिए, रियल लाइफ में असली जिंदगी में यदि देखिए तो हमारे पास 10 मिनट का समय नहीं होता कि हम अपने आस पड़ोस में किसी बड़े बुजुर्ग को जाके उनका हाल खबर पूछें, या फिर अपने दोस्त मित्रों से मिलके बैठ के कप चाय उनके साथ में, कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, परंतु हम सभी मोबाइल पे बहुत सारा समय बिता लेते हैं।
0: वृद्ध दादी, काकी, दादा, नाना से बात करबाक लेल समय नहीं छन, लेकिन गूगल से बात करबाक लेल समय छन। तो हम उनका बताबियन जे गूगल के पास जानकारी छे, गूगल के पास ज्ञान नहीं छे। ज्ञान लेल अहाँ गुरु के पास जाए पड़त, वृद्ध जन लग बैसे पड़त, गूगल लग बैसने काज चलो वाला नहीं छे। अत आगा बढ़े छी एक
1: और देखिए ना, सोशल मीडिया का नकारात्मकता सकारात्मकता हम सभी जान पाए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोई विशेष खास करके स्थान या तीर्थ स्थल या फिर पर्यटन स्थल का हमें पता चलता है जिसे हम नहीं जान पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, और फिर वहाँ उसके बारे में यदि हम पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, तो फिर पता लगता है, और फिर हम वहाँ जाने का अचानक से प्रोग्राम भी बना लेते हैं। और अभी तो गर्मी की छुट्टी समाप्त हो सी गई है, तो बहुत सारे लोग बहुत जगह

0: घूमने के लिए गए होंगे, तो इसी घूमने और जो पर्यटन की यदि बात करें तो इस कड़ी में हम बात करेंगे आज की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, तो इसके बारे में हम सभी बात करते हैं। एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में समर्पित कर बनाई गई है। इसकी जो ऊंचाई है रंजीत जी, वो लगभग 182 मीटर यानी 597 फीट है। केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और
1: सरदार पटेल एकता के प्रतीक माना जाता है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 564 को 565 की रायत के उस समय में
0: एक जोड़ के
1: जोड़ का अथी केने रहे
0: एक
1: भारत हमारे लोग बात करे छी तो उसमें कतौ न कतौ सरदार पटेल के सबसे पैघ योगदान
0: है। बिल्कुल,
1: बहुत सारा धार्मिक उत्सव सरदार पटेल अल आयोजन करना शुरू करेलखिन, लोग सबके आम जनता के एक दोसर से भेंट करवा के मौका हेतु एक दोसर से बात करवा के मौका भेटते और हम सब गोटे से एक सूत्र में बांधल रहे।
0: बिल्कुल,
1: मुदा सरदार पटेल के जे नीति और नियम रहन, ओ जे नीति नियम से कार्य कलन, ओमे अगर हम लोग बात करी तो बहुत सारा बाधा उनका जीवन में आयल रहे अने के कार्य करवा के लेल।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वो अपन सदृढ़ इच्छा शक्ति के देखाबत वो सब बाधा के दूर करत और यूनिटी भारतीय एकता के बल के वो पूरे विश्व में स्थापित कलन और वही संदेश देने पूरे भारत के, अगर हम एकत्रित रहब तो हमरा ऊपर कोनो खतरा नहीं मंडरा सकत। तकर परिणाम स्वरूप आज हुनकर सम्मान में वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण कैल गया भारत वर्ष के सरकार के द्वारा और आइयो लोग हुनका एकता के स्वरूप मानकर पटेल जी के देखते हैं और हुनका देख कर वही लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू के देख कर लोग आपस में एकत्र भकर रह कर मिलजुल कर रहबाक शपथ लै छथि, संकल्प लै छथि, कारण जे संकल्पेटा विकल्प थिक और कोनो विकल्प हमरा लोकन के बीच में नहीं जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: दोसर बात पटेल जी के हम और बात करी प्रतिभा, तो पटेल जी हमेशा स्वदेशी के तरफ ध्यान दे, अपन संस्कृति अपन सभ्यता के बचाव के तरफ बेसी अग्रसर रहला। पश्चिमी सभ्यता जे निस्तेज के कारण छे, पश्चिमी दिशा जे छे से डूबक के संकेत छे, नीचा जा के संकेत छे,
0: सूर्योदित होते हैं पूर्व दिशा से और पश्चिम में
1: जा के उनका अस्त
0: होते हैं,
1: तो पश्चिम दिशा अस्त के संकेतक छे, घोतक छे। तो पटेल जी अहू पर जोर देने रहथिन जे पश्चिमी सभ्यता का आत्मसात हमारा राष्ट्र में नहीं भ सकैए, जाहि दिन पश्चिमी सभ्यता का आत्मसात हमारा राष्ट्र में भ जाएत ओहि दिन राष्ट्र हमारा आर्थिक शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से दंश झेलत और जकर परिणाम यहाँ देख रहा है हम लोग राष्ट्र में पश्चिमी सभ्यता कतौ न कतौ हावी भ गेल अछि, प्रवेश नहीं कलक है, हावी भ गेल अछि, चाहे हमारे खान पान हुआ, पहनावा रहा हुआ, बोलचाल हुआ, भाषा हुआ, सब तरह कतौ न कतौ पश्चिमी सभ्यता के झटका लग रहा है। और हम जाए और पटेल जी के सामने में नतमस्तक भ के मूर्ति झुका के हुनका सम्मान दै छियनि, एहन कौन सम्मान छ?
0: बिल्कुल, व्यवहार
1: व्यवहार नहीं होबाक चाहिए, नीति विशेष के सम्मान होबाक चाहिए, कृतत्व विशेष के सम्मान होबाक चाहिए, तखन असली सम्मान होइ छे। एक तरफ हम हाथ जोड़े छी और अहां के कहल बात नहीं माने छी, मौका मुनासिब हुआ बात भेल जपना मिथिला समांचल में कहल जाए छे प्रतिभा जे पंचैती तो हम सबटा माने छी मुदा खुट्टा गाड़ब ओते
0: करेंगे हम मनमाना, लेकिन हम आपके सामने मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं, आपको
1: माल्यार्पण करते हैं नहीं, माल्यार्पण नहीं भले महान व्यक्तित्व के कृतज्ञता ठगनाई महसूस करना जो हम अहाँ के प्रवर्तक छी, हम अहाँ के नीति के समर्थक छी, मुदा अत तक छी, अत गला के बाद हमरा वह करब जे हमरा मन में आयत बिलहाल आगा हमरा लखन एक दिन और बढ़े छी और पहले फिल्म संगीत हमरा लखन सुनै छी, फिर श्रोता लखन सब लखन बातचीत करब और श्रोता लखन सुनै छी अखन सुंदर सन फिल्म संगीत।

0: प्रतिभाकन मानसून सेहो हमार लोगन के दस्तक दो देने और मेघ जे छै से कखनो काल झुमड़ी झुमड़ी घूमी घूमी हिरनी जका नैच नैच बरसै है और एकर आनंद जे छै सेहो हमार लोगन ले छै और किसान लोगन के लेल सेहो बड़ा फायदामंद छै। त मेघा सम या कहबै जे हे मेघा छिट्टा भर भर के बरसू और आनंद के संग किसान लोगन के चेहरा पर खुशहाली सेहो वहां देत रहे
1: तभी हम सभी खुश रहेंगे।
0: और नमस्कार मिथिला काजुक अंक समारोह के विदा लेबाक समय सेहो भ गेल अछि। तब बारिश के आनंद ली और ए बारिश

0: प्रतिभाकन मानसून सेहो हमार लोगन के दस्तक दो देने और मेघ जे छै से कखनो काल झुमड़ी झुमड़ी घूमी घूमी हिरनी जका नैच नैच बरसै है और एकर आनंद जे छै सेहो हमार लोगन ले छै और किसान लोगन के लेल सेहो बड़ा फायदामंद छै। त मेघा सम या कहबै जे हे मेघा छिट्टा भर भर के बरसू और आनंद के संग किसान लोगन के चेहरा पर खुशहाली सेहो वहां दैत रहिए
1: तभी हम सभी खुश रहेंगे।
0: और नमस्कार मिथिला काजुक अंक समागम के विदा लेबाक समय सेहो भ गेल अछि। तब बारिश के आनंद ली और ए बारिश के पानी के सहेज के रखबा के काज श्रोता लोगन सेहो करी, कारण जल है तो कल है, जल ही जीवन है। एहि शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिला के अंक समागम के लैत छी विदा।
1: नमस्कार मिथिला।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
4: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
5: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
4: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि से देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय

0: विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

0: दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए।

0: West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरजी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे और फुटबॉल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राज़ील जापान को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम से मुतालिक आयद आरजी जाबता जाती पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के तमाम पेट्रोल पंप पर मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत के बयान के मुताबिक मगरबी एशिया के बहरान के दौरान आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ, ताहम हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों को मुस्तहकम रखकर आम सार्फीन को इसके असरात से महफूज रखा। इसके नतीजे में खुर्दा कीमतों और बड़ी मकदार में ईंधन खरीदने वाले सार्फीन के लिए मुकर्र कीमतों में नुमाया फर्क पैदा हो गया। वजारत ने कहा कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए 12 जून को आरजी जाबता जाती इकदाम नाफिज किए गए थे, जिनके तहत पेट्रोल पंपों पर हर सारिफ या हर गाड़ी को रोजाना ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल फराहम करने की हद मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा सनअती इदारा जाती और कमर्शियल सार्फीन के लिए भी खसूसी जाबते नाफिज किए गए थे। इन इकदाम का मकसद डीजल की कालाबाजारी, जखीरांदोजी और गैर कानूनी तौर पर ले जाने को रोकना और आम सार्फीन के लिए पेट्रोल और डीजल की बिला रुकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाना था। आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। वजीर आला ने असेंबली में ऐलान किया कि 2 जुलाई को होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में इस कानून का इब्तदाई मसवदा पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात, उत्तराखंड और आसाम के मॉडल को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर आला के मुताबिक ये कमेटी शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने समेत मजमूई तौर पर 9 मौजूआत का जायजा लेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती हुकूमत यकसां सिविल कोड का हतमी मसवदा तैयार करेगी। अलबत्ता वज़ीर आला ने वाजे किया कि दर्ज फहरिस्त कबायल, आदिवासी, कुर्मी बिरादरी और कदीम मकामी कबायल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मरकजी इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्म सनअत को फरोग देने के मकसद से 2 बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले कल नई दिल्ली में इत्तलाआत और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग में किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मीटिंग में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाने, भारत

0: इस मौके पर कबायली इनकलाबियों सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में हर साल हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। 30 जून 1855 को आज ही के दिन सिद्धू और कान्हू ने भोगना डी से बरतानवी हुकूमत और इस्तेहसाल पर मबनी सरमायादारान निजाम के खिलाफ संथाल हूल का आगाज किया था। कबायली तारीख के माहिरीन इस तहरीक को आज़ादी की पहली मुनज़म जिद्दोजहद करार देते हैं। मुअर्रिखीन का कहना है कि तकरीबन 20,000 लोगों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुसल्ला जिद्दोजहद का आगाज हुआ, जिसमें संथालों के अलावा दीगर मकामी तबकात भी शामिल हुए। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: हूल दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन शहीदों ने कबायली सोसाइटी के खिलाफ इस्तेहसाल और उनकी शनाख्त के तहफ्फुज की खातिर तारीखी जद्दोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि शहीदों की गिरा कदर कुर्बानी मुल्क के सभी शहरियों को तरगीब देती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हूल दिवस के मौके पर संथाल इंकलाब के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर दाखिला ने कबायली शनाख्त और मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों को याद किया। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज़ से मुतालिक तनाज़े को हल करने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आबनाए हुरमुज़ के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। आबनाए हुरमुज़ दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में से एक है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% खाम तेल गुजरता है। गुज़िश्ता जुमेरात से शुरू होने वाली कशीदगी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मफाहमत नामे तक पहुंचने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को मुतासिर किया। फुटबॉल में कल रात अमरीका के टेक्सस के ह्यूस्टन स्टेडियम में ब्राज़ील जापान को 1-2 दो गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। 5 बार के चैंपियन ब्राज़ील के लिए गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम में गोल किया। राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले में जर्मनी और पैराग्वे का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट के तहत मैच का फैसला किया गया। पैराग्वे की टीम ने अपने हवास पर काबू रखा और जर्मनी पर 3-4 गोल से तारीखी जीत दर्ज की। इस तरह जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज शुमाल मशरकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। आइंदा 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी इदारों ने पंजाब से जम्मू कश्मीर तक यात्रा के पूरे रास्ते पर हिफाजती इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं। यात्रियों की महफूज आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मॉक ड्रिल कर रही हैं। निगरानी के जदीद निज़ाम फाल किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज से शुमाल मशरकी रियासतों का दोरोज़ा दौरा करेंगे। जनाब चौहान आसाम के गुवाहाटी में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम।
2: कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स के दौरे को सफाए अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, सेशल्स के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हुए मोदी। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल नील घरेलू ईंधन से मुतालिक हंगामी इकदाम के खात्मे की खबर को भी उर्दू अखबार ने सफाए अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा साहब ने सुर्खी लगाई, ईरान अमरीका माहदे की पेश नज़र हुकूमत का अहम फैसला। राजस्थान हरियाणा आबी तनाजे पर समझौती खबर को भी अखबार ने नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, तकरीबन 3 दहाइयों पुराना मसला हल। दिल्ली समेत 5 रियासतों कर्नाटक, मेघालय, झारखंड और महाराष्ट्र में आज से SIR के आगाज़ की खबर को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई, इलेक्शन कमीशन की तमाम शहरियों से ताउन की अपील। अखबारों में शाया होने वाली अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह, अमरीका और ईरान हमले रोकने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर मुत्तफिक।
0: आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरसी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाए। कल से एक दिन में अधिकतम डीजल खरीदने की सीमा होगी समाप्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर बनी सहमति। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। और पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने

0: का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। राज्य की 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। लगभग 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की लंबाई 412 किलोमीटर है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में पटना पूर्णिया मार्ग, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर के 2 पैकेज, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और अनिसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड सहित अन्य परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने और समयबद्ध निर्माण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में आवागमन सुगम होगा और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार तथा संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 60 मीटर से 250 मीटर लंबे 479 पुलों की भार क्षमता और संरचनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने अगले 6 महीने में सभी चयनित पुलों का सेफ्टी ऑडिट और हेल्थ कार्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा है। विभाग के अनुसार पुलों की तकनीकी जांच IIT पटना, IIT दिल्ली तथा अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरत के अनुसार पुलों की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में 250 मीटर से अधिक लंबे 85 पुलों की जांच पहले से ही IIT पटना द्वारा की जा रही है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने लगभग 5,88,000 शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76,000 सरकारी स्कूलों में स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन किया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि तबादला पोर्टल अगले सप्ताह सक्रिय किया जाएगा। शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन प्राप्त होने के बाद 2 सप्ताह के भीतर तबादला प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि रेशनलाइजेशन से यह स्पष्ट हो गया है कि किस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और कहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इससे छात्रों की संख्या और विषयवार जरूरत के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन यानी PVGRAMJI योजना कल से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विकसित भारत JRAMJI योजना के तहत देश भर में एक समान मजदूरी दर लागू करने की मांग की है। श्री कुमार नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लिए स्वीकृत 61 लाख आवासों की राशि शीघ्र जारी करने की भी मांग की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री

आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में शुरू किए गए ऑन साइट जियो टैगिंग पहल को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों में शामिल करते हुए सराहा गया। बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर सिपाही के 993 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। खगड़िया में पुलिस ने सॉल्वर गैंग अभ्यर्थियों, शिक्षकों और एक परीक्षा केंद्र के अधीक्षक समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से वाहन, मोबाइल फोन, ब्लैंक चेक, एडमिट कार्ड और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की मांग की जाती थी। वहीं हाजीपुर में एक परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक और दो वीक्षकों के खिलाफ परीक्षा में अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवादा में दो अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर शीट की कॉपी जमा नहीं करने के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर में एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल करते हुए

गोपालपुर में एक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक और दो वीक्षकों के खिलाफ परीक्षा में अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवादा में दो अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर शीट की कॉपी जमा नहीं करने के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर में एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में सुपौल, अररिया, वैशाली, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा और मधेपुरा समेत कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होने और बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस दौरान 38.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले में वज्रपात की घटना में 1 महिला और 1 बच्ची की मौत हो गई। वहीं मुंगेर में 1 किशोरी की मौत हुई है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में खेत में काम कर रही 3 महिलाएं वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गईं। इधर दरभंगा और मधुबनी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 प्राचीन शिव मंदिरों के गुंबद और मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गए। मधुबनी के बाबूपरही में 1 पेट्रोल पंप की छत को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। महिला बॉक्सर प्रगति ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं 55 किलोग्राम भार वर्ग में नित्या पांडे ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष वर्ग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में वीर ने कांस्य पदक हासिल किया। 67 किलोग्राम भार वर्ग में लक्की ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। मोतिहारी की एक अदालत ने भूमि विवाद में हुई हत्या के एक मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी पर 33,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पटना की एनडीपीएस अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में दोषी ओडिशा के सिमलीगुड़ा निवासी दिलीप पासवान को 12 वर्ष कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अररिया की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी रंजीत राय को 14

0: वर्ष सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। छपरा में अधिवक्ता पिता पुत्र दोहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह पंकज कुमार राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में मृतक का भाई भी घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धना चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 10,00,000 रुपए मूल्य की 83 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के नरकटियागंज में रेलवे सुरक्षा बल ने सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस की पेनेट्री कार और उससे सटी बोगी से 62 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में पेनेट्री कार मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 400 कार्टन शराब बरामद की है। शराब की यह खेप दवा के बीच छुपा कर लाई जा रही थी। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना हाजत से 25,000 रुपए का इनामी अपराधी प्रभु भगत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात 3 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 53,000 करोड़ से अधिक की 5 परियोजनाएं स्वीकृत, सीएम और पथ निर्माण मंत्री गडकरी संग बैठक में सहमति। हिंदुस्तान ने लिखा है शिक्षकों के तबादले की बाधा दूर, पोर्टल पर अगले हफ्ते से आवेदन। दैनिक भास्कर लिखता है दरभंगा में लैंडिंग के दौरान स्पाइस जेट का टायर फटा, इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट। प्रभात खबर की सुर्खी है 2 जुलाई से मलाही पकड़ी तक चलेगी पटना मेट्रो। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज अखबार की सुर्खी है बिना परिसीमन होंगे बिहार पंचायत चुनाव, आरक्षण रोस्टर पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाए। कल से एक दिन में अधिकतम डीजल खरीदने की सीमा होगी समाप्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर बनी सहमति। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। और पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी, सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
5: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। प्रेमी थे लोग तो शादी करना चाहते थे तो अपने माँ बाप के पास ले गया लड़का, लड़की को मिलवाया कि सब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, इसकी जन्म पत्री मैच कर लेंगे। वो बोले भाई ये शादी तो नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? वो लड़की तुम्हारे से बड़ी है 2 साल, तो इसमें क्या है, 2 साल के बाद शादी करेंगे। एक भाई साहब ने एड निकाला पेपर में, अच्छे थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड और एक ही शर्त है कि डाउरी में आई वॉन्ट ए ट्रैक्टर और नीचे जो है अंडरलाइन किया होता प्लीज सेंड द फोटोग्राफ ऑफ द ट्रैक्टर इमीजिएटली।

0: एक मजबूत समाज के
1: समाज
0: लिए
1: के
0: और एक
1: लिए।
0: मजबूत देश के
1: देखिए,
0: लिए।
1: सवाल ये पैदा होता है कि जब एक खातून, एक माँ भी है, एक बीवी भी है, एक बहन भी है, इतने सारे किरदार को एक साथ निभाती है
0: और वही फाउंडेशन स्टोन है
1: जी,
0: वो,
1: और बहुत ही मजबूती से निभाती है, उसमें ये खुद मुख्तारी तो होनी ही चाहिए कि वो डिसीजन मेकर भी बने और खुद कफील भी बने, यानी खुद के लिए सेल्फ अर्निंग भी मतलब कर सके, ताकि वो अपने हस्बैंड का या अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके।
0: मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये नहीं था कि मुझे अर्न करना है, मगर खुद के लिए,
1: खुद की
0: मैंने वो पढ़ाई
1: एक,
0: की वो उस टाइम मेरा कहीं नहीं था कि हम कोई जॉब करना है, मगर खुद के लिए मैंने पढ़ाई की, ताकि कल मैं कहीं भी खड़ी हूँ समाज में तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो वो होता चला गया, पढ़ाई चलती चली गई और इत्तेफाक से जॉब्स भी आ गए।
1: वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है, एक अजीब सी जो छवि उभर कर आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है कि उन्हें हर जगह अब एक प्लेस दिया जा रहा है, पहले भी दिया जाता था।
0: जब हमने जब पढ़ाई शुरू की, फादर में डॉक्टर थे, हम लोग सिर्फ दो बहन थे, तो उस टाइम का जो एक था, जैसे लोग आते थे, जैसे मेरी मदर को भी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर बेटा नहीं हुआ है तो कोई नहीं, दामाद ही आपको तुम्हारा बेटा होगा, इस तरह से
1: तो
0: वैसे करके वो सवाला जो समाज था जहाँ पर लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, आज भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, वो उस फादर से या बेटे से ही चलती है। मैं पहली लड़की हूँ अपने शहर में जिसने स्कूटर चलाया, तो उसके लिए बड़ा अपोजिशन हुआ, मगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, मेरे फादर मेरे साथ थे, और जहाँ भी कोई भी ऑपोजिशन होता था वो खड़े होते थे और बोलते थे कि नहीं, ये जरूरी है इनके लिए, इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, उन्होंने बढ़ावा दिया। तो जब तक आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही है
1: मैम,
0: बढ़ना कोई मुश्किल हो जाए।
1: शाहिना मैम, मेरा सवाल है आपसे कि हमारे मुआशरे में खवातीन खुद मुख्तारी को कितनी अहमियत दी गई है?
2: देखिए, हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और पूरी अहमियत भी दी जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान है? क्योंकि एम्पावरमेंट जब हम कहते हैं, खुद मुख्तारी की बात आप जब करती हैं, तो जाहिर तौर पे सिर्फ एक चीजें नहीं होती।
1: बिल्कुल,
2: जब आप डिसीजन मेकिंग पर पहुंचती हैं, उससे पहले आपको इल्म लेना होता है, आपको उस बने बनाए दायरे को तोड़ने होते हैं जो समाज ने बनाए हुई थी अपनी दुनिया, वो जो एक सेट नॉर्म्स है सोसाइटी की, कि औरतों की जगह इसी जगह पे होगी,
1: जो एक लिमिटेशंस,
2: बिल्कुल वो लिमिटेशंस इतनी गहरी हैं कि वहां से मूव
1: करना,
2: औरतों को निकलना, हमारी बहनों को निकलना, बच्चियों को निकलना।
1: सवाल ये है कि ये हम जब फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में एक खातून को बोलने की,
2: जरीन में वही बात,
1: मर्दों के बीच में बोलने की इजाजत नहीं।
2: मैं जरीन वही बात कहना चाह रही हूँ कि औरतों को कुछ किरदार, जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, कुछ किरदार में आपने बांध दिया, और अभी जो मैम कह रही थी, नसीन मैम कह रही थी कि सिटीजन्स, हमने उस किरदार में एक इंडिपेंडेंट औरत, एक इंडिपेंडेंट इंसान हम वहां नहीं देख पाए, हम सिटीजन्स नहीं देख पाए। हमने क्या देखा? हमने उनकी बीवी देखी, उनमें बहन देखी, उनमें तमाम रिश्ते के किरदार देखे, लेकिन उनकी जमीर, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कहाँ खड़ी होना चाहती हैं, उनके सपने क्या हैं, उनकी सोच क्या है, वो कैसी दुनिया बनाना चाहती हैं, और ये चीजों की जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से आप और हम जैसी तमाम लोग जो बैठी हैं, औरतें जो आगे आई हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके इस तरह से आगे आई हैं, तब ये एम्पावरमेंट की बात सरकार को, समाज को, और जितने जगह पे लोग बैठे हुए हैं, सारे इदारे में लोगों को समझ में आ रही है कि औरतों को अगर जगह ना दी जाए तो जाहिर है बराबरी की दुनिया नहीं बन सकती।
1: लेकिन अगर आप जरा सा बैक में जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे हुजूर की सबसे पहली जो थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने कारोबार किया, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने दर्स तालीम शुरू की, रजिया सुल्तान, बहुत सारे मिसाल कायम कर रखे हैं, तो आज उन्हें भूल जाते हैं लोग। नसीन मैम, एम्पावरमेंट उनमें बिल्डअप करने में गवर्नमेंट कितना रोल अदा कर रही है?
0: बहुत सारे रोल अदा कर रही है, और खासकर अगर बिहार की बात करें हम, तो आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है जिसमें स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं लड़कियों को, ओनली चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के लिए अलग स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट काफी साथ दे रही है इस बात में, और हर जगह औरतों को आगे लाया जा रहा है, उनको एक जगह दी जा रही है जहां वो स्टैंड अप कर सके। और खास करके अगर एम्पावरमेंट की बात करेंगे, आप एजुकेशन से शुरू करें, अगर इस्लाम में देखा जाए तो कुछ नहीं, तो हम बेसिक नॉलेज तो हम उनको देते ही है, उर्दू अरबी से हम शुरू करते हैं, हमारी औरतें कम से कम वो उर्दू अरबी जानती हैं, भले अगर ज्यादा स्कूल में नहीं जा सके, प्राइमरी तक ही पढ़ सके, मगर ऐसी नहीं कि इलिटरेट चारों तरफ देखेंगे, और खास करके शायद मैम है यहाँ पे,
1: खुद हाँ,
0: जुड़ी हुई है, तो वो देखती होंगी
1: जुड़ी
0: हुई है, तो उनको पता होगा। मुआशरा अगर देखा जाए तो मुआशरा बहुत

0: चीजों से मिलता है, जैसे जो सोसाइटी में रहते हैं वो भी एक बिल्डअप करता है,
1: हर
0: तो वो असर करता है कहीं ना कहीं, तो एक अलग सा जो सोशल कॉन्टेक्ट हमारे या सोशल नॉर्म्स हो जाते हैं उनमें ढलना पड़ता है। तो चाहे वो रिलीजन के हिसाब से हो या पॉलिटिकल या सोशल नॉर्म्स जो है वो फॉलो करते हुए एक सोसाइटी बनती है, सारी चीजों का उसमें मैलगम होता है, मतलब सब चीज मिलजुल करके वो मुआशरा आता है और आप उसमें खड़ी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा
1: जी। सबसे बड़ी चीज ये कि खवातीन को जिनको बोलने की इजाजत नहीं थी, आज वो अपने ही अगर उनके खिलाफ कोई बात होती है या किसी भी तरह का ईव टीसिंग वगैरह अगर कुछ सामने आता है तो अब खवातीन आवाज उठा रही हैं।
0: क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड हो रही हैं, वो पढ़ाई उनके साथ वो है उनके साथ
1: जी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे लॉज भी बनाए हैं जिनका फायदा खवातीन को पहुंच रहा है। शाइना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप खुद इसके बारे में जानती भी होंगी क्योंकि आपने जमीनी सतह से काम किया है और कर भी रही है, तो वो जो लॉज बनाए गए हैं खवातीन के लिए और उनमें खुद मुख्तारी के साथ साथ उनको सेफ्टी के लिए और उनके अर्निंग हैंड के लिए, तो वो कौन कौन से हैं और किस तरह से वो डेवलप हो रही हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी चीज है एक तो एजुकेशन, नो डाउट। उसमें तो काफी स्कीम्स हैं, जैसे मैम ने भी बताया अभी कि कन्या उत्थान योजना है या स्कॉलरशिप है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, तो चीजें तो है ही, लेकिन इसके अलावा सबसे पहली चीज तो ये कि जो लीडरशिप पोजिशन में औरतों का आना
1: जी,
2: ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप पढ़े हो या ना हो, लेकिन लीडर तो, जैसे आप कह भी रही हैं कि सोसाइटी में अगर हमारे यहाँ भी देखें तो औरतें ही घर के डिसीजन लेती रही हैं, हमारी दादी हमारी नानी ये सारी लेती रही, तो वो फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंटल इश्यूज पे डिसीजन लेने के लिए वो पंचायतों में आई, तो वो गवर्नमेंट का एक बड़ा स्टेप रहा कि आपने 33% रिजर्वेशन से लेकर 50% रिजर्वेशन तक आपने लोकल गवर्नेंस में दिया। एक तो वो चीजें हैं कि आप जब लीडरशिप पे आती हैं तो हालात बदलते हैं थोड़े, इसलिए बदलते हैं क्योंकि घर की चार दीवारी से आप कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं और पब्लिक प्लेस में आपकी बात और आपके डिसीजंस को सुनी और मानी जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि आधी आबादी रूलर भी है हमारी और अर्बन भी है, दोनों ही जगह इलेक्टेड वुमन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। दूसरी चीजें जो आप लॉज की बात कर रही हैं या कानून की बात कर रही हैं, तो पहले ये माना जाता था कि घर के अंदर के लड़ाई झगड़े, मियां बीवी के लड़ाई झगड़े, प्रताड़ना, अलग अलग तरह के तंग करना, ये सारी चीजें जो है ये घरेलू मसला है। लेकिन आपको देश के कानून ने कहा बिल्कुल नहीं, औरतों पे जुल्म घर के चारदीवारी के अंदर हो या चारदीवारी के बाहर हो,
1: तो
2: ये जुर्म है और ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये पब्लिक मैटर है और ये देश का मैटर है, सिटीजन्स का मैटर है। तो इसलिए हमारे बीच में फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2015, जिसमें ये है कि कोई भी ख्वातीन जिनको लगता है कि उन्हें किसी भी तरह की एक्सप्लॉइट है, टॉर्चर हो रही है, मेंटल फिजिकल इकोनॉमिकल किसी भी तरीके से, तो वो हेल्पलाइन उनके लिए मौजूद है, वो हेल्पलाइन नंबर 181 पे वो कॉल कर सकती हैं, उनके बिहाफ में अगर कोई और भी करना चाहे तो उनकी खबर दे सकती हैं। मतलब अब डरने की बात नहीं है कि घर के अंदर जो मुझे मारा गया तो वो घर का मसला है,
1: लेकिन तो एक चीज और भी है साथ में, जब वो बाहर निकल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, उनकी सेफ्टी के तौर पर एक्ट और बनाए गए, उसमें एक पॉक्सो भी है जिसका,
2: नहीं पॉक्सो तो बच्चों के लिए है, लेकिन पॉश है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एट वर्कप्लेस, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि वही जो शुरू में कह रही थी कि औरतों की लड़ाई कहीं खत्म एक जगह नहीं होती है, जब आप घर से बाहर निकले और आपने खुद से काम करना शुरू किया, आप एम्प्लॉयमेंट में जुड़ रही हैं, तो वहां एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है। और जो नजरिया है समाज में खास तौर पे औरतों के लिए जो नजरिया है, उसमें कुछ जो सेट नॉर्म्स बनाए गए उसमें औरतों को कमतर देखना, उनको ऑब्जेक्ट के रूप में देखना, ये चीजें कहीं ना कहीं माइंडसेट में पैट्रियार्कल माइंडसेट है लोगों के, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है उसके तहत हर एक, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, गैर सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट कंपनीज हो, हर जगह पर आपको एक कमेटी बनानी होगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, ICC होती है, उसके बारे में चस्पा होना चाहिए दीवार पे कि कौन है जो उनकी बात को सुन सकते हैं। मैं ओपन में नहीं कह सकती, मैं इंप्लॉई हूँ,
1: बहुत सारी बातें होती हैं,
2: हाँ बिल्कुल, मैं अपने ही कुलीग के बारे में ओपन में नहीं कह सकती
1: जी।
2: तो ICC जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उनके पास वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उनकी सुनवाई होती है बाजाबता, और उसमें सजा वगैरह सारी चीजों का प्रोविजन है। तो ये एक बड़ा स्टेप है कि घर के बाहर भी औरतों को सिक्योरिटी और उनको एक इज्जत देना, उनको बराबरी के हक देने के लिए।
1: बिल्कुल सारा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि खवातीन खुद मुख्तारी या खुद कफीली को हमारे मुआशरे में किस नजरिए से देखा जा रहा है?
0: पहले जो भी रहा हो नजरिया, मगर अब लोगों में चेंज

0: आ रहे हैं, बच्चियों को लोग पढ़ा रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, बच्चियां बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, अपने घरों से निकल करके दूसरे शहरों में जा रही हैं और पढ़ रही हैं और जॉब्स में जा रही हैं और पेरेंट्स का सपोर्ट है, रिश्ते में आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रही है, प्रोफेशनल कुछ एजुकेशन है कि नहीं, तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं। मैं जो देख रही हूँ अपने एडमिशन का जो डेटा है फीमेल्स का, कभी कभी आप एग्जाम सेंटर्स में जाएंगे तो लगेगा कि ये कोई वुमेन सेंटर है क्या। हाँ। खास करके ना जैसे बीए वगैरह के बाद तो ग्रेजुएशन के बाद शादियां हो जाती हैं, तो एक दूसरे तो डिस्टेंस एजुकेशन है तो बच्चियां जुड़ती हैं उनसे।
1: आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और वो एक सोशलिस्ट है, इसलिए आप लोग वो एक चीज देख रही हैं। मगर मैं जहां तक एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं एक चीज जो देख रही हूं कि आज भी जो लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है और वो जोड़ भी रहे हैं, लेकिन अगर आप विलेज की सतह पर यानी देही सतह पर कभी जाते हैं, जैसे शाहिना जाती होंगी, तो उन्हें पता है कि जो गांव की खवातीन है वो आज भी मेन स्ट्रीम से दूर हैं।
0: मेरा जो एक्सपीरियंस है 33 साल का एजुकेशन लाइन में, हाँ। और खासकर इग्नू से रहे साथ में, तो उसमें ये रहा कि हम लोग तो गांव-गांव तक एजुकेशन एट योर डोरस्टेप्स। आप तीन माने जैसे बिहार के अगर हम बात करें तो हमारा जैसे भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, उस तरह के वहां सब और भी अंदर से गांव-गांव के लोग आकर जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ रहे हैं, पीजी कर रही हैं, सोचिए
1: जो अभी भी हैं जो कटे हुए उनको किस तरह, ये हमारे माशरे का नजरिया, यही मैं पूछना चाह रही हूँ क्यों अभी भी कि नहीं लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, आज भी गांव में है इन चीजों को, मैंने देखा है कि उनका नजरिया आज भी है वैसा,
0: उन्हें परसेंटेज अब क्या है और पहले क्या
1: गया, बहुत
0: बहुत कम हो गया,
2: नहीं
0: क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई है ना,
2: स्कूलिंग
0: भी है, उनको इतना सारा कुछ दिया जा रहा है।
2: डाटा को देखें, NFSS 5 आया हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2022 का डाटा कहता है कि आज के समय में भी जिस स्टेट में हम हैं बिहार में 35-40% लड़कियां ही ऐसी है जो 10 साल तक स्कूली पढ़ाई पूरी कर पा रही
1: जी।
2: हमें चौंकाने वाली चीजें हैं क्योंकि हम और आप नसरीन मैम जिस जगह पे या जरीन आप जिस जगह पे बैठी हैं, हमें लगता है कि हम एक अलग दुनिया हो रहे हैं,
1: हाँ।
2: लेकिन शायद वो स्ट्रगल और वो दूरी है,
1: जो
2: वो गैप बहुत
1: जो वही मैं कह रही हूं।
2: क्योंकि आप जब गांव में जाएंगी तो लड़कियां जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं क्योंकि जहालत है, आप इसको इनकार नहीं कर सकती, और जो बंदिशें हैं चाहे वो रिलीजन के नाम पे बंदिशें हैं चूंकि ये गलत तरीके से फैलाई गई है, जैसे कि शुरुआत में जरीन आपने कहा ना कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का नाम लिया आपने, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हमारे यहाँ जो ये बड़े बड़े नाम थे जिनके पीछे एक बड़ी कहानी थी, उस कहानी को नरेट कर रहे हैं सोसाइटी में, क्या नहीं हो पा
1: रहा,
2: जो नरेट कर रहे हैं वो कोई पैट्रियकल माइंडसेट के लोग नरेट कर रहे हैं जिनके नजर से मर्दों की दुनिया एक अलग होती है जो बाहर जाके पढ़ सकते हैं कर सकते
1: जी,
2: हैं
1: जी,
2: और जब लड़कियां निकल रही है तो आप जैसे इफ्टी सिंह कह रही हैं लड़कियां पढ़ाई क्यों छोड़ रही हैं, क्योंकि रोज बरोज इन्हीं चीजों से निकल रही हूं। आज भी हमारी लड़कियां अगर 25 लड़कियां हैं तो 25 में 20 गर्ल्स इसलिए स्कूल छोड़ रही हैं क्योंकि आज भी रास्ते में वो कहती हैं कि मोलेस्टेशन होता है, इफ्टी सिंह होती है, और फिर इसके लिए हमें स्कूल से बात करना, गांव के
1: मुखिया
2: से बात करना होता
1: है,
2: तो ये चीजें हैं। दूसरी बात कि चूंकि बाहर जाने का रिस्क और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, हम तो हैं ये तो मानते हैं, हाँ। मुस्लिम अगर सोसाइटी की बात करें आप तो जितने जिस लेवल पे हमें होना चाहिए था, हमारे यहाँ हुनर कम है, हुनर का लिमिटेशन सिलाई कढ़ाई में बांध दिया गया
1: जी जी,
2: नसरीन बहुत कम बन पाई हैं, मैं आपको सलाम करती हूँ, जरीन बहुत कम बन पाई, मैं उनको सलाम करती हूँ कि आप लोगों ने लड़ा और सैल्यूट है, आप गाँव में जाए सिलाई से आगे लड़कियां नहीं निकल पा रही है, हमारी लड़कियां सरकार भी जब कोई स्कीम लाती है तो कहती है तलाकशुदा मुस्लिम औरतों के लिए सिलाई मशीन,
1: हाँ।
2: आप कहाँ बोलते हैं सारी मुस्लिम लड़कियों के लिए या औरतों के लिए,
1: हाँ।
2: आप जनरलाइज कर रहे हो आप, लेकिन खासतौर पे आप माइनॉरिटी सेक्शन को भी आप देखें ना, उनके लिए
1: माइनॉरिटी की बात नहीं है, सबके लिए कीजिए ना, अगर सब
2: नहीं सबके लिए तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर हम एक खास अपने इधर माइनॉरिटीज गर्ल्स के लिए भी बात करें, स्ट्रगल ज्यादा है दोनों के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन हम एक मार्जिनलाइज्ड में भी मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं
1: जी,
2: ये होता है,
0: आपने देखा होगा मगर डेवलपमेंट तो हुआ है,
1: लेकिन
0: जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है फ्री स्कूलिंग है
2: उसका फायदा ले रही है,
0: उनका फायदा ले रही है पहले से,
2: वो असर्टिव है, वो क्या है ना कि उन फायदा को लेके अब लड़कियां आगे निकल
0: रहे हैं ताकि वो जाए और वो फायदा उठा सके।
1: मैं वही बता रही हूँ आपको कि पूरे मुआशरे की बात कर रही हूँ कि पूरे मुआशरे में आज भी देही सतह पर अगर लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं तो वो सिर्फ सिक्योरिटी के एतबार से ही हो रही हैं, क्योंकि आज भी ईव टीसिंग और आज भी

0: मॉलेस्टेशन वगैरह होता है,
1: होता है,
0: और जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, वो कहीं पर अचानक से रुक जाते हैं और वही लड़कियां निकल पाती हैं जो खुद फाइट करती हैं।
1: मुझे लगता है कि सोसाइटी में काफी चेंजेस आए, मैंने देखा है, और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट है, जो आप जो करिए, जो 10 साल पहले का सिनेरियो देखिए, आज के बाद देखिए, तो गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया है, इवन सोसाइटी चेंज हुई है उसी हिसाब से, क्योंकि बहुत फैसिलिटीज आई हैं, बहुत सारे लॉज आ गए और लोग फायदा उठा रहे हैं, तो हम वो वाले ना देकर आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो डेवलपमेंट हुआ है।
2: देखिए क्या है, सोसाइटी ये नहीं कह सकते कि स्टक है, जो बात आप कह रही हैं एग्री हूँ कि स्टक नहीं है, स्ट्रगल ज्यादा हो रहा है, कर रही हैं, हमारे सामने ऑप्शंस आ गए हैं। पहले बीच का ऐसा दौर था जब ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, औरतों के सामने समझ भी नहीं आती थी दुनिया क्या है, वो ऑप्शंस आ गए हमारे पास, सपोर्ट में हमारी सोसाइटी के कई लोग आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है, नेशनल गवर्नमेंट आती है, ये सारी चीजें हैं, बावजूद इसके कि वो जो रफ्तार होनी चाहिए उसमें भी धक्का देने की जरूरत
1: है। शुरुआत तो हुई है, ये फ्लो कितना तेज चलेगा, आगे चलेगा, वो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे नेचुरली गवर्नमेंट उसका साथ देगी, उसी हिसाब से रूल्स आएंगे, लॉज आएंगे, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशन जो भी आए हैं वो पब्लिक तक पहुंचने चाहिए कि ये सब तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, वो लोगों तक डिसमिनेट हो, लोगों तक पहुंचे, तभी तो उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: उसके अलावा वो चीज़ थाना में, प्रमोशन थाना में ही महिला डेस्क बना दिए गए, हर थाने में महिला डेस्क है, लेकिन उसके बारे में लोगों को भले ही थोड़ी कम अभी जानकारी है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा इंतजाम गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा,
1: उसकी प्रमोशन की ज्यादा जरूरत है लोगों तक, वो बात ग्रास रूट लेवल तक ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए,
2: सारी चीजें पहुंचानी है, लेकिन एम्पावरमेंट जहां तक शुरुआत होगी वो सेल्फ से तो होगी,
0: सेल्फ से ही होगी।
2: हमें सबसे पहले जिस चीज पर जहां पहुंचनी है वो है आपको सेल्फ अवेयरनेस हर एक में होनी चाहिए,
0: सेल्फ अवेयर,
2: जैसे ही आप सेल्फ अवेयर होते हो तब आप डिमांडिंग पोजिशन में आते हो, तब गवर्नमेंट ये सारी चीजें, डॉट्स आपके पास है, हर कुछ है, जोड़ना तो हमें खुद पड़ेगा,
0: खुद पड़ेगा।
2: सबसे पहली चीज जो होती है वो हर एक औरतों के लिए, हर एक खातिन के लिए ये होती है कि आप सेल्फ अवेयर हों, आप जानें, अगर आपको नहीं मालूम है आप पूछें, आप सवाल करें, सिस्टम से सवाल करें, सोसाइटी से सवाल करें, घर में सवाल करें,
0: बिल्कुल,
2: जब बेटियां सवाल करती हैं तभी फादर भी सोचते हैं, अगर बेटियां सवाल ना करें तो शायद फादर भी एक बहादुर फादर नहीं बन सकते, वो ट्रेडिशनल फादर बन के रह जाएंगे।
0: बहुत अच्छी बात,
2: सोसाइटी में तो सबका साथ चाहिए, और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे सामने
0: है, यही हमारे मुआशरे का नजरिया होना चाहिए। अभी मैंने जो सवाल किया था उसका बहुत सटीक जवाब ये सही आपने कहा कि यही मुआशरे का हमारा नजरिया होना चाहिए कि हम सवाल करने के लायक बनाए। मैम एक सवाल आपसे था कि खवातीन खुद मुख्तारी में मर्दों का क्या किरदार होना चाहिए?
1: बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते, फैमिली के सपोर्ट हर जगह जरूरी है,
0: बिल्कुल।
1: छोटे बच्चे से जैसे जब आप शुरुआत करते हैं आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, जो इन लॉज हैं आपके हस्बैंड हैं खास करके, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जरूरत यह है कि आप डिमांडिंग हो, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, ये सब चीजें अवेयरनेस हमें जगानी होगी, माशा नेचुरली उसका साथ देगा, ऐसा नहीं है।
0: एक कहावत है ना कि भाई हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह से हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है, चाहे वो मर्द जिस रूप में भी हो, वो उसके फादर के रूप में हो, वो उसके शौहर के रूप में हो, या भाई हो, जो भी हो, लेकिन सबकी मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती है, सब लोग ऐसा।
1: मेरा ये मानना है कि आप जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये नहीं कि आप अपनी फैमिली छोड़ दें, कामयाब औरत वही है जो फैमिली अपने जॉब अपने जो भी काम है उसका सब साथ लेकर के चले, तभी वो कामयाब है। मैं उसे नहीं मानती जो अपने फैमिली को छोड़ करके आगे बढ़ती चली जा रही है। आपको उस मुआशरे में अपना कंट्रीब्यूशन देना है तो एज अ होल देना है। बस एग्जांपल्स होंगे यहाँ पर, उन लोग जॉब को ज्यादा तरजीह देती है, फैमिली को नहीं देती है, मगर खूबसूरती वही है ना, जहाँ पे आप सारे रिश्तों को निभाते हुए अपने काम में आगे बढ़े,
2: वो अच्छी बात है। लेकिन मर्द और औरत की जब आप बात करते हैं तो दो डिफरेंट प्लेनेट की बात आप नहीं करते,
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि हुआ यही है, औरतें यूं क्यों पीछे हुई, क्योंकि मर्दों ने अपनी दुनिया बना ली, हर चीज को अपने तरीके से वो आगे ले गए, इंटरप्रेट करते गए, औरतें पीछे छूटती चली गई। अब अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट में कहते हैं कि औरतें आगे चला जाए मर्द पीछे हो जाए, तो भाई दोनों ये तो हो नहीं सकता, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारे जो देश का कानून है वो भी यही कहता है, हमारी फंडामेंटल राइट है, हम ये बात करते हैं कि औरतों की डिसीजंस को तवज्जो दी जाए, उनको इज्जत दी जाए,

0: उन्हें अपने बराबर समझा जाए। तो जब आप ये कहते हैं तो जाहिर तौर पे किसी को बनाने में किसी के हाथ नहीं होती, हम मिलकर दुनिया बनाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ फैमिली मिलकर बनती है, एक अच्छी खूबसूरत फैमिली मिलकर होती है। अगर आप एक किसी को किसी के दायरे में बांधते चले जाएंगे, अगर औरतों ने भी मर्दों के दायरे बना देते हैं कि भाई आप सिर्फ इतना ही काम करो, उसके अंदर आप घर के डिसीजन में नहीं लोगे, तो शायद मर्द भी इस हिसाब से नहीं होते। तो हमें ये जो फासला है ना मर्द और औरत के बीच,
1: इसको खत्म,
0: एम्पावरमेंट यही कह रहा है ना कि आप मिलकर चलना है, आपको ह्यूमैनिटी, आपको इंसानियत की बात समझनी है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगी, औरतों को एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोशिश करते हैं, मर्दों को किचन की दुनिया में जाने से कौन रोक रहा है? कौन सा कानून बना है कि भाई आप किचन में नहीं जाओगे? अब वो वक्त है कि जब आप इस डिस्कोर्स को कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे बराबरी से काम का डिवीजन बंद कर दें।
1: अच्छा एक सवाल,
0: एक मिनट, नाइट शिफ्ट में लड़कियां काम कर रही है, सिक्योरिटी आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि पूरी दुनिया की सोच बदल गई औरतों को लेकर, तब आपको सिक्योरिटी देना पड़ा, नहीं तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए,
1: नहीं चाहिए थी।
0: आप मर्द हो, मैं औरत हूँ, कोई बात नहीं, मिलके दुनिया चल रही थी, वो तो एक अलग प्रस्पेक्टिव था। तो अब आपको वो फासले मिटाने की जरूरत है, तभी मुकम्मल एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे कि औरतों के काम को इज्जत दीजिए, उनकी जो ख्वाहिश है उनको आपको समझनी होगी और उनके साथ कदम से कदम चलाना होगा।
1: सारा मैम, एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि खवातीन खुद मुख्तारी यानी वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है, हमें लगता है कि हाँ हम कुछ हैं, और वाकई हम कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं। हकीकत यह है कि हम एक माँ हैं, एक बीवी हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि इस माशरे की, अपने घर की तो मजबूत कड़ी है ही, इस माशरे की भी मजबूत कड़ी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दिमाग ही नहीं है, एक नर्म दिल भी है, तहम्मुल से काम करने वाला एक मिजाज भी है। तो आप हमें ये बताइए कि हम इस मैसेज को अपने मुआशरे में कैसे एक एक ख्वातीन तक पहुंचा सकते हैं।
2: एक एक बच्चे को हमें एजुकेट करना है, और ये हमारा अगर मिशन होगा तो नेचुरल वो एम्पावरमेंट अपने साथ ही आए, लोगों का नजरिया बदलेगा और एक एम्पावर्ड सोसाइटी बनेगी। तो आगे
1: शाहिना आप भी कुछ बताए,
0: नसीन मैम ने सही बात कहा, इल्म के बिना कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं,
0: तो इल्म की रोशनी चाहिए, रोजगार की तरफ बढ़े, दायरे तोड़ने पड़ेंगे, घबराना नहीं है, मालूम है कि बहुत मुश्किल है यह सफर, लेकिन जहाँ ठहर जाएंगी रास्ते रुक जाएंगे, क्योंकि हमें अभी लड़ना है और बढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ माँ बेटी बहन के आगे शाहिना भी बनना है, जरीन,
1: बिल्कुल जरीन भी बनना है।
0: तो जाहिर तौर पे लड़ना है, झगड़ना है, उठना है, गिरना है, लेकिन आसमां बहुत है हमारे सामने और हमें उस तरफ बढ़ना है। जहां भी ऑप्शन दिखे आगे बढ़िए, सवाल कीजिए, किसी भी चीज को सर झुका के मत मान लीजिए कि ये फलाने का हाथ था, ये फलाने का हाथ था, ये उसने, उन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। सवाल कीजिए, अगर आपको लगता है यहाँ सवाल करना है तो जाहिर तौर पे सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा। सिस्टम से सवाल कीजिए, घर में सवाल कीजिए, और खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर एक चिंगारी हर समय जगा कर रखिए। ये मान लेना कि मेरी दुनिया यहाँ खत्म हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकती हैं,
1: है ना,
0: बच्चे हो गए, जैसे आपने कई एग्जांपल दिया, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, छूट गई, बिल्कुल नहीं, आप शुरुआत कीजिए। सारी चीजें आपके पास, सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा है, अब आपको खुद से अपने कदम बढ़ाने होंगे, अरे आपको तोड़ने पड़ेंगे।
1: चलिए बहुत अच्छे,
0: हौसला बनाए रखना,
1: बहुत सारी बात अच्छे। इसी पर मुनीर नियाजी का एक शेर और है, शहर का तब्दील होना शाद रहना और उदास, शहर का तब्दील होना शाद रहना और उदास, रौनके जितनी यहाँ है औरत के दम से। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से खवातीन खुद मुख्तारी पर बात करके, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आई, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारा जो ये कन्वर्सेशन है, हमारी ये गुफ्तगु है, ये हर एक खवातीन तक पहुंचे, ताकि वो भी खुद मुख्तार बने, खुद कफील बने, और सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने आप को समझें कि हम क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामिन, आप सुन रहे थे मुजाकरा। मुजाकरा का मौजू था ख्वातीन खुद मुख्तारी और हमारा मुआशरा। प्रोग्राम में अब सुनिए नात।

प्रोग्राम में आप सुन रहे थे नात, जफर हुसैन कव्वाल और साथियों की आवाज में। सामईन, अब सुनिए गजल मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज में।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अनवर से। गायक कलाकार हैं रूप कुमार राठौड़। गीत सैयद कादरी का है और संगीत है मिथुन का।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यासा से, अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीत के बोल हैं परवीन भारद्वाज के और संगीत है दाबो मल्लिक का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

स्ट्रिंग्स फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे जुबिन गर्ग, गीत दीपक स्नेह का था और इस गीत को संगीत से संवारा था जुबिन गर्ग ने ही। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बेशरम से, अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत राजीव बरनवाल का है और संगीत है ललित पंडित का।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जिनिया से। आवाज अरिजीत सिंह की है, गीत कुमार का है और इस गीत को संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

मनोज मुंदसिर का और संगीत था अमाल मलिक का। इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है बज का कार्यक्रम अंगना। आलेख संकलन एवं वाचन है विजेता सिन्हा का। प्रस्तुत करता है मितेश कुमार मिश्रा।

0: अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करत हती। अपने सबके बज्जिका के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करत हती बदलल मौसम और हमर गाछ वृक्ष के विषय में। देखो, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए गाछ वृक्ष के बड़ा ही महत्व है। गाछ वृक्ष त कुदरत के एगो बड़का अनमोल उपहार है। कुदरत के देल ई उपहार से हम फल, फूल, लकड़ी, बांस, ईंधन जैसन बहुत चीज प्राप्त कर रहल हती। त ऐला अपना सबके लेल पेड़ पौधा गाछ वृक्ष के बड़ा महत्व है। एकरा बिना जीवन अपूर्ण है, या ई कहल जा सकैया कि एकरा बिना जीवन असंभव है। काहे कि ई संसार में जे हरियाली है एकरे वजह से है त आय हम सब जीवित हती। देखो, हम इंसान त गाछ वृक्ष पर निर्भर जरूर हती, पर एकरा संगे पशु पक्षी के जीवन भी
1: स्वच्छता पर विशेष ध्यान देवे के हो। आज कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं समय पर बारिश नहीं हो रहा है। कभी बाढ़ आवे या तो कभी भूकंप आवे या इस सब प्राकृतिक प्रकोप पर्यावरण के असंतुलित होने के कारण होइया। ऐला ई बात के सबके समझे के होए कि पर्यावरण के संरक्षण करना बहुत जरूरी है, और ई तभी संभव है जब एकरा ले सब मिल के सोचक।
0: अखनी अपने सुनित रही पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एगो छात्रा के की कहना रहे, हुनकर की विचार रहे। अब आओ कार्यक्रम में आनंद लेत हती अवधेश कुमार राय के गायल ई झूमर गीत के।

अखनी अपनी अवधेश कुमार राय के ई झूमर गीत सुनित रही। अब बात अपन धरोहर के, आई हम बात करे थी बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुनौरा धाम के। पुनौरा धाम माता सीता के जन्म स्थान मानल जायत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा जनक द्वारा खेत में हल चलावित समय इहे जगह पर माता सीता सोना के घरा से प्रकट भेलन। पुनौरा धाम देश के चुनिंदा मंदिर में से एक है, जहां भगवान राम के बिना केवल माता सीता के मुख्य रूप से पूजा कैल जाइया। इस मंदिर परिसर में एगो अत्यंत पवित्र आ ऐतिहासिक कुंड है। मानल जाइया इहे स्थान पर माता सीता प्रकट भेलन रहे। अइला ई जगह बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के जानकी मंदिर बहुत ही पुरान है आ यहाँ कैल गिल नक्काशी आ वास्तुकला श्रद्धालु के आ यहाँ घूमे वाला लोग सबके ध्यान अपना तरफ आकर्षित करित है। यहाँ के सीता वाटिका आ लव कुश वाटिका भी बहुत ही प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर के आसपास के धार्मिक स्थल में सीता वाटिका आ माता सीता के पुत्र से जुड़ल लव कुश वाटिका भी शामिल है। देखो इस पावन स्थल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कैल जा रहा है। यहाँ अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पर एगो भव्य जानकी मंदिर के निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहाँ राम नवमी आ सीता नवमी के दिन विशेष उत्सव मनायल जाइया आ इस उत्सव में शामिल होए के लेल भारी संख्या में श्रद्धालु आवे थतीन। देखू यहाँ के शांतिपूर्ण

0: परिवेश आ ऐतिहासिक महत्व इतने है कि एकरा बिहार के आध्यात्मिक विरासत के खोज करे वाला भक्त आ पर्यटक के ध्यान अपना तरफ आकर्षित करत है। पुनौरा धाम एगो प्रमुख रामायण सर्किट स्थल है, जेकरा केंद्र आ राज्य सरकार द्वारा भी विकसित कैल गेल रहे। यहाँ के वातावरण भक्तिभाव संस्कृति आ परंपरा से परिपूर्ण होत है। पुनौरा धाम एगो विशिष्ट स्थल है, विशेष रूप से उ श्रद्धालु आ पर्यटक के लिए जे माता सीता के कथा के निकट से जाने चाहत हतन। यहाँ पास में स्थित पंथ पाकर जानकी स्थान मंदिर आ जानकी कुंड भी दर्शनीय स्थल है। देखो अपन मिथिला में ऐसन बहुत जगह है जहाँ घूमल जा सकैया, वहाँ के इतिहास के जानल जा सकैया, पर पुनौरा धाम जैसन पावन स्थल पर अवश्य घूमे के चाही, यहाँ के इतिहास से परिचित होय के चाही। देखो वैसे तब पुनौरा धाम के संबंध में, वहाँ के विशेषता के संबंध में, वहाँ के इतिहास के संबंध में बहुते बात है, पर आए बात अपन धरोहर में बस इतने। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आ चंद्रमोहन पोद्दार के ई काव्य पाठ सुनी थती।
1: माय तू हमरा आ

माए तू हमरा आबे दे, हमहू तो हर गोदी खेलबौ, तोड़े दूध सजीवन पैबौ, तो हर नया खिलौना बनबौ, माँ तो हर मुस्कान बढ़ैबौ, हमरो त मुस्काबे दे, माए तू हमरा आबे दे, मामा कहके तोड़ा बुलैबौ, उंगली पकड़ के चलना सिखबौ, ठेहुनिया दैत घर में घूमबौ, चल चल के हम खेल दिखैबौ, हमरो त आके खेले दे, माए तू हमरा आबे दे, जूठा बासी भोजन खाके घर भर के सेवा गुहार के, माथा पर रखबौ सब आदेश, मांग न करबौ कोनो विशेष, घर के कोना सजाबे दे, माए तू हमरा आबे दे, तो हर सीख से जीवन जी के, दुन्नू कुल के सपना सी के, जी ले बौ हम आंसू पी के, घर के ज्योति जलतौ घी के, हमरो अरमान जलाबे दे, माए तू हमरा आबे दे, नै ले बौ चूड़ी न मेहदी, नै चाही हल्दी न बिंदी, लुप्त न होए बेटी प्रजाति, भ्रूण हत्या है एक कुरीति, दुनिया के समझाबे दे, माए तू हमरा आबे दे, बचपन बच्चा जाए लगल स्कूल, कुछ घंटा लिल दुनिया भूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, माए बाप के आँख के तारा, अक्षर ज्ञान से लाए तू जियारा, भविष्य के सपना सजे लगल, स्कूल ड्रेस में दम के लगल, निखरल चेहरा सवरल चूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, बहगा फीसा बस्ता के बोझा, रोए बउआ सबके सोझा, तैयो ने माए बाप पसीजे, ठेल ठाल के स्कूल भेजे, धीरे धीरे समझौता कैलक, स्कूल में नयका दोस्त बनैलक, छुट्टी होते मिटैया सूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, अब होमवर्क स्कूल से मिले लगल, टास्क पूरा करे लेल ट्यूशन धरायल, बच्चा उलझल किताब में, बचपन हरायल सिलेबस में, खेल कूद कम होए लगल, माए बाप कहे आवा अब्बल, नटखटपन के ना द अब तूल।

रिजल्ट लाबा स्कूल में बेस्ट, हुड़दंग में टाइम न कर वेस्ट, डॉक्टर इंजीनियर से कम की बनबा, पढ़बा लिखबा त खूबे कमेबा, बिनु पढ़ने बढ़िया घर से रिश्ता नहीं तो, काटा में ही त खिलैया फूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, हिये से बच्चा कुमलावे लगैया, ओकर प्रतिभा के विकास रुकैया, बच्चा बूढ़ा होए लगैया, बचपन ने जिम्मेदारी अबैया, बचपन के तनि लहरा बेदा, अमृत समय गवाबाना, जीवन पतता होइया त्रिशूल, बच्चा जाए लगल स्कूल। गाँव के जीवन, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया, आम बला गाछी आ पोखर के माछी याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया, चिड़िया के बोली आ बच्चा सबके टोली याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। हम खोजैत हती भोर के सिंदूरी सुरूज, गुल्ली डंडा आ टायर गाड़ी के क्रेज, अब त होइत है सुबह से साँझ तक पैसा के कवरेज, हमरा खेत खलिहान याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। पहले हर घड़ी शरारत सुझैत रहे, आब त पैसा कमाबे के जुगाड़ है, आब बारिश में भिजनाए आ धूप में खेलनाए बुड़बकई लगैत है, बाबा के दलान याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। पैसा हमरा किनलक, बचपन हमर छिनलक, लेलक हमरा सा मासूमियत, देलक हमरा लालची फितरत, संगी साथी के साथ माघ पूस में घूरा के किनारे आग तपनाए याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। फेर सा वापिस समय के ले न जा सकैत हती, ओझराइल जिंदगी के सोझरा न सकैत हती, हमरा बचपना बहुत याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। बिरहिनी, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल, जारा गर्मी बिरह में बीतल, बिना पिया जवानी बीतल, सैया गेलन कमाबे परदेस, गाँव में मन करैया कलेस, पैसा ले गेल हमर सलहेस, बिलायल है खुशी के लेस, बिरह के आग न होइया शीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल। बिरहिनी के मन तक कुहके, कामदेव के बान न चूके, भीजल लकड़ी के आग सुलगे, आँख से डबडब लोड बरसे, वियोग स जिंदगी है तीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल। पतझड़ में सुखल पत्ता झड़ गेल, हरियर नयका पत्ता फड़ गेल, आम लताम के फल फुलायल, हाय हमर साजन नै आयल, सोना सन रूप हमर भैल पीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल। आदर्श पुतौह, बियाह में त लगैया उबटन, घर में बर्तन करैया ढनमन, अपन जन्मल नीक लगैया, अनकर घर के तीत लगैया, बेटी के होई ससुराल में सेवा, पुतौह किया ने पैर दबैया, दामाद करे बेटी के मनुहार, बेटा के कन्या से रहे तकरार, बनल रहे दुनू में अनबन, बियाह में त लगैया उबटन। दहेज त समाज के अभिशाप बनलिया, दहेज त समाज के अभिशाप बनलिया, रंग रूप त खूब खोजैया, नाक नक्स आ हाइट नापैया, घर भर लेके संतोष न होइया, ससुराल के बादल बरसे भर जीवन, बियाह में त लगैया उबटन। बहू त चाही एमए बीए, सिलाई कढ़ाई आ चूल्हा फूके, सास ससुर देवर ननद के बिना स्वार्थ सेवा कर दे, काम करे हरदम उ निम्मन, बियाह में त लगैया उबटन। घर खातिर हो जाए बलिदान, परिवार से चाहे न कोनो प्रतिदान, बहु न कहियो पड़े बीमार, कम खाए करे बेसी सत्कार, बनल रहे निर्मल पानी सन, बियाह में त लगैया उबटन। जीवन में कहियो न होए उदास, मौन रहे फैलावे घर में प्रकाश, खर्च करे न कहियो घूमे जाए, पर्दा में रहे कभियो हक न जाए।

0: बताए, बनबैत रहे हर स्वाद के भोजन, बियाह में त लगैया उबटन। सबके खिला के सूते जाए, सूरज से पहले उठ जाए, न शौख रखे न करे विद्रोह, ऐसन चाही सबके आदर्श पुतोह। बाल गोपाल से भरल रहे आंगन, बियाह में त लगैया उबटन।
1: अखनी अपनी चंद्रमोहन पोद्दार के ई काव्य पाठ सुनित रही। अब समय हो रहल है शब्द सरिता के। शब्द सरिता में आए बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है दरकार, जेकर मायने होइया आवश्यकता। जेना कोनो कोनो लोग कहत हथिन बुजुर्ग माता पिता के अपन संतान के दरकार रहैया, मतलब आवश्यकता रहैया, त दरकार के मायने भेल आवश्यकता। कुरेब मतलब बुरी आदत, जेना लोग कहत हथिन उ आदमी के धूम्रपान करे के बड़का कुरेब है, मतलब बहुत बुरा आदत है, त कुरेब के मायने भेल बुरी आदत। चहेटनाय, एकर मायने होइया खदेड़ना। जेना कोनो कोनो लोग कहत हथिन कि पुलिस त चोर के चहेट के पकड़ लेलक, मतलब खदेड़ के पकड़ लेलक, त चहेटनाय के मायने भेल खदेड़ना। गबरघाट मतलब निडर, जेना कोनो कोनो लोग कहत हथिन उ आदमी त बड़का गबरघाट है, मतलब निडर है, ओकरा केकरो सामने सच बोले से डर नहीं लगैया, त गबरघाट के मायने भेल निडर। एगो और शब्द है कौचा देना, मतलब चिढ़ाना। जेना लोग कहत हथिन उ आदमी के त ई आदत है कि उ सबके कौचा देत है, मतलब चिढ़ा देत है, त कौचा देवे के मायने भेल चिढ़ाना। शब्द सरिता के अंत में एगो शब्द आयल है फड़ियाल, एकर मायने भेल निपटाना। जेना लोग कहत हथिन जमीन जायदाद के मसला बड़ा झंझटिया होइत है, ई जल्दी नहीं फड़ियाल जाइया, मतलब जल्दी नहीं निपटाल जाइया, तब फड़ियाल के मायने भेल निपटाना। त ई रहे शब्द सरिता के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अब संपन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने सबके कैसन लगैया, अपने अपन विचार अपन सुझाव एगो चिट्ठी के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हमरा भेज सके थती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। ईमेल के पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। अब प्रस्तुत करता मितेश कुमार मिश्रा के संग विजेता सिन्हा के दू अनुमति। एक बेर फिर से अपने सबके हम यानी विजेता सिन्हा प्रणाम करे थती।

अभी आप सुन रहे थे बज का कार्यक्रम अंगना। आलेख संकलन और वाचन था विजेता सिन्हा का। प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए, फोन

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
3: आ मनुख लेल बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तऽ खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तऽ हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत सुनिए राग मीला मल्हाल में ढोंडुताई कुलकर्णी से गायन।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं ढूंढू ताई कुलकर्णी के स्वर में राग देश में यज्ञ।

अभी आपने उपशास्त्रीय संगीत का आनंद लिया। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए

0: सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
1: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
1: जी,
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित

0: सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोता, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा।
3: खो देंगे। हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, न होंगे बेहाल। खो देंगे। हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, न होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खो देंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम,

0: फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात हाँ, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
6: क्या
7: क्या
6: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
4: कू, कू।
3: नीचा सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
8: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पानी पपी हना पिए दूजा पानी हाँ हाँ पपी हना पिए दूजा पानी पपी हना पिए दूजा पानी
1: काँ काँ काँ अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली
2: भौ भौ भौ अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा भौ भौ कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं
1: काँ काँ काँ कुत्ते देख नहीं रहे शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे काँ काँ शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ पपीहे सुन पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी
2: इसकी यही सजा हो यही दंड हो
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था नदी नाले सब सूखने लगे भयंकर लू चलने लगी जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे
1: काँ, काँ, अरे वो देखो वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है काँ।
5: हाँ और किसी जंगल में पानी नहीं है ना सारे जानवर यहीं आ रहे हैं भयानक गर्मी है ना
6: भाई मैं तो ठहरा कछुआ दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ कोयल बहन ठीक कह रही है सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है
1: अरे कछुए भैया दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए हाँ
6: हाँ कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे
5: क्यों नहीं मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब तुम हंस क्यों रहे हो कौवे क्या मैंने गलत कहा
1: अरे नहीं नहीं कोयल मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे
5: बाप रे मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है वैसे वो क्या करता है आजकल इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका
6: हाँ मैं भी हैरान हूँ कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की
1: काँ, काँ, हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी, चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: रहा था।
1: ठीक
0: आओ
1: है
0: कोयल, चलो चले
2: चलो।
0: आओ, कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: ये मर गया?
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी दरभंगा से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

नए जमाने के नए तराने, पहला गाना सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज में। गीत लिखे हैं जानी ने और संगीत भी दिया है जानी ने ही। फिल्म है सन ऑफ सरदार।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है हाउसफुल 5 से। आवाज है मधुबनी बागची और सुमंतो मुखर्जी की। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है व्हाइट नॉइज कलेक्शन ने।

0: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में। आर्को के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर्को ने ही और फिल्म है ड्रीम गर्ल 2।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए फिल्म गदर 2 से। आवाज है उदित नारायण, आदित्य नारायण और मिथुन की। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है फिल्म माँ से। उषा उत्तुप की आवाज है, हर्ष प्रणव वत्स और हर्ष उपाध्याय का संगीत।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए विक्रम मोंटरोज की आवाज में। शेखर आस्तत्व के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विक्रम मोंटरोज ने ही। फिल्म है ओ माई गॉड 2।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अरिजीत सिंह और शास्त्र सिंह की आवाज में कुरैशी अल जाफरी के लिखे गीत को। संगीत है प्रीतम का, फिल्म है मेट्रो इन दिनों।

नए जमाने के नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। फिल्म संगीत का आनंद आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से ले रहे थे। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे रविवार को प्रसारित हेलो जिंदगी का संपादित अंश। विशेषज्ञ हैं नरेंद्र कुमार निराला, संचालन करता है संजय कुमार और प्रस्तुति है असद दाऊद की।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफ़ी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफ़ी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: योग सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ऐसा अनुशासन है जो मन और शरीर के बीच तारतम्य स्थापित रखने पर केंद्रित है। यह चित्त वृत्ति निरोध के संयम का द्योतक भी है और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर परमात्मा को देखने का प्रयास भी है। हजारों वर्षों से भारतीय जीवन पद्धति का हिस्सा रहा योग स्वस्थ जीवन जीने की कला भी है और विज्ञान भी। स्वास्थ्य संवर्धन, जीवन शैली से जुड़े स्वास्थ्य विकारों पर नियंत्रण और रोग निवारण में सहायक प्राचीन भारत की परंपरा के द्योतक इस योग को भारत की ही पहल पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और पहचान मिली है और 21 जून को विश्व भर में हम 12वां योग दिवस मना रहे हैं। इस साल विश्व योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हम आपको बता दें कि अनेक जटिल रोगों के साथ साथ जीवन शैली से जुड़ी अनेक समस्याओं में योग को सही ढंग से अपना कर हम बहुत हद तक राहत प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या बढ़ती उम्र के साथ योगाभ्यास करने में कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए? ये सावधानियां हैं कौन सी? किसी खास रोग से बचाव या निवारण के लिए हमें किस आसन या प्राणायाम से फायदे हो सकते हैं? कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों और इनसे जुड़े तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। बढ़ती उम्र के साथ कैसे करें योग, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और बतौर विशेषज्ञ के हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं जाने माने योग परामर्शी नरेंद्र प्रसाद निराला जी। नरेंद्र प्रसाद निराला जी, आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में संभवतः पहली बार, आपका स्वागत, नमस्कार।
1: धन्यवाद आपका और हमारे सभी श्रोताओं का जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।
0: जी, बहुत सारी बातें होंगी योग को लेकर और ये बढ़ती उम्र के साथ जो योग है, जो इस पर थीम है, उस पर भी हमारा फोकस होगा। एक श्रोता हमसे जुड़े हुए
2: हैं। नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, जय हिंद।
2: मोहन पासवान गांव बचतपुर से सर बोल रहा हूँ।
0: हाँ मोहन पासवान जी, बताइए क्या जिज्ञासा है आज कार्यक्रम में?
2: किसी व्यक्ति को कुछ देर दोनों पांव बंद बैठे रहने पर उठने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और गिरने लगे, ऐसे व्यक्ति को कौन सा योग करना चाहिए उसे ठीक होने के लिए सर? दूसरा है सर की किस प्रकार का योग और खान पान को अपना कर जीवन भर स्वस्थ सफल जीवन दे सकता है लोग सर? तीसरा है सर की आजकल प्रत्येक उम्र के लोगों का नजर कमजोर हो रहा है और चलने लग रहे हैं, बच्चों को और लोगों को किस प्रकार का योग किया जाए, खान पान का उपयोग किया जाए जिससे कि भविष्य में ऐसे बच्चों को चश्मा न लगाना पड़ेगा?
0: तीन सवाल आ गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो मोहन पासवान जी, एक एक कर हम लोग विचार कर रहे हैं इन सवालों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: इनका तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लगातार बैठने के बाद जो है उनके आंखों के सामने अंधेरा छाना। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन भर कैसे स्वस्थ रहें? और तीसरा क्वेश्चन है कि नज़र कमज़ोर हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं पहले कि जो आंख के सामने अंधेरा छा रहा है उसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्व की कमी होगी जिसके कारण से वो अंधेरा छा रहा है। तो सबसे पहले उनको अपनी पोषक तत्व का जो भी कमी है उसका पहले एक बार चेक करवाना चाहिए। उसके साथ ही यदि नज़र कमज़ोर उनका आ रहा है या हो सकता है कि मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं या जो भी चीज़ें, तो उनके लिए हम लोग जल नेति और सूत्र नेति के बारे में बताते हैं, जो डिपेंड करता है कि वो कितने एज के हैं। और कम एज के हैं तो उनके लिए त्राटक जो है अभ्यास है, और जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए जो है तो
0: कार्यक्रम ही है।
1: हाँ, तो वो हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे।
0: एक और श्रोता जुड़ गए। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: हमारा नाम है चंद्रेश्वर साहब, ब्रह्मपुर कुंडी जाली प्रखंड से बोल रहे हैं सर।
0: जी चंद्रेश्वर साहब जी, बताइए।
3: हमारा उम्र है 66 साल और उम्र जो है भर्ती घर्ती में कब तक हम लोग व्यायाम कर सकते हैं, कितने उम्र से लेकर कितने उम्र तक?
1: रियली योग में कोई नहीं, कुछ भी सीमा नहीं होता है। मेरे साथ अभी साथ में 84 ईयर्स की एक उषा जी हैं जो

0: वो हमारे साथ योग कर रही हैं और बहुत अच्छे से सभी आसन परफेक्टली करती है। तो योग का कोई सीमा नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो बहुत ही धीमी गति से आसन करना है और ब्रेथ के साथ, आपके श्वास प्रश्वास के साथ प्रत्येक आसन को धीरे धीरे कीजिए करेंगे तो आपको उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भूलने की बीमारी है उसके लिए जो है भ्रामरी प्राणायाम आप लगातार कीजिए 2 से 5 बार, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए और कम से कम 7 मिनट 8 मिनट तक इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो आपकी जो भूलने की बीमारी है वो भी धीरे धीरे दूर होते चले जाएगा।
1: एक श्रोता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मैं दिनेश मिश्रा सरसा पाई से बोल रहा हूँ। कुल्हे का दर्द और ठेहुने का दर्द, इन दोनों दर्द के निवारण के लिए कौन सी योग प्रक्रिया को अपनाई जानी चाहिए?
0: दिनेश जी, आपको जो है सबसे पहले जब भी आप योग आसन करते हैं,
1: इनका जवाब ले लेंगे। एक श्रोता और भी लाइन पर है, है ना?
0: ठीक है,
1: उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। हेलो।
3: नमस्कार सर। नमस्कार
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
3: महाकांत सिंह बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ महाकांत सिंह जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से।
3: जी सर
1: जी, कहा जाए, क्या जिज्ञासा है?
3: आपने योगा दिवस पर योगाचार्य को बुलाया, इसे बड़ा उपहार क्या मिलेगा श्रोताओं के लिए
1: जी
3: सर?
1: तो इसका फायदा उठाइए और जिज्ञासा व्यक्त कीजिए महाकांत सिंह जी।
3: 57 साल का हो, मधुमेह से ग्रसित हूँ, मुझे कौन सा योग करना चाहिए जिससे मुझे मधुमेह में फायदा मिले सर?
1: अच्छा सवाल है। और एक साथ जितने भी मधुमेह के मरीज हैं, अगर वो इस कार्यक्रम को ट्यून करके रखे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उन्हें भी फायदा हो जाएगा।
0: तो सबसे पहले हम दिनेश मिश्रा जी जो सरसों पाही से हैं,
1: दिनेश मिश्रा जी का और महाकांत सिंह जी आपका, दोनों का सवाल हम ले चुके हैं और इसका जवाब बारी बारी से दे रहे हैं।
0: जिन्हें कूल्हे और घुटने का दर्द है उनके लिए सिंपल सा, जब हम दोनों पाँव को सीधा करके और आराम से दोनों हाथ को बगल में रख के पैर की उंगली को जस्ट धीरे से मोड़ते हैं श्वास के साथ और ओपन करते हैं, खोलते हैं, मोड़ते हैं, ओपन करते हैं, बट श्वास के साथ जब हम ओपन और क्लोज करते हैं तो घुटने के दर्द में काफ़ी रिलीफ देता है। उसके साथ जो जानू नमन है, जानू मतलब घुटना, तो जानू नमन जब हम अभ्यास करते हैं तो उससे भी हमारा घुटने का दर्द में काफ़ी राहत मिलता है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हैं जो इसमें हेल्प करते हैं।
1: अच्छा,
0: कूल्हे के दर्द के लिए जो व्यक्ति भुजंग आसन में आके और थोड़ा सा होल्ड करेंगे आंखें बंद करके और अपने कूल्हे पे ध्यान देंगे और ये भाव करेंगे कि जो हमारा कूल्हा का दर्द है वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी इसमें इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है। तो ये कूल्हे के दर्द के लिए हो गया। मधुमेह जिनको भी होता है उनका ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है
1: जी।
0: जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा इनको। हो सकता है कि ये इनका जो सुबह होगा वो चाय लेते होंगे खाली पेट और इवनिंग में जो है वो लेट नाइट, मतलब लेट नाइट भोजन करते होंगे, तो उसमें भी इन्हें चेंज करना पड़ेगा। इनके लिए जो योगासन है उसमें इनको मंडूक आसन ये कर सकते हैं, इवन सिर्फ भुजंग आसन भी करेंगे और पेनक्रियाज पे ये ध्यान दे के इस आसन को करेंगे तो उनको मधुमेह में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा।
1: एक बात बताइए नरेंद्र प्रसाद निराला जी।
0: जी जी,
1: योग को कहा जाता है कि अगर कोई रोगग्रस्त है तो उसमें तो सहायता होती है, लेकिन हम आरोग्य हमें प्राप्त तो होता रहे, हम रोगी हो ही नहीं, इसके लिए योग में क्या है संधारण?
0: इसके लिए सिंपल सा है, जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन रखें, साथ ही साथ जो है क्योंकि 2017 में बायोलॉजिकल क्लॉक पे एक रिसर्च मिला था कि हम सन के अकॉर्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल होता है, सूर्य के अकॉर्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल होता है तो हम बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, और बीमार पड़ने का मेन कारण होता है कि हमारा स्लीपिंग का जो है वो भी प्रॉब्लम है, हमारा खान पान का भी इशू होता है।
1: ये भी बता दें कि अगर किसी भी तरह का कोई भी योगासन बताया जाता है कि आपके लिए ये बेहतर है, ये बढ़िया है, आप करें, तो अच्छा होगा कि अगर आपके नज़दीक में कोई योगा एक्सपर्ट हैं तो उनकी आप सहायता ले सकते हैं। एक श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात करें। जी नमस्कार। हेलो।
4: नमस्कार संजय
1: जी।
4: कुमार मंडल मुंबई से। जिज्ञासा है जिनको सर दर्द कर रहा है, जिनको गैस है, उसके लिए क्या क्या योग है, इसके लिए जानकारी होगी।
1: अच्छा, थोड़ा सर दर्द के लिए बता दें कि सर दर्द जो है वो किस तरह का सर दर्द है?
4: गाँव घर में पत्नी लोग जो है ना लेडी, वो लोग

0: ये डिपेंड करता है। आप मुझे ये बताइए कि उनको महामारी के टाइम पे सर दर्द हो रहा है?
1: हाँ, महामारी के टाइम में आधा सर।
0: हाँ
1: हाँ,
0: आधा सर जब दर्द करता हो तो उनके लिए क्या है कि जल नीति का अभ्यास, और जल नीति का अभ्यास सटकर्म के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ उन्हें जो है शीर्षासन यदि करवा सकते हैं तो वो कर रहे हैं, या ये किसी भी एक्सपर्ट के सहायता से करें, अपने मन से नहीं करेंगे। और जो है आपको इन्वर्टेड आसन, जो जिसमें सर जो है नीचे जाता है, ऐसे अभ्यास उनको काफ़ी हेल्प करेगा। एक चीज़ और कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने कई सारे लोगों को करवाया है, नींबू और पानी को मिक्स कर लीजिए, उसको पहले पी लीजिए, और आपका जो उंगली है, उंगली का जो टिप है, जो ऊपर वाले भाग को आप 30 सेकेंड 1 मिनट के आसपास प्रेस करेंगे तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा सर दर्द में। तो ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जो भी इन्वर्टेड आसन है, सर के बल करने वाला आसन, वो काफ़ी हेल्प करेगा सर दर्द।
1: लेकिन नरेंद्र जी, एक ख्याल रखना पड़ेगा, अगर मेरुदंड में यानी स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरह का
0: उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें इन्वर्टेड आसन करने में दिक्कत, यदि किन्हीं को इस तरह का प्रॉब्लम है तो एक बार आप एक्सपर्ट के साथ मिलिए, डॉक्टर के पास जाइए, और उसके बाद ही आप इस गैस के लिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या कीजिए कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालिए रात में फूलने के लिए, और उस पानी को सुबह में गर्म कीजिए और उस पानी को पीजिए, और 3 आसन करने हैं, तरासन, त्रियक्तरासन और कटी चक्रासन। ये आसन बहुत,
1: एक बार फिर से बता दीजिए,
0: तरासन, ताड़ासन, त्रियक्तरासन
1: जी,
0: और कटी चक्रासन। ये तीनों अभ्यास आपको 5-5 बार करने हैं, इससे जो गैस बनता है वो धीरे धीरे बनना, क्योंकि कब्ज के कारण से ही गैस बनता है।
1: अच्छा नरेंद्र जी, ये बताइए, रात में खाना खाने के बाद वज्रासन के लिए कई एक्सपर्ट बताते हैं कि वज्रासन में जाने से भी गैस की जो समस्या है वो थोड़ी कम होती है।
0: ऑब्वियसली, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा जो अभी खान पान है, मोबाइल और जो अभी हमारा वर्किंग लाइफ है, इसके कारण से लेट नाइट हो गया है, जिसके कारण से भी जो गैस बनना, एसिडिटी होना, या खाने के साथ जो हम पानी पीते हैं, इसके कारण से भी गैस बनने की समस्या, एसिडिटी होना, ये सब हो जाता है। तो खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद पानी पिए तो बहुत ही हेल्प मिलेगा।
1: और रात में खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद सोए तो ज़्यादा।
0: हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोग बताते हैं, क्योंकि उसमें मैंने अभी बताया था, तो 2017 में बायोलॉजिकल क्लॉक पे नोबेल प्राइज़ मिला है, तो शाम के बाद मतलब भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के बाद भोजन नहीं करेंगे तो हमारे पास टाइम मिलता है, तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तब हम सोते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है वो सुबह इजी टू बाहर निकल जाता है, बहुत ही आराम से बाहर निकल जाता है, तो पेट साफ होगा तो कोई भी बीमारी नहीं आएगी।
1: इस समय हमारे एक श्रोता जुड़े हुए हैं जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: हमारा नाम हुआ सर जोगिंदर, और उम्र हुआ 65। सर सुनिए ना, ये ठौना जो दोनों है ना, कमर का नीचे एकदम इतना दर्द करता है, चलने में भी अस्त हो रहा है, 4-10 दिन से हुआ है।
0: आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि आपको भुजंग आसन का अभ्यास बहुत ही आराम से आप उसको कर सकते हैं, अन्यथा आप दोनों हाथ को अपने जो आपका ठुड्डी है, ठुड्डी के पास लगा लीजिए स्टैंडिंग पोजीशन में, मकरासन की स्थिति में आ जाइए, और एक के बाद एक पैर को आप मोड़िए और अपने कुल्हे से टच करेंगे। इससे क्या होगा कि जो जिन्हें मतलब कमर का जो दर्द है, वो कमर का दर्द में काफ़ी रिलीफ उनको मिलेगा। घुटने के दर्द के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप जानू नमन का अभ्यास करेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और कभी कभी जो है आप अपने लेग में थोड़ा सा ऑयलिंग किया कीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगा।
1: एक श्रोता जुड़ गए हैं जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी नमस्ते सर, मैं भानु प्रिया गुप्ता, समीला दरभंगा से बात कर रही हूं।
1: जी जी भानु प्रिया, बताइए क्या जिज्ञासा है।
3: जी सर, मेरी मम्मी का उम्र है 37, उनका पैर की ना मतलब एड़ी में बहुत दर्द रहता है 10-15 दिनों से, तो अच्छा। उसके लिए कोई योग है बताए सर।
0: आप मुझे ये बताइए कि मम्मी ने हाल में कोई चप्पल या स्लीपर जो भी है वो चेंज भी की है क्या?
3: नहीं सर, वो तो बहुत एक ही स्लीपर है जो रेगुलर यूज़ करती
0: हाँ, तो जो फ्लैट होता है ना, जो मतलब स्लीपर जो हार्ड हो जाता रहता है,

0: वो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम करता है एड़ी दर्द में। तो जो कांटे वाले जो चप्पल होते हैं वो लीजिए, और रात में सोने से पहले एक बकेट पानी में सॉल्ट डाल के लेग को उसमें डालना शुरू कीजिए, वार्म वाटर में। और जिन्हें बीपी हो वो क्या करेंगे कि वार्म वाटर के साथ साथ एक तौलिए को नॉर्मल पानी में गीला करके सर पे रख लेंगे, और साथ ही साथ इसको करने के बाद थोड़ा सा ऑयलिंग कर लीजिए लेग में। तो ये जिनको सोने में रात में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती, उनको भी ठीक होता है। जिनको वेरिकोज वेन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनका एरी में दर्द है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक बार आप
1: हाँ
0: यूरिक एसिड का जरूर चेक करवा लीजिए,
1: जी
0: यदि यूरिक एसिड में प्रॉब्लम होगा तो फिर एक बार अपने एक्सपर्ट से, जो भी डॉक्टर हो या
1: वैद्य हो,
0: योथेरेपिस्ट हो, वैद्य हो, उनसे जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए, तो वो आपको और बेटर सलाह दे सकते हैं।
2: एक श्रोता जुड़ गए जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: मैं राम कुमार शाह से, मेरा भिंडी कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ श्रीमान
2: जी। नमस्कार, बताया जाए क्या जिज्ञासा है।
3: जिज्ञासा है कि मेरे दाहिने घुटने में फुटबॉल खेलने के क्रम में 50 वर्ष पहले
2: जी
3: श्रीमान 50 वर्ष पहले आ गया था, जिसका इलाज किया, प्लास्टर हुआ, 1.5 महीने तक प्लास्टर भी कराया, कटने के बाद सारी क्रियाकलाप किया, कॉलेज का जीवन, सेवा का जीवन ऐसे व्यतीत कि अब तो रिटायरमेंट में ही हूँ, 79 वर्ष का उम्र मेरा हो चुका है
2: जी।
3: और अब जो है पिछले 2 वर्षों से उन्हें पुनः वही दर्द हो रहा है, बैठने उठने में, कुछ चलने में, वैसे साइकिल चला लेता हूँ लेकिन चलने में उठने बैठने में परेशानी है। तो वृद्धावस्था का उम्र है, और इस उम्र में कौन सा वृद्धाश्रम किया जाए ये हम जानना चाहेंगे।
2: राम
3: और इसके पूर्व योग दिवस है, इसकी शुभकामना हम करते हैं।
2: राम कुमार शाह जी, 79 साल की आयु में आप थोड़ा बहुत साइकिलिंग कर लेते हैं,
0: ये बहुत ही अच्छी बात है,
2: ये सुखद अनुभूति है हम लोगों के लिए भी। और जो घुटने का दर्द है ना, आपने बताया कि 50 साल पहले चोट लगी थी, उससे आप तो उभर गए थे, लेकिन अब वो दर्द उभर कर फिर से आने लगा है
3: जी।
0: अभी आपने रिसेंटली कहीं पे चेक करवाए थे क्या?
3: चेक करवाए थे।
0: उसमें क्या बोला गया आपको?
3: उन्होंने कहा कि ये वृद्धावस्था से संबंधित रोग है।
0: ओके,
3: इसलिए इसको दवा हुआ खाते रहिए।
0: आपके पैर की उंगली, आपने दाया पैर बोला था ना, दाहिने घुटने में दर्द हो रहा है, राइट?
3: दाहिने।
0: हाँ, तो आपके पैर की उंगली में भी दर्द होता है?
3: नहीं।
0: हाँ, तो पैर की उंगली का जो चौथा उंगली है, अंगूठे से लेके चौथा उंगली जो होता है, चौथा उंगली है ना, उस उंगली के पास में जो ज्वाइंट है उसको भी आप प्रेस करेंगे तो आपके घुटने के दर्द में काफी रिलीफ मिलेगा। एक बार घुटने का, एक बार घुटना, हाँ, चौथा उंगली, उसको आप दबाएंगे उससे भी ठीक होगा। और इससे पहले भी मैंने बताया है कि आप उंगली नमन, क्या कहता है, जानू नमन, ये सब अभ्यास आपके घुटने में काफी हेल्प करेगा, तो इस अभ्यास को कीजिए। और चौथे उंगली को आप प्रेस करेंगे, और एक पेपर टेप आता है जो दवा दुकान पे आपको मिल जाएगा, वो पेपर टेप लीजिए, उसमें मेथी चिपकाइए, और उस चौथे उंगली में उसको चिपका के उस मेथी को प्रेस करेंगे तो आपके घुटने दर्द में काफ़ी आराम आपको मिलेगा। तो इस तरह से करने से घुटने दर्द को आप आराम दे सकते हैं।
2: एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो
4: हेलो
2: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: दुखी पंडित राम मधुबनी।
2: दुखी पंडित जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
4: हमारा जिज्ञासा है सर, हमको भी गैस बनता है, बस आप कब्जियत रहता है, बस यही बीमारी है, हम लोग कैसे करें उसको जो आसान मिले।
2: दो बात बता दीजिए दुखी पंडित जी, आप करते क्या है पहली बात, और दूसरी बात कि आपकी उम्र कितनी है।
4: हमारा उम्र है सर 64 वर्ष सर, कीर्तन भजन में रहते हैं, नाल बजाते हैं, और अपना घर पर जीवन, अपना घर पर मूर्ति यही समझते हैं।
2: अच्छी बात है, सुनिएगा क्या बता रहे हैं।
0: दुखी जी, आपके लिए जो अभ्यास है मैंने पहले भी बताया, टीटी के तरासन, तिर्यक तरासन, कटी चक्रासन, आप पहले क्या करेंगे, रात में सोने से पहले एक चम्मच जीरा लेंगे,

0: और एक गिलास पानी में डाल देंगे। सुबह उस पानी को गर्म करके और उस जीरे को साइड कर लीजिएगा और पानी पी जाइएगा। उसके बाद बस जितना पानी पी सकते गर्म पानी ही पीना है सुबह में। और पीने के बाद आप ये तीन आसन, तारासन, त्रिकतरासन और कटी चक्रासन, ये अभ्यास करेंगे। आप किसी भी एक्सपर्ट के सहारे आप इस अभ्यास को करें तो बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे अभी गैस बना हुआ है तो आपका जो हाथ का तलहटी है, तलहटी पे आप दूसरे हाथ के अंगूठे से उसको प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो 5 मिनट के बाद देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो गैस है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे मधुमेह के लिए योग,
1: योग
0: जी, तो उसमें जो योग का अभ्यास है मंडूकासन हम कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार में भुजंगासन भी आता है। इसके बाद जो है भुजंगासन के साथ पादहस्तासन, तो ये सब अभ्यास। लेकिन ध्यान ये है कि ध्यान ये देने की बात है कि हम ब्रेथ के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे बहुत ही अच्छे से पड़ता है। क्योंकि जब हम देखेंगे तो हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमारे ब्लड के साथ मूव करेगा तो जो ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज होना बंद हो जाएगा, और जिसी को हम लोग प्राण ऊर्जा बोलते हैं। तो उस तरह से प्राणायाम के साथ, ब्रीदिंग के साथ हम अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी ही मधुमेह पे काबू पा सकते हैं।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं जी, नमस्कार।
2: गर्मी में योग कितने देर करना चाहिए, सर्दी के मौसम में?
1: ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है
0: आपका, बहुत ही अच्छा।
1: एक बार अपना नाम बता दें। समझ गया चंद्रेश्वर शाह जी, आपका पहला सवाल तो ये था कि उम्र सीमा निर्धारित है क्या योगा योग के लिए? अब पूछ रहे हैं कि मौसम के हिसाब से योग कितनी देर करना चाहिए जी।
0: तो मौसम के हिसाब से अभी गर्मी चल रहा है, तो गर्मी में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी जो है मतलब क्या कहता है कूल हो, मतलब जिसमें ठंडापन शीतलता का अनुभव हो। तो इसमें शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या चंद्रभेदी प्राणायाम, जो चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं नाक से सांस लेना छोड़ना इस तरह से, तो ये अभ्यास बहुत हेल्प करेगा। तो कम से कम एक घंटे, इतना भी नहीं हो पा रहा है तो 10-10 मिनट का गैप करके भी, मतलब भर दिन में 10-10 मिनट भी यदि आप योग 3-4 बार कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको योग का अभ्यास खाली पेट करना है, तो कम से कम खाना खाने की 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने के बाद, या उससे पहले आधे घंटे पहले आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी राहत देगा। योग का मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा पूरा बॉडी मुड़ जाए, घूम जाए, ऐसा कहते नहीं है। योग का मतलब इतना है कि हम किसी भी आसन को स्थिर पूर्वक, जैसे कहा गया है पतंजलि योग सूत्र में स्थिर सुखम आसनम, तो स्थिर पूर्वक जब हम किसी भी आसन में बैठते हैं तो वो योग कहलाता है। अब हमें जब प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति बेड पे पड़ा हुआ है और वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए योग कैसे करवाएं? तो जस्ट उनका फिंगर यदि हल्का भी मूव करने लगा तो डेट इज योग, कि वो योग है। ब्रीदिंग के साथ यदि वो ब्रीदिंग पे, अपने श्वास पे यदि फोकस करना शुरू कर दे ध्यानपूर्वक बहुत ही स्थिर से, तो वो भी प्राणायाम के अंतर्गत आता है और वो भी योग का ही पार्ट है। तो मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन्हें ये सब प्रॉब्लम है, बस मेरी बात को थोड़ा सा अमल करके देखिएगा। एक सप्ताह के लिए ही आप सिर्फ शाम का भोजन छोड़ दीजिए, और शाम मतलब 5 बजे तक आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद भोजन मत कीजिए
1: सूर्यास्त के बाद,
0: भोजन मत कीजिए। और सुबह में चाय जो आप लेते हैं उसको 1 वीक के लिए आप स्किप करके देखिए, आप देखेंगे 1 वीक के बाद आपके अंदर क्या चेंजेज आता है, और आपको यदि अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा।
1: अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो प्राणायाम को लेके ज्यादा इच्छुक होते हैं।
0: उपनिषदों में कहा गया है कि सबसे जो बेस्ट है, मतलब आसन से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्राणायाम को दिया गया है।
1: अच्छा,
0: तो जितना ज्यादा प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से आप सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। तो क्योंकि आप देख लीजिए कि जो हमारा बायां जो नोस्टिल है वो चंद्र नाड़ी है, दायां जो नासिका है वो सूर्य नाड़ी है, तो इसके माध्यम से हमें बोला जाता है कि बायां करवट लेके सोना चाहिए। बायां करवट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट हो, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो, इसलिए बोला जाता है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा दोनों, मतलब ब्रेन में जो है ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और

0: हम स्वतः धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाते हैं।
1: अनुलोम विलोम,
0: अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो अनुलोम जैसे प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, तो सभी अलग अलग जो प्राणायाम है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए उसमें अलग अलग प्राणायाम करवाया जाता है। तो सभी के लिए जो भी मतलब जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं।
1: नरेंद्र प्रसाद निराला जी, कार्यक्रम का समय अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ है, तो चलते चलते ऐसे लोग जो 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
0: उनको बस हम एक ही चीज कहेंगे कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो दिल खोल के ठहाके मार के हंसना शुरू कर दीजिए।
1: अच्छा।
0: इस तरह से जब आप करते हैं, इस तरह से आप हंसते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो जितने भी प्रॉब्लम है स्वतः समाप्त होते चले जाएंगे।
1: अच्छा।
0: सूक्ष्म योग कर सकते हैं, जितने भी ज्वाइंट हैं हमारे, जितने भी ज्वाइंट है उसका मूवमेंट करना है ब्रीदिंग के साथ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी अभ्यास करें तो हम श्वास पर श्वास के साथ अभ्यास को करेंगे तभी हमें वो फायदा करेगा।
1: कुल मिलाकर इतनी बात कि बढ़ती उम्र के साथ कैसे करें योग,

0: निराला जी, कार्यक्रम का समय अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ है, तो चलते चलते ऐसे लोग जो 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: उनको बस हम एक ही चीज कहेंगे कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो दिल खोल के ठहाके मार के हंसना शुरू कर दीजिए।
0: अच्छा।
1: इस तरह से जब आप करते हैं, इस तरह से आप हंसते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो जितने भी प्रॉब्लम है स्वतः समाप्त होते चले जाएंगे।
0: अच्छा।
1: सूक्ष्म योग कर सकते हैं, जितने भी ज्वाइंट हैं, हमारे जितने भी ज्वाइंट है उसका मूवमेंट करना है ब्रीदिंग के साथ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी अभ्यास करें तो हम श्वास पर श्वास के साथ अभ्यास को करेंगे, तभी हमें वो फायदा करेगा।
0: कुल मिलाकर इतनी बात कि बढ़ती उम्र के साथ कैसे करें योग, ये था आज की हेलो जिंदगी का विषय। बतौर विशेषज्ञ आज कार्यक्रम में नरेंद्र प्रसाद निराला जी, आपने अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण समय आज के दिन खासकर हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले अंक में किसी और विषय, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ साथ संजय को विदा दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: जिंदगी कैसी है पहेली कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
3: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में, और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
3: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
5: अभी आप हेलो जिंदगी का संपादित अंश सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे

0: में रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप एवं डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:10 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म सिकंदर आजम से। दोपहर के 1:15 पर सुनवाएंगे फिल्म संगीत। दोपहर 2 बजे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। इलाकाई खबरें आप सुन पाएंगे दोपहर के 2:05 पर। रोजगार सूचना का प्रसारण करेंगे दोपहर 2:10 पर। दोपहर समाचार सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर के 2:15 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर 2:30 से। पहली सभा के अंत में दोपहर के 3 बजे सुनिएगा बज्जिका लोकगीत।

दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5 बजे सुनवाएंगे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण मिथिला। चर्चा का विषय होगा अंतरिक्ष विज्ञान, शुद्ध ग्रह और भारत के युवा वैज्ञानिक। शाम के 5:40 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। विद्यापति गीत का आनंद लीजिएगा संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण होगा

संध्या 6:30 पर सुनिएगा गांव घर के अंतर्गत नव ऊर्जा। चर्चा का विषय है लू के प्रकोप से बचे। खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनवाएंगे 7:00। चर्चा का विषय होगा डेयरी उद्यमिता विकास योजना। प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से आप सुन पाएंगे 7:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद ले पाइएगा 7:52 पर। सिंगर हार यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर। समाचार संध्या सुनिएगा 8:45 पर। 9:00 News@9 और उर्दू खबर सुनिएगा 9:15 पर। विविधा सर्वभाषा यह कार्यक्रम सुनिएगा 9:30 पर। इंग्लिश टॉक सुनवाएंगे 9:45 पर। एक फनकार यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:00। 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 11:00 हिंदी समाचार एवं 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी दरभंगा है।

ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है और फिल्म सिकंदर आज़म।

अभी आप देशभक्ति गीत का आनंद ले रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आसमान में बादलों ने दस्तक दे दी है। बारिश की बूंदें जैसे ही धरती पर पड़ी, मिट्टी की सौंधी खुशबू आने लगी है। मौसम करवट ले रहा है, गर्मी से राहत, और हमें जिसका इंतजार रहता है रिमझिम बूंदों का, वो मौसम आ चुका है। आज फिल्म संगीत में सुनिए सावन, बादल और रिमझिम फुहारों के कुछ तराने। पहला गाना है टोनी कक्कर का लिखा और उन्हीं के संगीत में बना फिल्म क्रिएचर 3D से। अरिजीत सिंह की आवाज़ है।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल कभी तो कहीं बरस जाते हैं और कभी तड़पा के चले जाते हैं, लेकिन दूर देश कहीं भी जाकर हम चाहते हैं वो बूंदें बरसे, जमी को मिले। अगला गाना सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। फिल्म है मंजिल। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। बूंदों के अपने तराने होते हैं, मिट्टी पे गिरे, जमीन पे पड़े, छतों पे पड़े या हमारी खिड़कियों के बाहर नजर आए, लेकिन उनके तराने अद्भुत होते हैं। रिमझिम के तराने लिए बरसात आती है। सुनिए काला बाजार फिल्म में मोहम्मद रफी और गीता दत्त को। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया है SD बर्मन ने।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है छोटे से अंतराल के बाद।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। आज बातें हो रही हैं बादलों की, रिमझिम गिरते बूंदों की। अगला गाना सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म है आई मिलन की रात।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे गीत को सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत में, आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म बरसात।

0: फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं और आज बातें हो रही हैं आसमान में विचरते काले बादलों की, रिमझिम गिरते बूंदों की, कुछ फुहारों की। अगला गाना सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अगला गाना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है जुर्माना।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए, जयपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में। घूमर कानपुरी के लिखे इस गीत को राजकमल ने संगीत दिया है। फिल्म है सावन को आने दो।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए शान और गौरीशा की आवाज में आनंदराज आनंद के लिखे गीत को उन्हीं के संगीत में। फिल्म है बिन बुलाए बाराती।

आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला देते हुए सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि भारतीय सेना को अपनी शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी आज सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अपनी विदाई समारोह के तहत सेना प्रमुख द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर की बिक्री पर 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शीला नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में लागू की जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जी राम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। राज्य के उत्तरी हिस्सों में मानसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इधर पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। अररिया जिले की महिला थाना पुलिस ने एक मामले के अनुसंधान के दौरान वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज बेतिया अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी साझा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: पाबंदी लगाई थी। इसके तहत एक ग्राहक या गाड़ी को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर डीजल देने की हद तय की गई थी। वजारत ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फराहमी मामूल पर आ गई है, इसलिए अवामी मफाद में इन आर्जी पाबंदी को वापस लेने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजपुर मुबैना फर्जी इनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की तातील की मुद्दत वाली बेंच ने अर्जी गुजार को इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। ये अर्जी एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की थी। देही तरक्यात को फरोग देने वाली जामे स्कीम विकसित भारत जी राम जी कल से पूरी रियासत में लागू की जाएगी। इसके तहत हर बालिग शख्स को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें मंसूबे बनाएंगी और मजदूरों के बैंक खातों में मजदूरी की सीधी और बरवक्त अदायगी की जाएगी। जी राम जी योजना मौजूदा में चल रही मनरेगा योजना की जगह लेगी। रियासत के शुमाली हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने आज गोपालगंज और मगरबी चंपारण जिले के लिए शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, मशरकी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में भी कुछ मकामात पर शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में भी कुछ मकामात पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना और आसपास के इलाकों में आज भी बादल छाए हुए हैं। वजीर कोऑपरेटिव रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के सबब उन्हें पटना के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रियासती हुकूमत के कई वज़रा अराकिन कानून साजिया ने अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप एवं डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 परीक्षा, कुल पद 1829। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर आप जा सकते हैं। JKSSB 2026 परीक्षा, कुल पद 130। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 21/7/2026। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। विशेष जानकारी हेतु jkssb.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 परीक्षा, कुल पद 607। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। BSNL 2026 परीक्षा, कुल पद 100। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026। न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी। पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
1: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
5: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
6: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.in

0: ECI.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।

0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का

0: गठन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म सच्चा झूठा में।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हम लिया है फिल्म पगला कहीं का से। आवाज है मोहम्मद रफी की।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना भी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे हमने लिया है आरजू फिल्म से।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। आइए अब सुनवाते हैं बच्ची का लोकगीत। कलाकार हैं ब्रजेश कुमार सुमन। इनके स्वर में सुनते हैं कुछ झूमर।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

बजकर लोकगीतों का आप आनंद ले रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के संग हम पुनः उपस्थित होंगे संध्या 5 बजे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें भी सब काम
1: करो ट्यूशन स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी समझ। फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारत

0: जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है। उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा। मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है।
1: हाँ, तो इनके मतलब इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को बोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस न चले जाए।
0: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
1: हाँ, हाँ, और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है।
0: हाँ,
1: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
0: नहीं। और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये जो मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
1: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ये चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
0: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है तो कभी हंसी भी आ जाती है तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। हाँ। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
1: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
0: नाम नहीं लेती
1: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
0: सुनते हैं गीत।
2: मेरी

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली, और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था, और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उस सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर।
0: ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि

0: बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला, अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा।
1: अरे बाप रे।
0: यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे खरीदने पड़े।
1: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं, इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
0: बहुत बड़ा इंजीनियर
1: बना
0: जी।
1: तो भाई ये कुछ
0: यानी उन्हें रोके टोके मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे वो उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
1: वो लगा सकते हैं,
0: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
1: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती है,
0: बहुत होती,
1: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
0: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चुभते हैं बच्चे,
1: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
0: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना है।
1: हाँ, मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
0: गाने में है।
1: हाँ।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो वो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर जान में जान आई,
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना। तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर, वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी बिकट होने लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्ग के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहां था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सच मुझे ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे

0: में ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
0: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं, एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है, जो आजकल बेहद कम हो गया है।
1: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्ड हुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
0: क्या बात है।
1: इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, नई यात्रा है, और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
0: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
1: दोनों
0: चाहिए,
1: दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी ही सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
1: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं।
1: पोल खोल
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।
0: सब पोल खोल दी
1: अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: इसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना

0: शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: पानी पानी हो गए।
1: ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए हैं ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि वो ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, उन्हें जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्मपत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, वो तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच, और ये यादें हैं ना ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे,
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत। Yeah.

0: भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई, हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर लमसाया।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: बेखबर
3: दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क गाना आप वो सुनाए, पिया समाए
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली,
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
3: जी, बिल्कुल। हाँ, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ, इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है।

0: जी,
1: ये सब की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
0: मैं समझता हूं कि जो मुल्क फिल्म है
1: जी
0: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी,
1: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
0: जिक्र
1: ये
0: किया
1: दर्ज
0: जाए
1: होती है आज के समय में।
0: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
1: बिल्कुल।
0: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
1: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान
0: हाँ,
1: खुराना
0: हाँ,
1: ने गाया भी है।
0: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: तो
0: आर्टिकल 15 से,
1: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
0: उस गाने की कहानी ये है कि
1: कोई दिलचस्प बात हो तो
0: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ,
1: हाँ।
0: आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
1: पड़ा है इजाजत फिल्म
0: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
1: अरे क्या बात है। हाँ,
0: उल्टा मतलब कि
1: तो, सामान देना है।
0: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
1: हाँ,
0: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
1: हाँ,
0: ठीक है,
1: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
0: हाँ, तो उसमें जो गाना है,
1: हाँ,
0: वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
0: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
1: हाँ,
0: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
1: जी।
0: हाँ,
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना, आ भी जाना, इंतजारी है तेरी।
1: क्या बात है, वाह।
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं, तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
1: रंगी है,
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना, आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना, आ भी जाना, इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था, जो गुलजार साहब का था ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने के बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो।
1: हाँ, और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे।
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।

0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है
1: हाँ।
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर।
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए, ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है,
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, दो अर्थी।
1: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई,
1: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वा वा।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
0: जी जी,
1: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में, फिल्म धोखा।
1: हाँ,
0: MM करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट,
1: उन्होंने

0: की थी। और ये गाना जो है एमएम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना, तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके, मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो, और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवा हो गया, जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवा हो गया वो गाना
1: जी।
0: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
1: क्या बात है,
0: हाँ वो जब ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर,
1: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था
0: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था, रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
1: जी।
0: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
1: जी।
0: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे, और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
1: जी।
0: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर
1: जी जी, हाँ,
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
1: जी,
0: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो, तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
1: जी, जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को,
0: आए बेखबर
1: सुनते हैं, हाँ। ये गाना

0: कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं, और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना, इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था, जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी।

0: म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
1: दर्ज है।
0: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
1: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
0: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगाने
1: जी,
0: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगाने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगाने से मिलवाया
1: जी जी।
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी,
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के।
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ, क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानता, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
1: जी जी,
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था, मैं इनसे कहता

0: रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे, और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले। तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी।
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको, और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया। हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़में हैं जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और

0: पंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
1: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
0: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। बना रहेगा 5:40 तक हमारा और आपका साथ। सुनेंगे लोकगीत, गज़ल और समय मिला तो गैर फिल्मी गाने भी आप तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन इन सब से पहले कुछ बातें आपसे हम कर लें। आज हमारी और आपकी बातों का विषय है अंतरिक्ष विज्ञान, क्षुद्र ग्रह और भारत के युवा वैज्ञानिक। दोस्तों आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। अंतरिक्ष विज्ञान ने मानव जीवन को नई दिशा दी है। कभी जो अंतरिक्ष केवल कल्पनाओं का विषय था, आज वो वैज्ञानिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। उपग्रहों से लेकर चंद्रमा, मंगल और क्षुद्र ग्रहों तक मानव की पहुंच निरंतर बढ़ रही है। क्षुद्र ग्रह, जिन्हें अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे पथरीले पिंड हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि ये सौर मंडल के निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने भीतर समेटे हुए हैं। भविष्य में इनसे खनिज संसाधन प्राप्त करने की भी संभावनाएं देखी जा रही हैं। भारत ने भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कम लागत में विश्व स्तरीय अंतरिक्ष मिशनों को सफल बनाकर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है भारत ने। चंद्रयान, मंगलयान और अन्य अंतरिक्ष अभियानों ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत वैज्ञानिक क्षमता के मामले में किसी से कम नहीं है। इन सफलताओं के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत और समर्पण है। आज भारत के युवा वैज्ञानिक नई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अन्वेषण और ग्रहों के अध्ययन जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। यदि उन्हें उचित शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाएं और अनुसंधान के पर्याप्त अवसर मिलें तो वे भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति, विज्ञान प्रदर्शनियां, नवाचार प्रतियोगिताएं और स्टार्टअप संस्कृति भी युवाओं को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना समय की सबसे बड़ी

आवश्यकता है। आइए हम सभी ये संकल्प लें दोस्तों कि विज्ञान को केवल पढ़ने का विषय नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति का माध्यम बनाएंगे। भारत के युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा और परिश्रम निश्चित रूप से देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो ये थी हमारी आज की आपसे बात, और अब इस देवी गीत से करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज़।

कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में आप सुन रहे थे ये देवी गीत। और अब आज का मौसम कितना सुहाना हुआ था, सुबह में कितनी शानदार वर्षा हुई। पता नहीं हमारी आवाज़ तो दूर दूर जा रही है, लेकिन हम दरभंगा शहर की बात कर रहे हैं जहां आज काफ़ी बारिश हुई और बारिश के बाद धूप भी उसी तरह से खिली। तो आज तो कह सकते हैं कि मंत्र मुग्ध हो गया मन। तो जब मनुष्य का मन मंत्रमुग्ध हुआ तो बागों की क्या हालत हुई होगी, पेड़ पौधे पानी पाकर, वो भी वर्षा का पानी पाकर तो झूम उठते हैं। तो आज सचमुच बाग झूम रहे हैं।

तो ये थे संत कुमार झा, जिन्हें आप सुन रहे थे। और आपको बता दें कि आज जिन कलाकारों के लोक गीत आपने सुने वो थे क्रमशः कुंज बिहारी मिश्र, विभा सिन्हा और संत कुमार झा। ले चलते हैं अब आपको हम गज़ल की तरफ, जिधर सबसे पहले अहमद फराज की गज़ल आपका इंतज़ार कर रही है। आवाज़ है गुलाम अली की।

ये गजल आप सुन रहे थे चंदनदास की स्वर के स्वर में। ये गजल थी नसीर काजमी की। और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं गैर फिल्मी गाना, जिसे गाया है कमल बारोट ने।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे कमल बारोट के स्वर में ये गैर फिल्मी गाना, और इसके साथ ही आज का तरुण कुसुम का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले अंक में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

तरुण कुसुम सुन रहे थे युवा दोस्त। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अब नई फिल्मों के गाने। आपको बता दें श्रोताओ, इस कार्यक्रम में यानी इस समय 5:40 पर आप नई फिल्मों के गाने सुनते हैं। तो ये पहला गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं बी पराग का गाया हुआ। फिल्म का नाम है भोला।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ये गाना। आवाजें थी मीत ब्रोस, फिएट और जोनीता तथा जुबिन नौटियाल की। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म सत्य प्रेम की कथा से। आवाजें हैं मीत ब्रोस और मोनाली ठाकुर की।

मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोस को आप सुन रहे थे। फिल्म थी सत्य प्रेम की कथा। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको बता दें, आज जो गाने आपने सुने वो फिल्में थी भोला ड्रीम गर्ल 2 और सत्य प्रेम की कथा के। आपको ये भी बता दें हम के तरुण कुसुम के बाद 5:40 पर संध्या काल में जो ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं वो नई फिल्मों के गाने पर आधारित होता है। अगले अंक में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, फिर सुनेंगे ये गाना। समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और आप अब भी बने रहें साथ।

सुनते रहें गाना, जारी रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो 6 बजने को हैं, ये समय होता है समाचारों का, तो कुछ क्षणों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने

0: एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में क्रमशः कलाकार होंगे गौतम मिश्र, शारदा सिन्हा और विनय कुमार झा। मैथिली संवाद का समय होता है 6:25 पर। गाम घर कार्यक्रम के तहत 6:30 नव ऊर्जा आज आप सुनेंगे। चर्चा होगी लू के प्रकोप से बचें और खेती गृहस्थी कार्यक्रम 7:00 होगा। इसके अंतर्गत किसान भाइयों के लिए चर्चा होगी डेयरी उद्यमिता विकास योजना पर, साथ ही मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी बातें होंगी। 7:52 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मैथिली कार्यक्रम सिंगर हर का समय होगा 8:15 पर।

रात 9:45 पर अंग्रेजी वार्ता के कार्यक्रम में आज श्रोता सुन सकेंगे डॉक्टर अर्यिका पॉल की वार्ता फॉरेस्ट्स एंड एनवायरनमेंट। दस बजे एक ही फनकार के तहत आज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी के गाए नगमे, और 10:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में क्रमशः कलाकार हैं गौतम मिश्र, शारदा सिन्हा और विनय कुमार झा। पहले सुनिए गौतम मिश्र के स्वर में ये विद्यापति गीत।

शारदा सिन्हा के स्वर में सुन रहे थे आप ये गीत। और अगला विद्यापति गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं विनय कुमार झा का गाया हुआ।

0: विनय कुमार झा के स्वर में आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। इसके साथ ही विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी दरभंगा से कुछ क्षणों में मैथिली संवाद प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी प्रियंका कुमारी। राज्य में

53,000 करोड़ टाकाक लागत सँ 5 प्रमुख सड़क आ पुल परियोजना सभक निर्माण कयल जायत। एहि प्रस्ताव के जल्दीए केंद्रीय मंत्रिमंडलक मंजूरी भेटबाक संभावना अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल नव दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संग भेल बैसार में एहि पर सहमति बनल अछि। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणक सामने अपील करबाक अंतिम तिथि 31 जुलाई धरि बढ़ा देल गेल अछि। वित्त मंत्रालयक अनुसार पछिला वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करबाक अंतिम तिथि एहि वर्ष 30 जून तय कयल गेल छल। विभिन्न हितधारक न्यायाधिकरण में अपील दायर करबाक भारी संख्याक कारणे आयल तकनीकी बाधाक हवाला दैत सरकार सँ अंतिम तिथि बढ़ेबाक अनुरोध कयने रहत। सरकार द्वारा करदाता सबके सेहो सलाह देल गेल अछि जे ओ सब समय रहते अपील दायर कऽ दैत आ अंतिम तिथिक इंतजार नहि करैत। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल आ डीजलक बिक्री पर लगाओल गेल अस्थायी प्रतिबंध हटेबाक फैसला लेल गेल। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय कहलनि अछि जे सार्वजनिक क्षेत्रक तेल कंपनी सभक पेट्रोल पंप सब पर काल्हि सँ ई प्रतिबंध लागू नहि रहत। ध्यातव्य अछि जे पश्चिम एशिया संकटक दरमियान पेट्रोलियम उत्पादक बिक्री पर 12 जून सँ अस्थायी प्रतिबंध लगाओल गेल छल। एहि अंतर्गत एक ग्राहक वा वाहन के एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देबाक सीमा तय कयल गेल छल। मंत्रालय द्वारा कहल गेल जे आब देश में पेट्रोल आ डीजलक आपूर्ति सामान्य भऽ गेल अछि। एहि लेल जनहित में एहि अस्थायी प्रतिबंध सबके वापस लेबाक फैसला कयल गेल अछि। ग्रामीण विकास के बढ़ावा देबा वाला महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी काल्हि सँ प्रदेश भर में लागू कयल जायत। एहि अंतर्गत हर वयस्क व्यक्ति के वर्ष में 125 दिन के रोजगारक गारंटी देल जायत। ग्राम पंचायत योजनाक निर्माण करत आ श्रमिक सभक बैंक खाता में मजदूरीक सीधा आ समयबद्ध भुगतान कयल जायत। जी राम जी योजना वर्तमान में चल रहल मनरेगा योजनाक स्थान लेत। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी कहलनि जे राज्य में संभावित बाढ़ आ सुखाड़क स्थिति सँ निपटबाक लेल पर्याप्त तैयारी कयल गेल अछि। श्री चौधरी पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकार सब सँ गपशप करैत कहलनि जे सरकार नव योजनाक तहत बाढ़क पानि के नहर आ आन माध्यम सब सँ संग्रहित करबाक व्यवस्था शुरू कयलनि अछि। एहि सँ सुखाड़क स्थिति में किसान सबके लाभ भेटत। सर्वोच्च न्यायालय भोजपुरक कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामिलाक सीबीआई जांचक मांग वाला याचिका खारिज कऽ देलनि अछि। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश आ न्यायमूर्ति शील नागूक अवकाशकालीन पीठ याचिकाकर्ता के एहि मामला में उच्च न्यायालयक रुख करबाक लेल कहलनि अछि। ई याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी दाखिल कहने छलत। ध्यातव्य अछि जे राज्य सरकारक निर्देश पर मामिलाक न्यायिक जांच जारी अछि। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार कहलनि जे राज्यक 26 संग्रहालय मे सांस्कृतिक विरासतक संरक्षणक काज सुदृढ़ कयल जायत। श्री कुमार पटनाक विकास भवन में आयोजित विभागीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के संबोधित कयलनि। एहि अवसर पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष पदक लेल चयनित 9 गोट अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र प्रदान कयल गेल। राज्यक उत्तरी हिस्सा में मॉनसूनक सक्रियता सँ कतेको जिला में झमाझम वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग आइ गोपालगंज आ पश्चिम चंपारण जिलाक लेल भारी वर्षाक ऑरेंज अलर्ट जारी कयलक अछि। ओतहि दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी आ वैशाली जिला में सेहो किछु स्थान सब पर भारी वर्षाक चेतावनी जारी कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: घर सम्मानी कौशल्या देवी, खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है। बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सम्मान पाके बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: छोटछिन विराम उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई, एखन अपने सब श्याम

0: बिहारी राय का स्वर में गीत सुने छलो हम। देखियो युवा लोकन, गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहबाक लेल भरपूर मात्रा में जल पीबाक चाहिए। ORS का जल और नींबू जल निश्चित रूप से पीबाक चाहिए। रौद में निकले से बची और तरबूज, खीरा, छाछ जेहन ठंडा और मौसमी खाद्य पदार्थक सेवन करी। हल्लुक ढीला और सूती कपड़ा पहनी और त्वचा को रौद से बचावे के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करी। गर्मी के मौसम में फिट और ऊर्जावान बने रहबाक लेल ये प्रमुख गप का ध्यान में राखी कि हाइड्रेशन बनाकर राखी। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास जल जरूर पीवी। सादा जल का अलावा नारियल पानी, बेलक शरबत, नींबू जल जेहन प्राकृतिक पेय पदार्थ के पीबाक चाही जे ऊर्जा देते और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाबत। खान पान का रखी ध्यान। भारी भोजन, मसालेदार भोजन, तलल भुलल भोजन से बची, क्या तो पेट खराब कर सकिए। एकर बजाय अपन आहार में तरबूज, ककड़ी, खीरा, दही, सलाद का शामिल करी। रौद से बचाव दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच जखन रौद सबसे तेज होइया तखन बाहर निकले से बची। और जब निकलना जरूरी है तो छाता, टोपी और सनग्लासेस का उपयोग करी। सनस्क्रीन जरूर देह में लगाबी। अब बीमारी से जो बासी खाना या वही से बची। बासी खाना और खुलल में बिके वाला कटल फल खाए से बची। ये दस्त, टाइफाइड और पीलिया जेहन जल जनित बीमारी का कारण बन सकिए। जल बराबर साफ और उबला पीबी। छोटचिन विराम फिर ले छी।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए। वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: छोटचिन विरामक उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई। भोर में और सांझ के ठंडा समय में व्यायाम करी, योग करी, क्या तो योग से तन मन अहाँ का आरोग्य होत। आ गर्मी में शरीर जल्दी थकैया, अल पर्याप्त मात्रा में नींद ली और खुद के तरोताजा राखी। आ सबसे आवश्यक गप कि सकारात्मक सोच राखी, चिंतन सकारात्मक करी, काज सकारात्मक करी। अहू से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनल रहैया। देखियो युवा लोकन, अपन सबके जो देश है युवा का देश है, क्या तो 60% से बेसी आबादी जैया वो युवा लोकन के। आ युवा लोकन जे वो अहाँ के देश के सर्वांगीण विकास में अपन महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत के खेल महाशक्ति बनाबे में युवा कोना योगदान करत, एहि विषय पर हम सब आजुक दिन एकटा वाद्य ध्वन्यांकन पर आधारित परिचर्चा सुनब। भारत को खेल महाशक्ति बनाने में युवाओं का योगदान। प्रतिभागी लोकन नंदिनी झा, सुमित, प्राची झा, अभिनय चौधरी, अभिषेक और वंदना सिंह। संचालक गोपी चंद्र झा। आ प्रस्तुति असद दौद का। तो सुनी हम सब ई परिचर्चा।
3: उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दर एक व्यापक रणनीति का आवश्यक। 2036 ओलंपिक का ध्यान में रखे सरकार खेल महाशक्ति बने के लक्ष्य रखल। हमारा लग कि युवा जे लोक सेवा के तैयारी कर रहा है और अपन मौलिक विचार रखे, तो इनका से हम जाना चाहब कि युवा लोकन कोना योगदान करे, कौन प्रकार योगदान करे कि भारत खेल में महाशक्ति बने। सबसे पहले हमारा लग अहा प्राची झा। तो प्राची झा, आकाशवाणी के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अहाँ के पिताश्री के नाम की है?
4: आनंद कुमार झा।
3: अच्छा, हम अहाँ से जानना चाहब कि भारत खेल में महाशक्ति बने अल युवा कौन काज करे, की करे, खेल महाशक्ति बने में युवा लोकन कौन प्रकार योगदान कर सकते, तो हम अहाँ के मौलिक विचार जानना चाहब।
4: नमस्कार अहाँ सबके, आए हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करे ला एकत्रित भेल छिए, जे भारत के खेल महाशक्ति बनाबे में युवाओं के की भूमिका है। भारत एक युवा देश है जहाँ जनसंख्या के सबसे बड़का हिस्सा युवा के युवा वर्ग छथिन। यह युवा वर्ग हमर सबके सबसे बड़का ताकत है। अगर सही दिशा

0: में और सही संसाधन प्रेरणा देल जाए तो ई भारत के नाम पूरा विश्व में प्रसिद्ध करथिन। और जेना कि अहाँ हम सब जानै छिए जे छोट छोट बच्चा सब जे छै स्कूल में जाए छै तो ओत्तो सब बच्चा सब के हर स्कूल में खेल महोत्सव केल जा रहल छै। सरकारों द्वारा बहुत स्कीम सब जे होय छै से लेल गेलै हन, जेना खेलो भारत इंडिया स्कीम छै से सब छै। और जे आसपास के लोग सब छथिन सेहो आब खेल में रुचि बढ़ा रहल छथिन, किए तऽ अभी बीमारियों सब बहुत बढ़ रहल छै और खेल सब मानसिक स्थिति जे छै से एक जगह रहै छै। और लोग सब अगर खेल के साथ बढ़िया रहते और आगे आगे बढ़त रहते तो देश जे छै अपने आप तरक्की के ओर बढ़त रहते। और
1: अच्छा हमारे लोग दूसर प्रतिभागी छथि अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी, हम अहाँ से जानना चाहब कि खेल का बुनियादी ढांचा में कौन प्रकारे बदलाव कैल जाए कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बन के उभरे। पहले कहावत छल कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब आ पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। आब ई कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब आ खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो खेल कूद के माध्यम से हम देखे छे कि अहाँ के सर्वांगीण विकास होइया। तो भारत सरकार 2036 में खेल का ओलंपिक करावे का लक्ष्य रखलक है आ ओ समय धरि भारत का 10 प्रमुख खेल महाशक्ति के रूप में भारत को उभारे के भारत सरकार की इच्छा छे। तो हम अहाँ से जानना चाहब कि भारत खेल महाशक्ति कोना बने, भारत खेलक बुनियादी ढांचा में कौन प्रकारे बदलाव करा कि भारत खेलक क्षेत्र में महाशक्ति।
2: धन्यवाद। हम समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपन विचार रख जा रहल छी, जय के देश अछि भारत के खेल महाशक्ति बनाबे में युवा योगदान। ई केवल विषय नहीं छै, खेल धर सीमित नहीं छै, बल्कि देशक गौरव युवा शक्ति आ भविष्यक दिशा से युवा देश अछि। अतः जनसंख्या एक बहुत पैघ हिस्सा अछि, ई युवा शक्ति ऊर्जा और एक दिशा दिखाबैत अछि। तब भारत निश्चित रूप से खेल क्षेत्र में विश्व स्तर पर एक महाशक्ति बनल छै। आज समय में खेल केवल मनोरंजन नहीं रहल बल्कि एक पैसा, एक पहचान आ देश के सम्मान दिखावल है एक माध्यम है। युवा सब में उत्साह, जोश आ कुछ किछ नया करवाक इच्छा रहित है। एक गुण खेल के सफलता लेल बहुत जरूरी है। जखन युवा अपन समय खेल कूद में लगाबैत अछि तो ओ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहित अछि और मानसिक रूप से सेहो मजबूत बनाबैत अछि। खेल अनुशासन, धैर्य, टीम वर्क आ नेतृत्व क्षमता सिखाबैत अछि जे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी अछि। आइ भारतक युवा क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स जकर विभिन्न खेल में अपन प्रतिभा के प्रदर्शन कऽ रहल अछि। ओलंपिक, एशिया खेल आ अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पदक जीत कर देश के गौरवान्वित कऽ रहल छथि। ई सब संभव भेल अछि युवा खिलाड़ी सबक कठिन परिश्रम, संपूर्ण लगन से। सरकार सेहो खेल के बढ़ावा देबाक लेल अनेक योजना चला रहल छै। खेलो इंडिया जका कार्यक्रम युवा प्रतिभा के पहचान कर ओहो के सही परीक्षण और संसाधन प्रदान करैत अछि। एहि प्रकारक पहल से ग्रामीण आ छोट शहर के युवा सब सेहो अपन प्रतिभा के निखारा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच रहल छै। मगर केवल सरकारक प्रयास प्राप्त नहीं अछि, समाज और परिवारक सेहो जिम्मेदारी अछि के जे युवा सब के खेल में आगा बढ़ावा लेल प्रेरित करे। अक्सर देखल जाइत अछि कि माता पिता केवल पढ़ाई पर जोर दे छथिन और खेल के महत्व कम देल जाइत अछि, लेकिन एखन के समय में खेल एगो बढ़िया कैरियर के ऑप्शन अछि। खेल के माध्यम से देश में एकता और भाईचारा सेहो बढ़त अछि। जखन हम सब एकजुट भ के अपन देश के समर्थन करै छी त राष्ट्रीय एकता मजबूत होइत अछि। खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं है बल्कि एक भावना है जे देश के जोड़ल है राखे छे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ का। आप हमारा लोग छे अहाँ का नंदिनी झा। तो नंदिनी झा, हम अहाँ से जानना चाहब कि युवा लोकन की करत कि भारत खेल में महाशक्ति बने। क्या युवा लोकन में अथा ऊर्जा होते और नवाचार के माध्यम से, नव तकनीक के माध्यम से अपन विकासक मार्ग प्रशस्त करे छे। तो हम अहाँ से जानना चाहब कि युवा लोकन का योगदान कौन प्रकारे भ सकैए कि भारत खेल में महाशक्ति।
0: हाँ एकदम सही गप, भारत के वैश्विक स्तर पर खेल महाशक्ति बनब में युवा के भूमिका सबसे निर्णायक छे। देश के लगभग 65% आबादी युवा छे। यह ऊर्जा, अनुशासन और जुनून भारत के आगू लौक जा सके छे। युवा के खेल कूद में जतेक अधिक भागीदारी हेतै उतेक बेहतर प्रतिभा सामने हेतै। गाँव से लेकर शहर तक युवा के खेल में भागीदारी भेनाई बहुत जरूरी छे। युवा सब सक्रिय रूप से भागीदारी लेथिन खेल में तो नया नया जे टैलेंट छे से सामने उभर के एतै। जना नीरज चोपड़ा भेलखिन, पीवी सिंह, अपन भारत के रत्न वैभव सूर्यवंशी, लक्ष्य सेन, तो ई सब जे छथिन पिछला दशक में युवा सब के बहुत बड़ा प्रेरणा।

0: छथिन। आ जे खेलकूद होइ छै, किछु लोक सोचै छथिन कि खेलकूद केवल मेडल तक सीमित होइ छै, लेकिन ओ केवल मेडल तक सीमित नहि होइ छै, अपन स्वास्थ्य के नीक राखमे ओ इहो काजमे जे छै खेलकूद के बहुत बड़ा भागीदारी होइ छै। आ खेलकूद सँ एकटा टीम स्पिरिट सेहो इनकलकेट होइ छै आओर अनुशासन सेहो बढ़ै छै। युवा जखन नियमित रूप सँ खेलथिन तऽ शारीरिक आ मानसिक दुनू रूप सँ ओ जे छथिन बहुत ज्यादा मजबूत रहत। आइ काल्हि जे युवा सब छथिन से नया नया तकनीक के इस्तेमाल सेहो करै छथिन, नया नया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कऽ कऽ अपन प्रदर्शन के आरो बेहतर कऽ रहल छथिन। जेना एकटा ऐप होइ छै, ओकर नाम छै स्ट्रावा। स्ट्रावा पर जे छथिन युवा सब जतेक लाइक किलोमीटर दौड़ रहल छथिन ओ काउंट भऽ जाइ छै, आर मतलब कोन टेक्निक सँ ओ दौड़ रहल छथिन सेहो सब स्ट्रावा पर बतायल जाइ छै। ताहिसँ जे छै प्रदर्शन आरो बेटर होइ छै। ओहिके बाद पहिले एकटा मेंटालिटी रहे कि जे खेल कूद होइ छै ओकरा एकटा सुरक्षित करियर नहि मानल जाइ छलै, ओकरा एकटा पास टाइम के रूप में देखल जाइ छलै, लेकिन आइ हम ई देख रहल छियै आइ काल्हि के समय में कि जे खेल कूद छै एकटा इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटी छै, आर एहिमे सरकारों के बहुत बड़ा भूमिका छै। सरकार जे छै अलग अलग लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, स्कूल के लेवल पर अलग अलग प्रतियोगिता के अथी कऽ रहल छै, प्रतियोगिता के होस्ट कऽ रहल छै। जेना एकटा खेलो इंडिया गेम्स होइ छै, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पिछला बेर राजस्थान में भेल रहे, ओहिमे जे छै तीनटा यूनिवर्सिटी जाहिमे से एकटा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी छलै, एकटा पंजाब यूनिवर्सिटी छलै, तऽ ई सब जे छलै टॉप पर रहे। तऽ ऐसा जे छै युवा के अंदर खेल कूद के चाहत आरो बढ़ै छै। ओहिके बाद युवा जे छथिन युवा अपन अगल बगल में सेहो खेल कूद के माहौल बना सकै छथिन, जेना अपन कॉलोनी में कोनो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेनाइ, तऽ ऐसा जे छै ऐसा सोशल स्किल सेहो पूरो विकास होइ छै। ओहिके बाद युवा जखन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जेथिन आर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपन भारत के प्रतिनिधित्व करथिन, तखन जे छै भारत के परचम खेल कूद में एकदम बुलंद भऽ जेतै। जेना आइ काल्हि नंबर वन पर बेसी काल चाइने रहै छै, लेकिन अगर भारत के युवा आगू जेतिन खेल कूद में तऽ भारतो नंबर वन पर आबि सकै छै, बहुत पोटेंशियल छै।
1: बहुत नीक अहाँ कहलहुँ, उचित गप कहलहुँ। वास्तव में जो युवा जग जायत तो निश्चित रूप से अपन ऊर्जा का उपयोग खेल के क्षेत्र में कर सके छे तो भारत के महाशक्ति बना सके। अब हमरा लोग छे तो आके वंदना सिंह, तो वंदना सिंह आके पिताश्री के नाम की कौशल किशोर सिंह, तो अहां सब जाना चाह कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने ऐ लेल युवा लोग की उपाय करे, कौन काज करे, कोना योगदान दे कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति।
2: नमस्कार, हम वंदना अहां सब के बीच एकटा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत के खेल महाशक्ति बनावे में युवा सब के योगदान के बारे में अपन कुछ विचार विमर्श रखे ला चाहे छी। जेना कि अहाँ सब जाने छिए भारत एक युवा देश छै, एता आबादी के बहुत पैघ हिस्सा युवा सब के छै। जे युवा अपन ऊर्जा मेहनत आ समर्पण खेल दिशा में लगावे तो भारत खेल के महाशक्ति बनब के सपना जरूर पूरा भ सके छै। पहिन के समय में खेल के सिर्फ मनोरंजन मानल जाय छलै, लेकिन आइ खेल एक करियर बनी गोल छै। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलीट जैसन खेल में भारतीय खिलाड़ी दुनिया भर में अपन पहचान बना रहल। इन सफलता के पाछू युवा सब के कठिन परिश्रम आ लगन छुपल छै। युवा सब के योगदान बहुत तरह से हो सके छै। पहिल, नियमित अभ्यास आ अनुशासन, बिना मेहनत किछु संभव नहीं छै। दोसर, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाव, सही खान पान आ फिटनेस पर ध्यान दे। तेसर, देश नाम रोशन करे के भावना सिर्फ अपन लेल नहीं बल्कि देश लेल खेलब। सरकार सेहो खेलो इंडिया जैसन योजना सब युवा सब के प्रोत्साहित कर रहल छै। असली ताकत युवा सबक भीतर छुपल उत्साह आ मेहनत छै। हम सब के चाहिए जे हम मोबाइल आ समय के बर्बादी से दूर रही, खेल में सक्रिय भाग लिए, स्कूल आ कॉलेज स्तर पर खेल में महत्व बुझी, अपन प्रतिभा के निखारल जरूर छै। अतः हम अंत में हम ई कहब चाहे छी जे जता युवा जागत ओ देश आगे बढ़त। आइए कुछ जे युवा ठान ले तो भारत के खेल महाशक्ति बनय में केहो नहीं रोक सके छे। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वंदना सिंह जी, अहाँ बड़ सारगर्भित जानकारी देलौं कि युवा लोकिन कोन प्रकारे योगदान कऽ सके छथि भारत के खेल क्षेत्र में महाशक्ति बनाबे में। अब हमरा लोग एकटा और प्रतिभागी छै आयुष भारद्वाज। आयुष भारद्वाज जी, अहाँ के पिताश्री के नाम की है?
3: विभूति शंकर चौधरी।
1: अच्छा, अहाँ की कह रहल छी?
3: हम ऑनर्स
1: कर चुकल छी।
3: अभी हम कंपटीशन मतलब
1: अच्छा प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहल छी। प्रतियोगी परीक्षा में कोन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहल छी?
3: बैंक SSC सबके।
1: अच्छा, बैंक का स्टाफ सिलेक्शन। अच्छा अच्छा, तो हम आयुष जी अहाँ से जानना चाहब कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति

0: बना ये तो हमारे सबक इच्छा है। एक इच्छा कोना पूरा है, युवा लोग कोना योगदान करे, कौन प्रकार योगदान करे, कौन प्रकार के नवाचार करे, कौन नव तकनीक का आने थो कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बना। हम ए क्षेत्र में अहाँ के विचार जाना चाहब कि भारत खेल के क्षेत्र में कोना अग्रणी राष्ट्र।
1: नमस्कार, हम आयुष वर्धासी। भारत के अगर आवे वाला ओलंपिक में अगर डोमिनेट करे के अहाँ के गाँव घर से ही स्कूल से ही भारत के बच्चा सबके अपन टैलेंट के निखारे ला सरकार के बहुत सारा योजना अपन चलावल जाए ऐसे। और साथ ही साथ ये जरूरी है कि हमर सबके स्कूल सबके अपन कंपटीशन या रीजन में ये सबके बढ़ावा दे के चाहिए, ताकि बढ़िया कोच और बढ़िया अहाँ के स्पॉन्सर होके चाहिए, ताकि टैलेंट निखारल जाए के चाहिए और बच्चा सब ओके अपन मनोरंजन के लिए नहीं अहाँ अपन टैलेंट के निखारे ला और देश के गौरवान्वित करे ला, मतलब अहाँ के प्राउड फील करावे के लिए देश के लिए और खुद के लिए अपन माँ बाप के लिए। तो अहाँ के खेलों में अहाँ मतलब जा सके अहाँ टीम वर्क अहाँ अपना सके छे, और साथ ही साथ अहाँ अपन कोच के या अपन जो मेंटर या हुनका से अपन सलाह लो के अहाँ अपन टैलेंट के निखार सके। और साथ ही साथ अगर अहाँ के मतलब एहन नहीं है कि अहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलियो या अहाँ सिर्फ किस दिन ले मतलब किस उम्र ले तक अहाँ खेले, बहुत सबके अखन मानसिकता हो अहाँ कि इस समय आगे मतलब फ्यूचर नहीं है या किस भी, लेकिन हम देख सके बहुत सारा एहन देश है जना चाइना भेले साउथ कोरिया भेले इस सब में अहाँ सबके स्कूल में ही अपन सबके कंपटीशन निखारे ला, स्कूल में अपन कंपटीशन हो एक से दोसर से अपन ही क्लास में या अपन बच्चे से कंपटीशन करावल जाए, ताकि भविष्य में हो सके राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अहाँ के अपन निखार सके टैलेंट। और साथ ही साथ सरकार के ये बढ़ावा दे के चाहिए कि स्कूल सब में और जिला सब में या राज्य स्तर पे अपन सबके कंपटीशन का बढ़ावा दे के चाहिए, ताकि बच्चा सब अपन ओत जाके खेले कूदे और अपन टैलेंट के दिखावे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पहुँच जाए जी कि निचला स्तर पर खेलकूद के बढ़ावा दल जाए, विद्यालय स्तर पर महाविद्यालय स्तर पर, तो ऐसे जैसे खेल का जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत है। अब हमारा लोग एक और प्रतियोगी अभिषेक मिश्रा जी, तो अभिषेक मिश्रा जी अहाँ पिताश्री के नाम की है?
2: अजय कुमार मिश्रा।
0: अजय कुमार मिश्रा, अहाँ कौन प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहा छी?
2: अखन हम वही बैंकिंग SSC रेलवे एकरे सबके तैयारी कर,
0: एकर सबके तैयारी कर। तो अहाँ से हम जानना चाहब अभिषेक जी कि भारत खेल कूद में महाशक्ति बना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के जो ओलंपिक हो वाला है वो भारत में है, आ ताबत धर भारत जैसे खेल के 10 जो प्रमुख महाशक्ति है वो भारतों का नाम शामिल है, तो युवा लोकन की भूमिका अहाँ देख रहा जी, युवा लोकन कौन प्रकार काज करें, उनकर विजन की हेबा के चाहिए, उनकर कल्पना की हेबा के चाहिए, उनकर लक्ष्य की हेबा के चाहिए कि भारत खेल के क्षेत्र में अग्नि राष्ट्र बने, प्रमुख राष्ट्र बने। तो हम अहाँ का किछ मौलिक विचार जानना चाहब।
3: पहल अहाँ सबके नमस्कार। आजू कतो के युवा मोबाइल आ गेमिंग में व्यस्त छते, तो मुदा हमर सबके मैदान में उतरे के पसीना बहा पड़त, फिट इंडिया तखने सफल हो जब हम सब फिट रहब। कहल जाल छल कि पढ़ब लिखब तो बनब नवाब, खेलब कूदब तो होब खराब, मुदा अबध समय में ई बात बदल गेल छ, युवा सब खेल के खेल के सिर्फ समय पास नहीं बल्कि एकटा नीक करियर रूप में देखबक चाहिए। देश के महाशक्ति बनाबे में हमर देश के महाशक्ति बनाबे के लेल युवा शक्ति के खेल से जोड़ब के अर्थ छै नशा से दूरी। जखने हमर युवा स्वस्थ रहब तखने देश के भविष्य सेहो स्वस्थ रहत। मैदान हमरा अनुशासन और संस्कार सिखाबत छै। हमर मिथिलांचल बिहार के गाम गाम में प्रतिभा छुपल छै। हमर युवा जब ठान लेत तो कुश्ती हो या क्रिकेट हर जगह नाम रोशन के सकत छै। आजकल के सरकार खेलब लेल कतो के योजना मैदान बना रहल छै। हम युवा के जिम्मेदारी छै कि ओही सुविधा के पूरा लाभ उठाबी और दूसरों के प्रोत्साहित करी। अंत में बस इतने कहब कि खेल हमरा सबके हारी के जीतब आ मिलजुल के रहब सिखावे छै। आओ हम सब मिल के संकल्प ली कि खेलब जीतब आ भारत के मान बढ़ाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, अहाँ बड़ अपन अमूल्य विचार व्यक्त कलौ, एहिलेल अहाँ के कोटि से धन्यवाद। कतेक प्रतिभागी भाग लेने उनका सबके भाग ले लेल कोटि से धन्यवाद।
4: हाँ, एखन हम सब परिचर्चा सुने छलौ हाँ भारत को खेल महाशक्ति बनाने में युवा का योगदान। प्रतिभागी लोकन छले ते नंदिनी झा, सुमित प्राची झा, अभिनव चौधरी, अभिषेक, वंदना सिंह, संचालक छले ते गोपी चंद्र झा,

आ प्रस्तुति छल असत दौद के त अही के संगे गाम घरक समय जे अछि ओ सम्पन्न होइत अछि आ खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस हमसब चली त खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकन का हार्दिक स्वागत अछि। देखियो किसान भाई लोकन हमसब खेती बाड़ी के संग संग पशुपालन सेहो अदुकाल से करैत एलौ हँ आ पशुपालन के विकास के लेल सरकार के दिस से डेयरी उद्यमता विकास योजना पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू कयल गेल एकटा प्रमुख योजना थिक जेकरा नाबार्ड के माध्यम

सरकार के दिस से डेयरी उद्यमता विकास योजना पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू कैल गेल एक प्रमुख योजना थी जकरा नाबार्ड के माध्यम से लागू कैल जाते थे। एकर उद्देश्य छोटगर डेयरी फार्म स्थापित केनाय से लऽ कऽ दूध प्रसंस्करण धर के लेल सब्सिडी और लोन प्रदान केनाय अछि। एहि योजना के मुख्य बिंदु थिक एहि योजना के अंतर्गत डेयरी फार्म दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेजक स्थापना के लेल कुल प्रोजेक्ट लागत का 25% से 33.33% धरि सब्सिडी प्रदान कयल जाइत अछि। सब्सिडी दर सामान्य वर्गक लेल 25% अधिकतम 4.5 लाख और SC/ST वर्गक लेल 33.3% अधिकतम 6 लाख टका अछि। भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एकटा प्रमुख योजना अछि। एकर मुख्य उद्देश्य छोटगर डेयरी फार्म स्थापित केनाय दूध उत्पादन बढ़ेनाय और स्वरोजगारक अवसर पैदा केनाय से लऽ कऽ पूंजीगत सब्सिडी प्रदान केनाय अछि। संगे संग एहि योजना में बैंक ऋण द्वारा कुल परियोजना के लगभग 90% धरि ऋण प्रदान कयल जाइत अछि। योजना में शामिल गतिविधि एहि प्रकारे अछि। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटक जेना दुधारू पशुपालन बछिया पालन और बर्मी कंपोस्ट पर वित्तीय सहायता भेटित अछि। डेयरी फार्मक स्थापना 2 गाय से लऽ कऽ 10 दुधारू गाय महिषक डेयरी इकाई स्थापित केनाय बछिया पालन नीक नस्लक बछिया बछड़ा के पाले लेल 20 बछड़ा तक के इकाई खोल सकै छी दूध उत्पादन और विपणन कोल्ड स्टोरेज दूध परीक्षण उपकरण और दूध उत्पादक प्रसंस्करण हेतु उपकरण पात्रता और एकर जे आवेदन प्रक्रिया अछि व्यक्तिगत किसान उद्यमी और सरकारी संगठन NGO कंपनी और सहकारी समिति आवेदनक पात्र थिक। अहाँ अपन नजदीकी वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में जाकर डेयरी ऋणक लेल आवेदन कऽ सकैत छी। तो जँ ई सब गप के ध्यान में राखब तो डेयरी विकास उद्यमता जे योजना अछि एकर लाभ अहाँ उठा सकैत छी। ओनाही छै से जीवनक सर्वांगीण विकास लेल आवश्यक अछि कि गीतनाद जे यऽ ओहो जीवन के सर्वांगीण विकास करैया। तो किया ने हमसब ममता ठाकुर के स्वर में ई देवी गीत सुनी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदकाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर

0: सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं, अल्ट्राटेक, यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: छोटचिन विरामक उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई, तखन ममता ठाकुर के स्वर में सुने छलहुँ देवी गीत आदि शक्ति तु माया। वास्तव में अहाँ के माँ भगवती के आशीर्वादे से जीवन के सर्वांगीण विकास होत, जो हुनक आशीर्वाद भेटा तो कोनो काज कठिन से कठिन काज आसान भ जाए। देखियो किसान भाई, अपना सब जो खेती बाड़ी करी छी, तेमे मौसम सूचना जब पहिने भेट जाए तो खेती बाड़ी के काज जे ओ आसान भ जात। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग दिस से जारी 1 जुलाई से 5 जुलाई 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थान में गरज चमक, वज्रपात आ तेज हवा चलवा के संभावना है। विशेष रूप से 1 से 3 जून के दौरान अधिकांश क्षेत्र में मध्यम वर्षा भ सकैए आ 1-2 स्थान पर भारी वर्षा का अनुमान सेहो अछि। वर्षा का एक गतिविधि के चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आबे का अनुमान अछि। अधिकांश जिला में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबा का संभावना अछि, जखनकि बेगूसराय जिला में अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत बेसी 35 से 37 डिग्री तक पहुँच सकैत अछि। न्यूनतम तापमान जे अछि ओ 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबा का अनुमान अछि। भोर में सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85% आ दोपहरिया के सापेक्ष आर्द्रता 35 से 40% के लगपास रहबा का संभावना अछि। पूर्वानुमान अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल सकैत अछि। तो जँ एहि गप को हमसब ध्यान में राखी तो खेतीबाड़ी निक जना हैत और कोनो काज जे करब, कोनो फसिल के जे बौ करब, रोपाइ करब, तो निक जना हैत। आब धान जे अछि वहाँ के पिछला किछु दिन से जैसे निक वर्षा भ रहल यऽ, तो वर्तमान वर्षा के देखित किसान लोकनि के सलाह देल जाइत अछि कि ओ निचला जमीन में वर्षा जल के उपयोग कऽ खरीफ धान के रोपनी आरम्भ कऽ सकैत छथि। मध्यम अवधि वाला धान के जे किस्म अछि, राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र भगवती, राजेन्द्र सरस्वती आ राजेन्द्र श्वेता के नर्सरी में बिया गिराबे के काज जारी राखी। बाव से पहिने बिया के कार्बन डाइजिम 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बिया के दर से उपचारित करी। 10 से 12 दिन का आयु वाला बीज स्थली में समय पर कमौनी करी और खर पात नियंत्रण सुनिश्चित करी। जे किसान के लग सिंचाई के सुविधा आ लंबी अवधि वाला धान के तैयार नर्सरी उपलब्ध अछि, ओ रोपाई आरम्भ कऽ सकैत छथि। रोपाई मात्र ओहि खेत में करी जैठाम आवश्यकता पड़ला पर पटौनी के सुविधा उपलब्ध हुए। ओना ही खरीफ प्याज जे किसान खरीफ प्याज के नर्सरी तैयार कऽ सकैत छथि। नर्सरी क्यारी में बाव से पहिने पर्याप्त मात्रा में सरल गोबरक खाद आ कंपोस्ट मिलावी। एग्रीफाउंड डार्क रेड N53 भीमा सुपर आ अर्का कल्याण किस्म का चयन करी। ADR किस्म का नर्सरी उचगर क्यारी पर तैयार करी आ बेसी वर्षा से बचाव हेतु लगभग 1.5 मीटर उचगर पर अस्थायी पॉलीथीन आवरण लगावी। प्रमाणित आ विश्वसनीय स्रोत से गुणवत्ता युक्त बिया के व्यवस्था करी। तो ई सब जे गप का ध्यान में राखब तो निक जना खेतीबाड़ी हैत, उपजा निक जना हैत, आ जँ उपजा निक जना हैत तो ओकरा बेच के कैचा निक जना कमायब आ तखन गीतनाथ सुने के मन करत। तो किया ने हम सब एक गोट गीत अरविंद कुमार झा के स्वर में सुनी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन ग्राम पंचायत श्रीमा हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए अभी वो सब गांव खुशहाल है।

0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: हाँ, एखन हम सब अरविंद कुमार झा के स्वर में ये गीत सुने छलूं, बटोई रह जा तू। बहुत नीक गीत छल। देखियो किसान भाई लोकन, खेती बाड़ी के संग संग हम सब माल जाल का पोषण सेहो करै छी। तो बरखा के मौसम में गाय महिष आ विशेषकर जे गाभिन माल जाल ओकरा विशेष ध्यान राख पड़ित अछि। हुन माल जाल के बेहतर तरीका से देखरेख लेल हुनका हुनक जे शेड अछि ओकरा सूखल आ साफ राखी। संक्रामक रोग, गलघोटू और लंगड़ी बुखार से बचावे के लेल टीकाकरण करवाबी और फफूंद रहित सूखल चारा दी। वर्षा ऋतु में गाय महिषक स्वास्थ्य और बचावक लेल मुख्य गप का विवरण एहि प्रकारे अछि। आवास और साफ सिखाए, साफ सफाई रखबा के चाहिए, सूखल शेड हेबाक चाहिए, माल जाल के बारा या शेड में जल जमाव नहीं हुआ और फर्श का सूखल राखी। गीला या दलदली फर्श पर फिसले के डर रहित अछि जैसे गाभिन पशु का गर्भपात भ सकैया। आ जल निकासी, शेड के चारू दिस जल निकासी का उचित व्यवस्था करी ताकि गंदगी और कीचड़ जमा नहीं हुए। आ खान पान और पोषण में माल जाल के बराबर ताजा टटका और साफ जल पियाबी। ठहरल बारिश का दूषित जल पीला से पेट में संक्रमण भ सकैया आ पेट से जुड़ल गंभीर बीमारी भ सकैया। चारा प्रबंधन में चारा का नमी से बचा कर राखी। गीला या फफूंद लागल चारा का केकरो नहीं खुआबी, ई गाय महिष में गंभीर रोग का कारण बन सकैया। आ बीमारी से बचाव और टीकाकरण के लिए करवा के चाहिए कि जानलेवा बीमारी जेना बारिश के मौसम में गलगोटू, लंगरी बुखार और खुरपका मुँहपका जेहन बीमारी तेजी से पसरित अछि। तो एहि बीमारी से बचावक लेल अपन नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कऽ कऽ माल जाल का टीकाकरण निश्चित रूप से करवाबी। आ भोर में आ साँझ में जे गाय महिष के बथान अछि ओहिठाम अहाँ के धुआं धुकुर करवा के चाहिए ताकि छै से मच्छर या कोनो प्रकार के जे कीड़ा मकोड़ा या ओहिठाम ओकर जमाव नहीं हुए। आ माल जाल के बथान के आगू पीछे कतौ जल जमाव नहीं हेबाक चाहिए किया तो ओहू से संक्रमण पसरित अछि। आ गाभिन माल जाल के विशेष देखभाल करबाक चाहिए, जे गाभिन गाय महिष अछि ओकरा संतुलित आहार दी। हुनका भारी बरखा और आकाशीय बिजली के दौरान बाहर खुला में नहीं बांधी। आ थनैला रोग से बचावे के लिए हुनक थन और अयन के बराबर साफ और सुखर रखी। तो ई सब जो गप का ध्यान में रखब तो माल जाल आरोग्य रहत, स्वस्थ रहत आ बेसी से बेसी दूध उत्पादन कऽ कर देत, ताकि छै से अहाँ अपन खेती बाड़ी के काज ओहो निक जेना कऽ सकी आ माल जाल का पोषण कऽ कऽ ओहिसँ छै से नीक कमाई कऽ सकी। तो एहि के संगे जे कृषि चर्चा के समय अछि ओ सम्पन्न हेबाक अछि। तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई से गोपी चंद्र झा के गोपी भाई के आज्ञा दिया। नमस्कार।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया की

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में होगी लागू। प्रत्येक वयस्क को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा राज्य की

0: एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। और दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य भर में हुआ विस्तार, मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में लागू कर दी जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जी राम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। राज्य में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। इनमें पटना पूर्णिया मार्ग, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर के 2 पैकेज, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और अनीसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित सदस्यों का कल शपथ ग्रहण होगा। परिषद के उप सभागार में अपराह्न 4 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, भाजपा नेता संजय मयूख, लोजपा रामविलास के अशरफ अंसारी और राजद के सुनील सिंह समेत 10 नवनिर्वाचित पार्षदों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य के 26 संग्रहालयों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री कुमार पटना के विकास भवन में आयोजित विभागीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष पद पर चयनित 9 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राज्य के सरकारी स्कूलों में आगामी 4 जुलाई को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। संगोष्ठी के दौरान स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और ड्रॉपआउट, सरकारी योजनाओं तथा स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि 27 जून को भीषण गर्मी और अवकाश के कारण कई स्कूलों में संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो सका था। रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड में फर्जी डिग्री के आधार पर कार्य कर रहे 13 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी शिक्षकों से मानदेय की वसूली की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
1: काराकाट प्रखंड में हमारे 13 ऐसे शिक्षक थे जो अमान्य संस्थान भारत शिक्षा परिषद उड़ीसा से उपाधि प्राप्त किए थे, उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सभी की सेवा समाप्ति के लिए प्रखंड के जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव है उनको लिखा गया है कि अगर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अगर ये सब सेवा में है तो फिर उनको सेवा से मुक्त किया जाए और जो राशि लिए है उनकी वसूली की जाए।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध कल से हट जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से एक दिन में अधिकतम 200 लीटर पेट्रोल या डीजल देने की सीमा

0: समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण 12 जून से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर मामले की न्यायिक जांच शुरू की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विकास कार्यों में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है।
1: सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायने में प्रमाणित की। बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही। सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रही।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त तैयारी की है। सरकार ने नई योजना के तहत बाढ़ के पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से संग्रहित करने की व्यवस्था की है।
1: बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, जिससे कि अल्पवृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशय से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सके।
0: दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। इसके कारण कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई में आज सुबह तेज बारिश हुई। पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 1 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून यानी आज तक निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों, न्यायाधिकरण में शामिल अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला देते हुए सरकार से अंतिम तिथि

बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सेवानिवृत्त हो गए। अपने विदाई समारोह के तहत उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए उनके सफल भविष्य की शुभकामना दी। आकाशवाणी पटना में कार्यरत वरीय अभियंता सहायक विपिन चंद्र गुप्ता आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई कार्यक्रम में केंद्र अध्यक्ष एचडी सिडाम समेत अधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें सफल और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। शेखपुरा जिले के कई पंचायत में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर आयोजित विशेष शिविरों में वरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। रोहतास जिले के बौलिया रोड स्थित सुराज संस्था के कार्यालय में एचआईवी एड्स की ऑनलाइन काउंसिलिंग को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने एड्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया बताई। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जिले में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिवहर के एडीआर भवन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से स्थायी लोक अदालत के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने किया। मुंगेर के स्थानीय प्रेक्षागृह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज कन्या जन्मोत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपणिकर ने इसका शुभारंभ किया। सारण जिले के चिरांद में आज 19वें चेतना महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव के दौरान गंगा पूजन, महाआरती, चित्र प्रदर्शनी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के स्थानीय मेडिएशन सेंटर में स्थायी लोक अदालत की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। लोक अदालत के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अदालत के क्षेत्राधिकार और कार्य प्रणाली की जानकारी दी। सीवान पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 35 लोगों को उनके गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन लौटा दिए। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने वास्तविक मालिकों को उनके फोन सौंप दिए। अरवल जिले के कोनिका गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट कर दिया। उत्पाद अधीक्षक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मौके पर मौजूद शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड अंतर्गत आमथुआ में जागृति योजना 2025 के तहत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके में गंगा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों, विधायक और पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में होगी लागू। प्रत्येक वयस्क को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा राज्य की एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। और दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य भर में हुआ विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: AIR at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिले के भगवानपुर प्रखंड के मुंडेश्वरी धर्मशाला परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेते हुए कैमूर जिले के लिए लगभग 196.60 करोड़ रुपए की लागत वाली 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि माँ मुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जलप्रपात तक पर्यटकों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास की नीति पर कार्य कर रही है। इधर कैमूर जिले के सभी 146 पंचायतों में 28 जून को पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाकर गांवों के समग्र विकास को गति देना, आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। जिले के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मोहनिया प्रखंड की उसरी पंचायत में हुआ, जहां प्रभारी मंत्री संजय सिंह टाइगर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतें विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और जन भागीदारी के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी रही। विभिन्न विभागों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और प्राप्त शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की। कैमूर जिले में मुहर्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में सम्पन्न हुआ। जिला मुख्यालय भभुआ सहित विभिन्न प्रखंडों में ताजिया जुलूस निकाले गए। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जिले के 242 स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की थी। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने समीक्षा के दौरान कार्य में शिथिलता पाए जाने पर 72 पंचायत रोजगार सेवकों और 6 कार्यपालक कार्यक्रम पदाधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उनके मानदेय एवं वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बीते दिनों जिले में जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि पिछले 3 महीने में जिले में बाल श्रम से मुक्त कराए गए 13 बच्चों का सफल पुनर्वास किया गया है। परवरिश योजना के तहत 404 बच्चों तथा प्रयोजन एवं स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 248 बच्चों को नियमित सहायता दी जा रही है। वहीं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के माध्यम से अब तक 73 बच्चों को दत्तक ग्रहण कराया जा चुका है। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को जिले में मौसम में अचानक बदलाव आया और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। कृषि कार्य के लिए तैयार धान के बिचड़े को इस वर्षा से विशेष लाभ मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत कैमूर जिले के 1,18,350 किसानों के खातों में 23,67,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने योजना के प्रति संतोष व्यक्त की। भभुआ प्रखंड के सिक्ठी गांव में आयोजित सखी वार्ता कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को सामाजिक कुरीतियों, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज निषेध, बाल विवाह रोकथाम, बालिका शिक्षा तथा साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।

0: महिला एवं बाल विकास निगम के जिला प्रबंधक कुमारी प्रियंका राज ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी आह्वान किया। भभुआ प्रखंड कार्यालय के पुराने भवन एवं परिसर में अधिकारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए आवासीय परिसर के निर्माण की तैयारी शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने लगभग 1 एकड़ 42 डिसमिल भूमि के लिए प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैमूर जिले के न्यायपालिका, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, पतंजलि परिवार तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अनेक स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए गए।
1: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये गाना राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है जो हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं। संगीत उषा खन्ना का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी घूंघट। इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत था रवि का। अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। कैफी आज़मी के लिखे इस नगमे को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है छोटी बहू।

नीरज का लिखा हुआ ये गाना आप सुन रहे थे। संगीत SD बर्मन का था, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम था गैम्बलर। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म बरसात की रात से। आवाज़ें आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की हैं। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीत रोशन का।

आप सुन रहे थे आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों को, फिल्म थी बरसात की रात। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंहारक एहि नव अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकनि, सिंहारक माध्यमे जखन हमरा लोकनि एक संग जुड़ैत छी तऽ अपन साहित्य, संस्कृति, ओ परम्परा सभक बहुत रास गप करै छी। हमरा सभक लेल ई बड़ गौरवक गप अछि जे हमरा लोकनि मिथिला में जन्म लेलहुँ। ओ मिथिला क्षेत्र जतय 101 ज्ञानी लोकनि भेला अछि, ओ मिथिला क्षेत्र जे जगत जननी माँ जानकीक प्राकट्य स्थली छनि, एहिठामक संस्कृति, ओ सांस्कृतिक परम्परा एहन रहल अछि जे आइयो आन ठामक वासी लेल

अनुकरणीय बनल अछि। हमरा लोकनिक पूर्वज लोकनि जे मानदंड स्थापित कयलनि ओही अनुरूप हमरा लोकनि सेहो चलबाक प्रयास करैत रहै छी। अपन जे प्राचीन धरोहरि सब ओकरा बचेबाक निरंतर प्रयास हमरा लोकनि करैत रहै छी। अपन जे सांस्कृतिक परिचिति अछि ओकरा संरक्षित करबाक प्रयास करैत रहै छी। हमरा लोकनि मातृभूमिक प्रति हमरा लोकनिक लगाव ओ ओहिना नहि होइत अछि। नेनपनेसँ एकर एक एकटा वस्तु हमरा सभक हृदय केर लगीच रहैत अछि, हृदयकेँ छुबैत रहैत अछि। हमरा लोकनिक जे भाषा अछि, हमरा लोकनिक जे साहित्य अछि, हमरा लोकनिक जे सांस्कृतिक परम्परा सब अछि, हमरा सब ओहिठाम जे विधि व्यवहार होइत अछि, पाबनि तिहार होइत अछि, सब किछु हमरा सभक जिंदगीमे एना ने घोरायल रहैत अछि, एना ने मिझरायल रहैत अछि जे ओहिसँ फराक हमरा लोकनि कल्पना नहि करैत छी। हाँ, किछु चीज एहन रहैत अछि जे समयक संग परिवर्तित होइत रहैत अछि, मुदा ओहि परिवर्तनकेँ मूल नहि मानल जा सकैत अछि। ओ परिवर्तन तऽ अबैत रहत, मुदा अपन सांस्कृतिक परम्परा, अपन जे सांस्कृतिक मूल तत्व, ओकरा हमरा लोकनि सदैत संरक्षित राखऽ चाहैत रहैत छी, रखैत छी हमरा लोकनि। बंधु लोकनि, समयक संग लोक सभक स्थिति परिस्थिति बदलैत छैक, रहन सहन आदि बदलैत रहैत छैक, आवश्यक आवश्यकताक परिभाषा बदलि जाइत छैक, मुदा कोनो ठामक संस्कृति केर जे मूल तत्व ओ ओहिना रहैत अछि आ इएह अपना सब ओहिठाम सेहो देखना जाइत अछि। कतेको एहन परम्परा सब अछि जे अदौ कालसँ चलैत आबि रहल अछि आ ओ एखनहु हमरा सब लेल ओतबे प्रासंगिक बुझना जाइत अछि। ओना अपना सभक जे ई कार्यक्रम सिंगरहार, ओहिमे सेहो मैथिली गीत सुनबाक परम्परा रहल अछि। आउ ने, पहिने ई गीत सुनि लै छी, फेर हमरा लोकनि गप करब।

0: बंधु लोकनि चंद्रमणिक रचना हमरा लोकनि अखन अरविंद कुमार झाक स्वर में सुन रहल छलो। मिथिला वर्णन निश्चित रूप से जखन हमरा लोकनि सुनैत छी हृदय के छू भी लैत अछि। केहनो परिस्थिति हुए जखन अपन माटिक सुगंध हमरा सबके गीतक माध्यमे अबैत अछि ओ हृदय के छू भी लैत अछि। बंधु लोकनि मिथिला क्षेत्र सन उर्वर भूमि आन ठाम भेटब कठिन अछि। ई एतेक उर्वर अछि जे एहिठाम 101 महान मनीषी लोकनि जन्म लेला। ओ लोकनि अपन ज्ञानक प्रकाश सँ संपूर्ण विश्व के आलोकित करैत रहला अछि। एहने गोट महान मनीषी छला महामहोपाध्याय परमेश्वर झा, जिनक आई पुण्यतिथि छनि। अजुके दिन माने 30 जून 1924 के हिनक निधन भेल छलनि। मिथिलाक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ओ धार्मिक इतिहास ग्रंथ रूप में प्रतिष्ठित मिथिला तत्व विमर्शक रचयिता महामहोपाध्याय परमेश्वर झाक जन्म मधुबनी जिलाक तरौनी में भेल छलनि। ओना तो संस्कृतक प्रकांड विद्वान महामहोपाध्याय परमेश्वर झा संस्कृत में लगभग 40 गोट ग्रंथक रचना केलनि, मुदा मैथिली में हिनक जे 2 गोट रचना छनि ओ बड्ड महत्वपूर्ण अछि, सीमंतनी आख्यायिका आ मिथिला तत्व विमर्श। ई दुहू रचना हमरा सब लेल महत्वपूर्ण अछि। बंधु लोकनि महामहोपाध्याय परमेश्वर झाक पुण्यतिथि पर जखन हुनक पुण्य स्मरण हमरा लोकनि कऽ रहल छी तो आउने हुनके पर केंद्रित एक गोट वार्ता सुने छी। विषय है महामहोपाध्याय परमेश्वर झा ओ मिथिला तत्व विमर्श। वार्ताकार छथि डॉक्टर सती रमण झा।
1: महामहोपाध्याय पंडित परमेश्वर झा रचित मिथिला तत्व विमर्शक भूमिका में आचार्य सुरेंद्र झा सुमन जी लिखने छथि जे वैदिक काल से जाय प्रदेशक प्रतिष्ठा ब्रह्म ज्ञानक विकासक केंद्रक रूप में इतिहासक पृष्ठ में अंकित अछि, जकर अनुशासन धारा स्मार्ट कालों में देश देशक आचार क्षेत्र में उर्वराक प्रेरक भेल, जे जनपद अपन दर्शनक विचार रस्य सँ संपूर्ण भारत के आलोकित कयलक, ओ जकर काव्य कल्पना भारतीय साहित्यक रसस्रोत के निरंतर समृद्ध कयलक, ओहि महत्वमयी मिथिला तत्व विमर्श कनिहार स्वनाम धन्य महाउपाध्याय पंडित परमेश्वर झाक प्रति कौन मिथिला संतानक मस्तक श्रद्धा प्रणत नहीं होयत निसंदेह। महामहोपाध्याय अपन बनाओल कुसुम कलिका आख्यायिका नामक ग्रंथ में अपन वंशादि परिचय संक्षेप रूप से लिखने छथि। तदनुसार दरभंगा जिला अंतर्गत तरौनी गाम में

या से सकुरी मूलक काश्यप गोत्री मैथिल ब्राह्मण कुल में चंद्रकर झाक पुत्र प्रभाकर झाक सुत रुद्र झा तनिक पुत्र ऋषपत झाक सुत भिखारी झा जनिक सुपुत्र महाउपाध्याय परशुराम झाक सुत बैयाकरण जगदीश झाक बालक नरपत झाक पुत्र बैयाकरण राम झाक सुत भोला झा जे महाराज छत्र सिंहक सभा पंडित रहत जनिक पुत्र बाबूनाथ झाक बालक वैयाकरण केसरी महाउपाध्याय पंडित प्रवर परमेश्वर झाक जन्म 27 दिसंबर 1856 ईस्वी पोख शुक्ल प्रतिपद के भेल रहन। बाल्यकाल से अत्यंत मेधावी महामहोपाध्याय जी अपन पिता से अक्षरादि आरंभ के उपनयन आदि संस्कार उत्तर तरुणी गांव में संस्कृत पाठशाला में पंडित प्रवर चिरंजीव मिश्र से व्याकरण और साहित्य ग्रंथक अध्ययन कैलन। 16 वर्षक अवस्था में काशी क्वींस कॉलेज में महामहोपाध्याय राजाराम शास्त्री और बाल शास्त्री से व्याकरण धर्मशास्त्र मीमांसा सांख्य वेदांत तथा न्यायशास्त्रक शब्द खंड पढ़लन। पुनः न्याय शिरोमणि ताराचरण भट्टाचार्य तथा ठाड़ी पंडित विश्वनाथ झा से न्यायक अनुमान खंडक अध्ययन कैलन। अध्ययनोपरांत 19 वर्षक अवस्था में अध्यापनक इच्छा से झालरा पाटन कैंटोनमेंट पाठशाला में संस्कृत अध्यापक पद पर योगदान कैलन। पुनः 16 मई 1880 ईस्वी में पूर्णिया जिलाक बनेली राज्यक राजा पद्मानंद सिंहक आश्रय में राज पंडित पद के सुशोभित कैल। पुनः दरभंगा राज्यक बहुवानी स्टेट गंदवाड़ ड्योढ़ीक स्वर्गीय महाराज कुमार बाबू वासुदेव सिंहक द्वितीय धर्मपत्नी धर्मपारायणा चंद्रवती बहुआसिन साहेबाक संस्कृत पाठशाला में प्रधान अध्यापक पद के अलंकृत कैलन। पुनः 1799 में महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह महाउपाध्याय जी के अपन सभा में राज पंडित पद पर नियुक्त कैलथिन। ओहि मध्य किछ दिन राजकीय संस्कृत पुस्तकालय अध्यक्ष भेला। पुनः महाउपाध्याय चित्रधर मिश्रक बाद महारानी रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य पद के सुशोभित कयने रहथि। महामहोपाध्याय जी धर्मोन्नत तथा विद्योन्नत में सतत प्रवृत्त रहबा कारण अनेक संस्था से अनेक प्रतिष्ठा प्राप्त कैलन। यथा सर्वप्रथम कर्मकांड के उद्धार करवा कारण विद्वन मंडली से कर्मकांडोद्धारक पदवी से विभूषित कैल गला। भारत धर्म महामंडल विराट धर्म सभा से संबत 1963 साल में वैयाकरण केसरी तथा महोपदेशक पदवी प्राप्त कैने रहत। 1914 में ब्रिटिश सरकार दिशा महाउपाध्याय पदवी से विभूषित कैल गेल रहत। 28-7-1917 में विद्यानिधिक उपाधि से अलंकृत भेल रहत। छोटा लाट साहब संस्कृत काउंसिल मेंबर तथा कन्वोकेशन मेंबरक हेतु हिनक नाम प्रख्यात कैने रहथिन। पटना विश्वविद्यालयक स्थापनाक समय संस्कृत शिक्षा के हेतु बनल कमिटीक मेंबर रहत। मुजफ्फरपुर धर्मसभा संस्कृत महाविद्यालयक शासी निकायक सदस्य रहत। काशी क्वींस संस्कृत कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय बिहार उड़ीसा संस्कृत समिति प्राशनिक उपरीक्षक रहत। विशिष्ट विद्वताक कारण 1920 में ब्रिटिश सरकार दिशा रेशमी धोती धोत वस्त्र तथा रेशमी चपकन प्रदान कैल गेल रहन। महाउपाध्याय जी गोट 39 ग्रंथ में कर्मकांड और व्याकरण विषय ग्रंथ सभक अतिरिक्त सीमंतनी आख्यायिका नाट्यशास्त्रानुकूल अभिनय दृष्टि मातृभाषा में महिखासुरवध नाटक ओ यक्ष समागम खंड काव्य आदि लोकोत्तर काव्य प्रतिभा ओ वैदुष्यक परिचायक अछि। वस्तुतः हिनक मिथिला तत्व विमर्श मिथिलाक ऐतिहासिक संधान में प्रेरक भेल। मिथिला तत्व विमर्श मिथिला तत्व विमर्शक प्रथम संस्करणक भूमिका में पंडित सुरेंद्र झा सुमन जी कथन अछि जे महामहोपाध्याय जी के रूप में मिथिलाक व्याकरणक कानन केसरी नाद सँ प्रतिध्वनिते नहि भेल, कर्मकांडक खान सँ विधि निखेदमय हीरक खंड उद्धृते नहि भेल, काव्य कलाकलाधर रश्मिये आलोकिते नहि भेल, अपितु इतिहासक तत्वक परिशोधो अत्यंत विलक्षणता सँ सम्पन्न भेल। वस्तुतः मिथिला तत्व विमर्श मिथिलाक ऐतिहासिक चित्रक ओ एल्बम थिक जकर एक एक पृष्ठ मिथिलाक गौरवकें सुरक्षित कयने अछि। आइ सँ प्रायः 43 वर्ष पूर्व अर्थात 1906 ईस्वी सँ मिथिला मीरक मासिक अंक सँ पुस्तकक अंश अंश प्रकाशित होय प्रारंभ भेल। एहिसँ पूर्व प्रायः मिथिलाक इतिहास क्रमरद्ध रूपें लिपिबद्ध नहि छल, अतएव मिथिलाक प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक रूपमें एकर मिथिला तत्व विमर्शक महत्व सर्वदा हेतु अक्षुण रहत। पुस्तकाकार मिथिला तत्व विमर्शक प्रथम संस्करणक प्रकाशक श्री हरिश्चंद्र झा श्री परमेश्वर पुस्तकालय तरौणी सँ विद्यापति प्रेस लहरे असराय दरभंगा सँ 1949 ईस्वी में प्रकाशित भय पाठकक समक्ष आयल।
सर्वमान्य रूपे ए ग्रंथक प्रतिष्ठा विद्वान लोकनि कहल।

0: मिथिलाक भौगोलिक राजनीतिक सामाजिक एवं साहित्यिक ओ ऐतिहासिक सामग्री विशद वा सूक्ष्म रूप में एहि ग्रंथ में बहुत किछु सन्निहित अछि। मिथिला तत्व विमर्श दू भाग में विभाजित अछि। प्रथम भाग में पूर्वार्ध और दोसर भाग में उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में मिथिला तत्व निरूपण आवश्यकता, मिथिलाक व्यापक आर्यावर्तक निरूपण, आर्यावर्तक सीमा, भारतक अंतर्गत ब्रह्मावर्त आदि निरूपण, भारत में जाति और जनसंख्या, भाषा, राज्य मुसलमान, अंग्रेज, बौद्ध राज, हिंदू राज, मिथिला, मिथिलाक सीमा, तीर्थ और देवालय, ऋषि मुनिक आश्रमक वर्णन संग मिथिला में राजा और महाराजा आदि, निमिक वंशावली तथा इतिहास, अग्निवंशी, क्षत्रिय, नान्य राज्यक चर्चाक संग वाचस्पति मिश्र आ उदयनक समय, गंगदेव, नरसिंह देव, राम सिंह देव, शक्र सिंह देव, हरसिंह देव तथा पंजी प्रबंध, भवेश सिंह, देव सिंह, शिव सिंह, पद्म सिंह, लखमा महादेवी, विश्वास देवी, रत्न सिंह, धीर सिंह, मंत्री प्रवर कविशेखर, विद्यापति ठाकुर, भैरव सिंह, रामभद्र सिंह महाराज, कंस दलन नारायण लक्ष्मीनाथ सिंह देवक वर्णन करैत महाउपाध्याय वाचस्पति मिश्र, महाउपाध्याय शंकर मिश्र, महाउपाध्याय पक्षधर मिश्र, महाउपाध्याय रुचपत केशव मिश्र, गोविंद ठाकुर, महाउपाध्याय शंकरक परिचय संग 233 पृष्ठ में अछि। उत्तरार्थ भाग में महाउपाध्याय राजा महेश ठाकुर, राजा गोपाल ठाकुर, महाउपाध्याय राजा शुभंकर ठाकुर, राजा पुरुषोत्तम ठाकुर, राजा नारायण ठाकुर, राजा पुरंदर प्रीतिनाथ ठाकुर, राजा महिनाथ ठाकुर, राजा नरपति ठाकुर, राजा राघव सिंह, राजा विष्णु सिंह, राजा नरेंद्र सिंह, महाराज प्रताप सिंह, महाराज माधव सिंह, महाराज छत्र सिंह, महाराज रुद्र सिंह, महाराज महेश्वर सिंह, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह और महाराज रमेश्वर सिंहक परिचय कीर्तिगाथाक संग उपस्थापित कय संगहि तिरहुत गीतक प्रचार गोकुलनाथ उपाध्याय, मदन उपाध्याय, धीरेन उपाध्याय, सौराट सभा, बेतिया राजस्व मैत्री, महात्मा रोहिणी दक्षा गोसाई, महाउपाध्याय परमेश्वर झा, महाउपाध्याय जयदेव मिश्रक परिचय 114 पृष्ठ में अंकित कयने छथि। एकर अतिरिक्त उपरोक्त प्रसंग में बृहद टिप्पणी में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तित्वक संग राज्य ऐतिहासिक स्थल आ ग्रंथ विशेष आदि वर्णन कयने छथि।
1: डॉक्टर सती रमन झाक एहि वार्ताक माध्यमे हमरा लोकनि महामहोपाध्याय परमेश्वर झाक मिथिला तत्व विमर्शक सम्बन्धमे बहुत रास जनतब लेलहुँ। बंधु लोकनि, हमर सभक जन्मभूमि एहन अछि जकरा पर हमरा सबके गर्व होइत अछि। एहिठामक प्रत्येक वस्तुसँ जे अपनापन अछि, जे स्नेह अछि, ओकर अनुभूति हमरा सबके सदति होइत रहैत अछि। हमरा लोकनि जखन कखनो आन ठाम जाइत छी तऽ एतुका प्रत्येक वस्तु अपन स्मृतिमे बनल रहैत अछि। एहिठामक कण कणसँ जे हमरा लोकनिक जुड़ाव अछि, ओकरा शब्दमे वर्णन करब कठिन बुझना जाइत अछि। ओना अपन गाम छोड़िकऽ कतहु जायब बड़ कठिन तऽ लगिते अछि। अपन काज व्यापार लेल वा अन्य कोनो कारणवश हमरा लोकनिकेँ गाम छोड़िकऽ जाय पड़ैत अछि। आवश्यक छैक, बिना गेने काज नहि चलत। तैँ कि हमर सभक जे सांस्कृतिक परिचिति अछि ओकरा हमरा लोकनि बिसरि जायब कथमपि नहि। हमरा लोकनि जे अपन सांस्कृतिक परम्परा सब अछि, हमरा लोकनिक जे सांस्कृतिक परिचिति अछि, ओकरा सदति अपन हृदयमे बसेने रहैत छी। ओही अनुरूप हमरा लोकनि अपन काज करैत छी, खाहे कतहु रही, मुदा एहिठामक जे माटिक सुगन्ध, ओ हमरा सभक हृदयमे बसल रहैत अछि। आ तैँ गाम छोड़ि कऽ जायब बड्ड कठिन लगैत अछि।
2: नहि जयबै हम गाम छोड़ि कऽ, नहि जयबै हम गाम छोड़ि कऽ, नहि

श्याम मोहन मिश्र के स्वर में ये सुंदर संगीत खन हमरा लोकनि सुन रहल छलौ। आशा करै छी सबके नीक लागल हैत। बंधु लोकनि, सिंगरहार में आब समय भ रहल अछि जे हमरा लोकन शब्द विमर्श दिस सेहो चली, मुदा शब्द विमर्श करबा सँ पूर्व अपने लोकन सँ एक गोट आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने लोकन के केहन लगैत अछि, अपने लोकनिक जे विचार, अपने लोकनिक जे सुझाव, ओ हमरा सब लेल संबल बनैत रहल अछि। तैं अपने लोकन सँ विशेष आग्रह जे अपन सुझाव ओ प्रतिक्रिया हमरा सब धरि निश्चित रूप सँ पठबैत रही। पत्र द्वारा जो अपन सुझाव आकि प्रतिक्रिया पठबऽ चाहै छी, एहि लेल हमरा लोकनिक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004। बंधु लोकनि, अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो अपन प्रतिक्रिया आ सुझाव पठा सकते।

सकैत छी। अपने लोकनिकें स्मरण हैत जे आकाशवाणी दरभंगा अपन 50वां वर्ष में प्रवेश कऽ चुकल अछि आ एहि 50वां वर्ष के आर विशेष बनेबा लेल अपने लोकनिसँ ई विशेष आग्रह। आ आब चलै छी हमरा लोकनि शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अछि दकरब, कठोर वस्तु के जोर सँ चिबा कऽ हबर हबर खायब, जेना कहै छियै ने थुर्री लताम दकड़ि रहल अछि, माने ओ थुर्री लताम जे कठोर होइत अछि तेकरा जोर सँ चिबा कऽ हबर हबर खा रहल अछि। हबर हबर, हबर हबर माने जल्दी जल्दी। एकटा शब्द अछि ओगरब, माने रखबारि करब। एखने हमरा लोकनि आमक गाछी मे आम के ओगरवाही करै छी, ओगरैत छी ओकरा। आ ओगारब, ओगारब भेल खयबा लेल माल जाल के आगा घास आदि जे देल जाइत छै ओकरा कहै छी ओगारब। एना एकटा शब्द अछि छी रक्टल, तृषित, अतृप्त वा लालायित लेल हमरा लोकनि रक्टल शब्द केर प्रयोग करै छी। फलना आम एना खा रहल छला जेना रक्टल होथि, माने कहियो आम नहि खेने होथि, लालायित होथि खाय लेल। आ एही शब्द विमर्शक संग आब कार्यक्रम सिंहारक समय सम्पन्न हेबा पर अछि। तऽ अगला भेंट धरिक लेल हमरा यानी राकेश चंद्र नंदन के चलबाक आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी।
3: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 पर। 8:45 होने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके

0: राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि

0: मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म

0: लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमरीकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने के खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमूई हुकूमत के तरीक़ाकार को

है, मोहब्बत तो फ़कीरी चाहती है मगर वो बादशाही चाहता है, मगर वो बादशाही चाहता है। सलीम इस अहद का बुज़दिल बहुत है, सलीम इस अहद का बुज़दिल बहुत है, करम ज़िल्ले इलाही चाहता है, करम ज़िल्ले इलाही चाहता है। मेरा रहबर यकीनन मुख्तलिफ है, मेरा रहबर यकीनन मुख्तलिफ है, कि वो मेरी तबाही चाहता है, कि वो मेरी तबाही चाहता है। एक गज़ल मुलाहिज़ा फरमाए, मतलब देखें कि सस्ती मिली हो चाहे वो महंगी ख़रीद ली, सस्ती मिली हो चाहे वो महंगी ख़रीद ली, जो चीज़ भी लगी उन्हें अच्छी ख़रीद ली। सस्ती मिली हो चाहे वो महंगी ख़रीद ली, जो चीज़ भी लगी उन्हें अच्छी ख़रीद ली। सब कुछ ख़रीदा ईद में बच्चों के वास्ते, सब कुछ ख़रीदा ईद में बच्चों के वास्ते, अपने लिए बस एक ही टोपी ख़रीद ली, अपने लिए बस एक ही टोपी ख़रीद ली। और हमने ख़रीदी चीज़ कहाँ काम की कोई, हमने ख़रीदी चीज़ कहाँ काम की कोई, जबाल उड़ गए हैं तो कंघी ख़रीद ली, जबाल उड़ गए हैं तो कंघी ख़रीद ली। हमने ख़रीदी चीज़ कहाँ काम की कोई, जब बाल उड़ गए हैं तो कंघी ख़रीद ली। मज़दूरी जिसमें बाप ने की थी तमाम उम्र, मज़दूरी जिसमें बाप ने की थी तमाम उम्र, बच्चे बड़े हुए तो हवेली ख़रीद ली, बच्चे बड़े हुए तो हवेली ख़रीद ली। आबा की जो किताबें थी नायाब बेचकर, पर ये शेर कि आबा की जो किताबें थी नायाब बेचकर, घर को सजाने के लिए रद्दी ख़रीद ली। आबा की जो किताबें थी नायाब बेचकर, घर को सजाने के लिए रद्दी ख़रीद ली। छत उड़ गई है धूप से बचना मुहाल है, छत उड़ गई है धूप से बचना मुहाल है, बारिश से पहले वैसे तो छतरी ख़रीद ली, बारिश से पहले वैसे तो छतरी ख़रीद ली। और मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि सोने उगलते खेत वो गाँव के बेचकर, सोने उगलते खेत वो गाँव के बेचकर, सरवर ने भी तो शहर की मिट्टी ख़रीद ली, सरवर ने भी तो शहर की मिट्टी ख़रीद ली। सस्ती मिली हो चाहे वो महंगी ख़रीद ली, जो चीज़ भी लगी उन्हें अच्छी ख़रीद ली। एक गज़ल और मुलाहिज़ा फरमाए, मतलब पेश है, तुझसे पहली सी मोहब्बत भी नहीं चाहता मैं, तुझसे पहली सी मोहब्बत भी नहीं चाहता मैं, ये भी सच है तेरी फुरकत भी नहीं चाहता मैं, ये भी सच है तेरी फुरकत भी नहीं चाहता मैं। सब्र गाली पे करूं जब्र भी सहलूं तेरा, सब्र गाली पे करूं जब्र भी सहलूं तेरा, दोस्ता ऐसी शराफत भी नहीं चाहता मैं, दोस्ता ऐसी शराफत भी नहीं चाहता मैं। बांट देता हूँ जो हर साल रकम थोड़ी सी, बांट देता हूँ जो हर साल रकम थोड़ी सी, इतनी सस्ती तेरी जन्नत भी नहीं चाहता मैं, इतनी सस्ती तेरी जन्नत भी नहीं चाहता मैं। रात दिन दीन पे तकरीर किया करता हूँ, रात दिन दीन पे तकरीर किया करता हूँ, अपने बच्चों से ये रगबत भी नहीं चाहता मैं, अपने बच्चों में ये रगबत भी नहीं चाहता मैं। तू है हाकिम तो हक देना मेरा है लाजिम, तू है हाकिम तो हक देना मेरा है लाजिम, तुझसे बेजा तो रियायत भी नहीं चाहता मैं, तुझसे बेजा तो रियायत भी नहीं चाहता मैं। और मक्ता देखें, चाहता हूँ कोई एजाज अदब में सरवर, चाहता हूँ कोई एजाज अदब में सरवर, और करने को रियाजत भी नहीं चाहता मैं, और करने को रियाजत भी नहीं चाहता मैं। तुझसे पहली इसी मोहब्बत में नहीं चाहता मैं, ये भी सच है तेरी फुरकत भी नहीं चाहता मैं। और आखिर में एक गज़ल के तीन चार अशार, मतलब मुलाहिज़ा फरमाए, मतलब देखें, यकीन जानिए

वही तो दोस्त था, गम के अपना खो बैठा अभा।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध, जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
4: जनकपुर जाने के लिए आए,
3: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
4: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
3: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
5: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
3: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। दिस इज आकाशवाणी दरभंगा। वे नाउ ब्रिंग यू एन इंग्लिश टॉक इंटाइटल्ड फॉरेस्ट्स एंड एनवायरनमेंट। टॉकर इज डॉक्टर अरिका पॉल।

0: एक हैं भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध, जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
1: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। एक फनकार, इसके तहत आज हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी के गाए नगमे। तो ये पहला नगमा है फिल्म संघर्ष का। नगमा निगार हैं शकील बदायूनी और मौसिकार नौशाद।

आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं एक फनकार के तहत मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए नगमे। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत सोनिक ओमी का, और फिल्म है सावन भादो।

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। शकील का लिखा हुआ, संगीत रवि का था। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। संगीतकार हैं आर डी बर्मन और फिल्म है अभिलाषा।

असद भोपाली का लिखा ये गाना आप सुन रहे थे, संगीत था उषा खन्ना का। फिल्म का नाम था एक सपेरा एक लुटेरा। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म धूप छांव से। गीत लिखा है कैफी आजमी ने और धुन बनाई है शंकर।

आप सुन रहे थे कैफी आजमी का लिखा हुआ ये नगमा, जिसे संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। फिल्म थी धूप छांव और आज के इस कार्यक्रम यानी एक फनकार के तहत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के गाए नगमे। ये कार्यक्रम समाप्त होता है और अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गाना राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, संगीत उषा खन्ना का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म है आओ प्यार करें।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी मिलन। यह है इस कार्यक्रम की अंतिम भेंट, फिल्म ब्लैकमेल का गाना जिसे गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: ये गाना आप सुन रहे थे राजेंद्र किशन का लिखा हुआ, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज़ थी किशोर कुमार की और फिल्म का नाम था ब्लैकमेल। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। 11 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन

0: भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत

0: राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, BG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of BG Ramji Act 2025, Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Vishakhapatnam.